मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ माह की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 39 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

बरसात की भोर में प्रकृति यह संदेश सुनाती है, हर सूखी डाली पर फिर से हरियाली मुस्कुराती है। बूंद बूंद कहती है कि कठिन समय बीत जाता है, आशा और धैर्य के संग जीवन फिर खिल जाता है। नमस्ते, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बिल्ला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिगरेट आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश

का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। भूख से लड़कर जो दुनिया को रोटी देता है वही सच्चा नायक किसान कहलाता है। कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर डॉक्टर दिनेश कुमार से की गई भेंटवार्ता। भेंट की है डॉक्टर सुशील कुमार राय ने।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां ड्रैगन फ्रूट उत्पादन करना चाहते हैं यानी इसकी बागवानी करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर दिनेश कुमार साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहाँ ड्रैगन फ्रूट उत्पादन करना चाहते हैं किसान बागवान भाई बहन तो क्या इसकी संभावना है?
2: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बरसात भी कभी पहले कभी बाद में होता है। इस परिदृश्य देखते हुए ड्रैगन फ्रूट की खेती बहुत अच्छी होती है। और आपको ये भी बता दें कि इसके लिए जो आपका ज़मीन हो उसका पीएच 5.5 से 6.5, इसका मतलब हो गया कि अगर एसिडिक सॉइल है तो उसमें इसकी खेती अच्छी होती है। दूसरा ये भी बता दें कि इसकी जो प्रजाति है ये इसके कलर पर होता है। पहला अगर आप देखेंगे ऊपर से लाल होता है और नीचे इसका गुदा सफ़ेद होता है
1: जी।
2: दूसरा होता है कि ऊपर से वो पीला होगा, नीचे उसका गुदा सफ़ेद होता है। तीसरा जो है ऊपर का छिलका भी लाल होता है और गुदा भी लाल होता है। तो इसी बेस पर इसकी वैरायटी होती है। और इसमें देखेंगे कि इसके जो बीज होता है बहुत छोटे छोटे काले रंग के होते हैं। और किसान भाइयों से हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए जो तापमान होना चाहिए 25 से लेकर के 35 डिग्री के आसपास अगर है तो इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और जहाँ पर बारिश कम होती है या जहाँ पर शुष्क क्षेत्र होगा वहाँ पर भी इसकी खेती बहुत अच्छी होती है। और दूसरा किसान भाइयों ये भी कहना चाहते हैं कि इसके लिए हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। कटिंग भी क्या होना चाहिए, 15 से 25 सेंटीमीटर का आप काटना चाहिए। और काट करके पहले हम इसको 2-3 दिन सुखाते हैं। सूख जाने के बाद हल्का सा फिर इसको हम चाहे पाली बैग में चाहे ज़मीन में इसको लगा देते हैं। लगाने के बाद जब इसमें जड़ आ जाए इसके बाद इसको हम प्लांटिंग के लिए लगाते हैं।
1: यानी इसका प्रवर्धन कटिंग के माध्यम से होता है।
2: यस यस।
1: तो लगाने का उपयुक्त समय क्या है डॉक्टर साहब?
2: इस समय देखा जाए तो कहीं कहीं इसको फरवरी मार्च में भी लगाते हैं और इस समय भी अगर आप लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
1: यानी बरसात के समय लगा सकते हैं?
2: हाँ लगा सकते हैं।
1: तो इसके लिए कुछ खास जलवायु की जरूरत होगी?
2: किसान भाइयों एक ये बताना चाहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा आपको बरसात हो तो उसमें थोड़ा रुक जाना चाहिए। और जब इसको लगाते हैं तो इसके लिए आपको पोल चाहिए। पोल इसलिए या पोस्ट कह लीजिए क्योंकि ये एक लता है और इसको अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये ज़मीन पर फैलेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि चाहे आयरन हो चाहे सीमेंट का पोल हो और वो 2 मीटर की हाइट का हो और उसको कम से कम 50-60 सेंटीमीटर ज़मीन के नीचे कर देते हैं। और जब पोल जहाँ भी हम फिक्स करते हैं उस पर हम 4 पौधे लगाते हैं चारों डायरेक्शन में, फिर उसको बांध करके ऊपर ले जाते हैं और ऊपर लता की तरह चारों तरफ फैलता है। और ये भी देखा गया है कि इसमें जो फल आते हैं वो कम से कम आप देखेंगे 300 से 600 ग्राम के आसपास आते हैं और किसान भाई लगा करके इससे अच्छा उत्पादन पैदा कर सकते हैं।
1: तो इसका अंतरण क्या होगा डॉक्टर साहब? जैसे आपने बताया कि एक पोल पर 4 पौधे लगेंगे चारों डायरेक्शन में, तो पोल से पोल की दूरी कितना होगी?
2: 3 मीटर बाई 3 मीटर की दूरी पर हम पोल को फिक्स करते हैं और उसी पर हम पौधों को चढ़ाते हैं। किसान भाइयों जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके खेती के लिए जो आपका

0: मिट्टी का पीएच है वो 5.5 से 6.5 के आसपास हो तो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, मिट्टी आपकी बलुई दोमट होना चाहिए, जल निकास का अच्छा प्रबंध होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: हमारे संस्थान जो है हरदोई रोड पर है और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान काकोरी और रहमान खेड़ा लखनऊ पर है। और आपको तकनीक जानकारी के लिए जब भी आपको बात करना चाहे तो हमारा जो मोबाइल नंबर है 6692-43-14-10, 6392-43-14-10, 6392-43-14-10।
1: डॉक्टर दिनेश कुमार साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप डॉक्टर दिनेश कुमार से की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। विषय था ड्रैगन फ्रूट की उन्नत कृषि उन्नत तकनीक। भेंट करते थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। सुविचार जीवन की राह में दीपक की तरह होते हैं जो अंधकार में भी सही दिशा दिखाते हैं। आज के सुविचार में सुनिए धैर्य के बारे में। स्वर राकेश खरे का है।
3: आजकल लोग तनिक सी बात पर क्रुद्ध हो जाते हैं। बुरा मानने और ईर्ष्या बैर करने की दुष्प्रवृत्ति इतनी उग्र हो उठी है कि अहम पर तनिक सी चोट लगते ही नाराज हो उठते हैं। उनकी पार्श्विक वृत्तियां तेज हो उठती हैं। दूसरों से अनबन होने पर चिंता और फिर उससे मानसिक तनाव पैदा होता है। उनकी स्थिति नर शरीर वाले एक पिशाच जैसी हो जाती है। पशुओं का स्वभाव है बिना बात नाराज या असंतुष्ट हो बैठना, सींग या पैरों से मारना या फिर दांतों से काट लेना। सांप को चाहे भूल में ही या अनजान में ही किसी ने छेड़ दिया हो, पर वो कुत्सित स्वभाववश अपने आप को थोड़ा सा आघात लगने मात्र से ही इतना क्रुद्ध होकर तन जाएगा कि सामने वाले के प्राण ही लेकर छोड़ेगा। ऐसा मानना है कि सिंह, बाघ, तेंदुआ आदि हिंसक पशु केवल इतनी ही बात पर आक्रोशित हो जाते हैं कि हमसे किसी ने आँख कैसे मिलाई। नीची आँखें करके भले ही कोई निकल जाए, पर दूसरे के द्वारा उनका सामना किए जाने से वैसे अपना अपमान समझते हैं। यदि यही व्यवहार असहिष्णुता प्रवृत्ति वाले मनुष्य में हो तो फिर हम हिंसक पशुओं से भिन्न तो नहीं माने जा सकते हैं। उसने मेरी मानहानि की, उसने मुझे पराजित किया, मेरा धन हरण किया। ऐसे विचार जब गुप्त मन में समा जाते हैं तब मन तनाव की स्थिति से भर जाता है। मनुष्य किसी न किसी तरह बदला लेने की योजनाएं बनाता रहता है। बैर बढ़ता ही जाता है। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता। प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह और सहानुभूति द्वारा ही बैर शांत हो सकता है तथा तनाव खत्म हो सकता है। सब प्रकार के तनाव और विक्षोभ का प्रारंभ मन से होता है। आपके जीवन में सर्वत्र मन की ही प्रधानता है। आपकी सब प्रवृत्तियां मनोमय होती हैं। यदि मनुष्य शांत और संतुलित मन से आचरण करता है तो सुख और सफलता उसका ऐसे अनुसरण करते हैं जैसे छाया मनुष्य का अनुसरण करती है। शास्त्रों में कहा गया है, ना ही वैरेण वैराणी शमयन्ति कदाचन, अवैरेण ही शमयन्ति एव धर्मा सनातना। अर्थात मन में बैर रखने से वो शांत नहीं होता, अवैर से मन शांत होता है। ये सनातन धर्म है। तनावपूर्ण स्थिति भयंकर है। उससे बचने के लिए मानसिक उद्योगों को मन में स्थान न देने का अभ्यास डालें। उद्योगों से सावधान रहना सीखें। उत्तेजना, घबराहट, हड़बड़ी, क्रोध और असंतुलन के क्षणों में अपने को काबू में रखने तथा धैर्य व शांति से काम लेने का प्रयास करें। यदि मनुष्य मानसिक संतुलन बनाए रखे तो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसका हल न निकाला जा सके। मनुष्य अपनी सूझबूझ, बुद्धि एवं दूरदर्शिता से किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। उसका धैर्यपूर्ण स्थिति में सामना कर सकता है। किसी भी संकट या आपत्ति के समय

0: मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मस्तिष्क की शांति की रक्षा करे। मन मस्तिष्क को ठंडा रखते हुए इन मानसिक विकारों तनावों से छुटकारा पाने का उपाय सोचकर कार्यान्वित करें, तभी मनुष्य को शांति, मन की स्थिरता प्राप्त हो सकती है एवं तनाव से मुक्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक उपाय हैं। आध्यात्मिक शक्ति के संचय से मनुष्य कभी विचलित नहीं हो सकता है। जीवन की समस्याओं विषमताओं का स्वयं पूर्ण हल हो जाता है।
1: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे धैर्य के बारे में, स्वर राकेश खरे का था। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

शिव का नाम ही जीवन की सबसे पावन यात्रा है। काशी को मोक्ष की नगरी भी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को देता है स्वर जहाँ शिव का वास है। शिव हर आत्मा में विराजमान है।

मीरा की भक्ति में समर्पण है, विरह है और अनंत विश्वास की मिठास है। और सच्ची है, जब भी मन पूरी तरह से प्रभु में रम जाए तो संसार अपने आप छूट जाता है, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस में और डूबने के लिए आइए चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 228।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को ही आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं होता, स्वस्थ जीवन से बड़ा कोई सुख नहीं होता। जो अपनी सेहत का सम्मान करता है वो जीवन के हर अवसर का आनंद लेता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में सुनिए विश्व जनसंख्या दिवस स्वास्थ्य संतुलन और जागरूकता का संदेश। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं नीना सुनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी प्रस्तुतकर्ता नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम स्वास्थ्य चर्चा। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे आज से जुड़ा है और हमारे कल को आकार देता है। ये विषय आंकड़ों से नहीं, हमारी जिम्मेदारियों और जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस की। हर साल 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब केवल जनगणना या आंकड़े गिनाना नहीं है। इसका मतलब है ये समझना कि एक संतुलित जनसंख्या कैसे हमारे स्वास्थ्य, संसाधनों, पर्यावरण और समाज की संरचना को प्रभावित करती है। श्रोताओं, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान केवल संख्याओं पर जाता है, कितने करोड़ लोग, कितनी वृद्धि दर, कितने राज्यों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, लेकिन इन संख्याओं के पीछे क्या छिपा है? हर संख्या के पीछे एक चेहरा है, एक माँ है, एक बच्चा है, एक जीवन है जो अपने अधिकारों, जरूरतों और संभावनाओं के साथ जन्म लेता है। और जब ये जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, तब समस्या केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रहती, ये समस्या पूरे समाज को प्रभावित करती है। बढ़ती हुई जनसंख्या का सबसे पहला और सीधा असर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ता है। जब एक सीमित संसाधनों वाला देश हर साल लाखों नए जीवनों को संभालने की कोशिश करता है तो अस्पतालों में भीड़ बढ़ती है, डॉक्टरों पर दबाव बढ़ता है, दवाइयों की उपलब्धता सीमित हो जाती है और दूर दराज के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच ही नहीं पाती। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है नवजात मृत्यु दर में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए जोखिम भरा गर्भकाल, बच्चों में कुपोषण और परिवारों की आर्थिक स्थिति पर अत्यधिक दबाव। एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि महिलाओं का स्वास्थ्य। अक्सर जब परिवार बहुत बड़े होते हैं और गर्भधारण में अंतराल नहीं होता तो महिलाओं को न तो पर्याप्त आराम मिल पाता है और न ही उनका शरीर पहले जैसी ताकत दोबारा हासिल कर पाता है। ये शारीरिक ही नहीं, मानसिक थकावट भी लाता है। माँ की सेहत कमजोर होगी तो नवजात की सेहत पर भी असर पड़ेगा। इस प्रकार बढ़ती जनसंख्या सिर्फ संख्या मात्र नहीं, यानी बढ़ती जनसंख्या सिर्फ संख्या नहीं बढ़ाती, वो कई बार बीमारियां और असमानता भी बढ़ा देती है। अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? इसका सबसे प्रभावी उत्तर है परिवार नियोजन, और ये केवल सरकारी नीति नहीं है, ये हर घर की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। परिवार नियोजन का अर्थ है सोच समझकर, समय लेकर और योजना बनाकर ये तय करना कि कितने बच्चे हों, कब हों और क्या उस समय माता पिता दोनों शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं। ये निर्णय जितना सहज दिखता है उतना ही महत्वपूर्ण और असरदार भी होता है। हमारे देश में कई प्रकार के गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध हैं, जैसे कि कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, कॉपर टी, इमरजेंसी पिल्स और स्थायी उपाय जैसे कि नसबंदी। लेकिन अक्सर इन साधनों के बारे में जानकारी या तो अधूरी होती है या फिर इन पर खुलकर बात ही नहीं होती। हमारे समाज में आज भी ऐसे विषयों को लेकर संकोच और शर्म बनी हुई है और इसी संकोच के कारण अनेक परिवार अनजाने में ही बहुत बड़ी जिम्मेदारियों और समस्याओं के जाल में उलझ जाते हैं। श्रोताओं, ये जरूरी है कि हम इस पर चुप्पी को तोड़ें। स्कूलों में किशोर किशोरियों को सही उम्र में शरीर बदलाव और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दें, दंपतियों को स्वतंत्र निर्णय लेने का अवसर और माहौल दिया जाए और सबसे जरूरी पुरुषों को भी उतनी ही भागीदारी दी जाए जितनी महिलाओं को दी जाती है। परिवार का आकार केवल महिलाओं का विषय नहीं है, ये एक साझा निर्णय है। जब पति पत्नी दोनों मिलकर इस पर विचार करते हैं तो निर्णय समझदारी और सम्मान पर आधारित होता है। आज के समय में जब हर तरफ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और शिक्षा की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं, तब जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या संतुलन की चर्चा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। सोचिए,

0: अगर एक तालाब में पानी सीमित है और प्यासे लोग हर दिन बढ़ते जाएं, तो क्या सभी को पर्याप्त पानी मिल पाएगा? नहीं, यही हाल है हमारे संसाधनों का। अगर जनसंख्या बढ़ती रही और संसाधनों की संख्या वही रही, तो असंतुलन स्वाभाविक है और ये असंतुलन हमारे भविष्य को डगमगा सकता है। तो क्यों ना हम आज इस विश्व जनसंख्या दिवस पर कुछ छोटे छोटे लेकिन गहरे संकल्प लें। हम घर पर, मोहल्ले में, स्कूल में और समाज में इस विषय पर बातचीत को सहज बनाएं। हम ये समझें कि दो बच्चे या एक बच्चा कोई सामाजिक दबाव नहीं है, ये एक जिम्मेदार और प्रेमपूर्ण निर्णय हो सकता है। हम उन लोगों तक पहुंचे जिनके पास जानकारी नहीं है और उन्हें प्यार और सम्मान के साथ सही दिशा दिखाएं। और सबसे महत्वपूर्ण, हम ये समझें कि हर नया जीवन जो इस दुनिया में आता है, वो सम्मान और संपूर्णता के साथ जिए, यही हमारा कर्तव्य है। श्रोताओं, स्वस्थ समाज वही होता है जहाँ हर बच्चे को पोषण मिले, हर माँ को सम्मान और सुरक्षा मिले और हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिले। और ये तभी संभव है जब जनसंख्या और संसाधनों के बीच संतुलन बना रहे। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: ये थी आज की स्वास्थ्य चर्चा। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है, उनके बारे में आपको जानकारी दे दी। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 10 बजे। इसमें आप सुनेंगे डॉक्टर आर माधुरी देवी का कर्नाटिक वीणा वादन। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती का प्रसारण होगा रात 9:30 पर। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव की वार्ता होगी जनसंख्या बनाम विकास। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी रामपुर मरकज की पेशकश। सुनिएगा अलामी योमे आबादी पर मुबाहिसा, बढ़ती आबादी या हमारी जिम्मेदारी। शुरका हैं डॉक्टर इश्तियाक आलम आजमी, डॉक्टर महमूद अली खान और फजल शाह फजल। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर भीष्म साहिनी। आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर घरांगन कार्यक्रम में विश्व जनसंख्या दिवस पर लघु नाटिका बहने सुनेंगी। साथ ही एक शब्द एक गीत अनेक में शब्द मेघ पर श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीत प्रसारित होंगे। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर तिल की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर स्ट्रीट लाइव इंडिया वोकल फॉर लोकल यूपी स्ट्रीट उद्यमियों की सफलता, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकार्थन कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश सिंह की वार्ता होगी ग्रामीण उद्यम से सशक्त होते गांव। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह से की गई भेंटवार्ता का विषय है धान की फसल की रोपाई और खरपतवार। शाम 7:31 पर विज्ञान जगत कार्यक्रम का प्रसारण होगा, इसमें वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस पर 2047 का संकल्प, कैसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा भारत, इस विषय पर डॉक्टर निमिश कपूर वरिष्ठ वैज्ञानिक बीरबल सानीपुरा विज्ञान संस्थान से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता है प्रवीण कुमार। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर रश्मि उपाध्याय के गाय अवधि लोकगीतों का आप आनंद ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर अभिषेक कुमार के गाय भजन आप सुनेंगे। श्रोताओं के पत्रवाही मेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चितपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधामी, मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर भीष्म साहिनी। हिंदी साहित्य के विशाल आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनकी चमक समय बीतने के साथ और अधिक उज्जवल होती जाती है। ऐसे ही युग प्रवर्तक साहित्यकारों में भीष्म साहिनी का नाम अत्यंत सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। वे केवल एक कथाकार या उपन्यासकार ही नहीं थे, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के अद्भुत शिल्पी, समाज के सजग चिंतक और जीवन के गहरे अध्येता थे। उनकी लेखनी ने आम जनमानस के दुख, संघर्ष, सपनों और सामाजिक यथार्थ को जिस सहजता और सच्चाई के साथ अभिव्यक्त किया, वह उन्हें हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षरों में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। भीष्म साहिनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ था। बचपन से ही साहित्य और संस्कृति का वातावरण उन्हें प्राप्त हुआ। उनके बड़े भाई बलराज साहिनी भारतीय रंगमंच और सिनेमा के प्रसिद्ध कलाकार थे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद भीष्म साहिनी ने अध्यापन, अनुवाद, रंगमंच और साहित्य सृजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। वे प्रगतिशील विचारधारा से प्रभावित थे और समाज में व्याप्त विषमताओं, अन्याय तथा मानव पीड़ा को अपनी रचनाओं का विषय बनाते रहे। भीष्म साहिनी की साहित्यिक यात्रा कहानी से आरंभ हुई थी, किंतु उन्होंने उपन्यास, नाटक, संस्मरण और अनुवाद जैसे अनेक साहित्यिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। उनकी भाषा अत्यंत सरल, सहज और बोलचाल के निकट है, परंतु उनके भीतर गहरी संवेदना और विचारों की प्रखरता छिपी होती है। वे शब्दों की चकाचौंध नहीं रचते, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को पाठकों के सामने इस प्रकार रखते कि पाठक स्वयं उन अनुभवों का हिस्सा बन जाता है। जब भी भीष्म साहिनी की रचनाओं की चर्चा होती है, तब सबसे पहले उनके प्रसिद्ध उपन्यास तमस का स्मरण होता है। यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। तमस केवल विभाजन की कहानी नहीं, बल्कि यह मनुष्य की संवेदनाओं, सांप्रदायिकता की भयावहता और मानवता की पुकार का दस्तावेज है। तमस पढ़ते समय पाठक केवल घटनाओं को नहीं देखता, बल्कि उस पीड़ा को महसूस करता है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया था। उनका एक अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास झरोखे है, जिसमें मध्यम वर्गीय जीवन, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक परिवर्तनों का अत्यंत मार्मिक चित्रण मिलता है। इसी प्रकार बसंती उपन्यास में उन्होंने एक श्रमिक युवती के संघर्ष, आत्मसम्मान और जीवन की चुनौतियों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मैया दास की माड़ी भी उनकी चर्चित कृति है, जिसमें इतिहास, समाज और संस्कृति में अनेक आयाम दिखाई देते हैं। कहानी साहित्य में भी भीष्म साहिनी का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी कहानियां सामान्य मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हैं। चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, साग मीट, पाली जैसी कहानियां आज भी पाठकों को झकझोर देती हैं। इन कहानियों में सामाजिक विसंगतियों, मानवीय रिश्तों, वर्ग भेद और जीवन की विडंबनाओं का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। उनकी कहानी चीफ की दावत आधुनिक समाज में दिखावे और अवसरवादिता पर तीखा व्यंग प्रस्तुत करती है, जबकि पाली मानवीय करुणा और विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज बन जाती है। भीष्म साहिनी का एक सफल नाटककार भी थे। उनका प्रसिद्ध नाटक कबीरा खड़ा बाजार में भारतीय रंगमंच की अमूल धरोहर माना जाता है। इस नाटक में संत कबीर के माध्यम से उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक कट्टरता और मान

मानवता के प्रश्नों को बड़ी शक्ति के साथ उठाया। इसके अतिरिक्त हानुष और माधवी जैसे नाटक भी उनकी रचनात्मक प्रतिभा के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। इन नाटकों में इतिहास और वर्तमान का ऐसा समन्वय दिखाई देता है जो दर्शकों को सोचने के लिए विवश कर देता है। भीष्म साहनी की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे मनुष्य को उसकी संपूर्ण मानवीता के साथ देखते थे। उनके साहित्य में किसी वर्ग, धर्म या समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह नहीं मिलता। वे मानवता को सबसे ऊपर मानते थे। उनकी रचनाओं में करुणा है, संवेदना है, संघर्ष है और जीवन के प्रति अटूट विश्वास भी है। वे मानते थे कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को बेहतर दिशा देना है। आज जब दुनिया अनेक प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संघर्षों से गुजर रही है, तब भीष्म साहनी का साहित्य और अधिक प्रासंगिक हो जाता है। तमस हमें सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देता है, कबीरा खड़ा बाजार में हमें मानवता का पाठ पढ़ाता है और उनकी कहानियां हमें संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती हैं। उनका साहित्य हमें यह सिखाता है कि मनुष्य की पहचान उसके धर्म, जाति या वर्ग से नहीं बल्कि उसके मानवीय गुणों से होती है। भीष्म साहनी ने अपने संपूर्ण जीवन को साहित्य, रंगमंच और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित कर दिया। वास्तव में साहित्यकार शरीर से भले ही विदा हो जाए, परंतु उसके विचार और उसकी कृतियां सदैव अमर रहती हैं। भीष्म साहनी भी अपनी कालजयी रचनाओं तमस, बसंती, झरोखे, मैयादास की माड़ी, कबीरा, खड़ा बाजार में तथा अपनी अनेक चर्चित कहानियों के माध्यम से आज भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका साहित्य आने वाली पीढ़ियों को मानवता, संवेदनशीलता और सामाजिक समरसता का संदेश देता रहेगा। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि

0: कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्त्या साना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशु हानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या के सोहावल में 432 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने यहां पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में अब विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय हो रहा है।
2: अयोध्या में भक्ति पथ हो, राम पथ हो, जन्मभूमि पथ हो, ये सभी अयोध्या की पहचान बन रहे हैं। जो सिंगल लेन था, आज वो फोर लेन और सिक्स लेन की सड़कें हैं। चारों ओर से एयर कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी, रोड की कनेक्टिविटी आज अयोध्या को नई पहचान दिला रहा है।
1: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भदरसा नगर पंचायत का नाम भरतकुंड और ग्राम पंचायत खिरौनी सुचित्तागंज का नाम मां ज्वाला देवी के नाम पर करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कल बस्ती में 504 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने हरैया में 27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए भूमि पूजन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्ती में मखौड़ा धाम, भदेश्वरनाथ धाम और तपसी धाम में चल रहे विकास कार्यों के साथ साथ अब कर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा।
2: ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखौड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य बन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा, इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर और गोरखपुर जिले को कुल मिलाकर 1283 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। वो कुशीनगर में 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 और गोरखपुर में करीब 758 करोड़ रुपए की 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिले का दौरा करेंगे। पटेकुआटार में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में तीन विधानसभा क्षेत्रों रामकोला, हाटा तथा कुशीनगर के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई से जुड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे। कुशीनगर का दौरा करने के पश्चात मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भटट बांस स्थान में फोर लेन सड़क सहित पांच सड़कों का लोकार्पण और सड़क निर्माण एवं पर्यटन विकास से जुड़े 19 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री जिन सड़कों का लोकार्पण करेंगे उनमें सबसे महत्वपूर्ण भटट बांस स्थान फोर लेन मार्ग है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित है। समाचार कक्ष से रितेश।
1: पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश सरकार कल पौधरोपण महायज्ञ 2026 का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेस वे के समीप पौधा लगाकर करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधरोपण करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में कल हरकोट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर का 8वां दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ।

0: अवसर पर विद्यार्थियों को 1071 उपाधियां और 47 पदक प्रदान किए गए। कार्यक्रम में राज्यपाल ने 300 आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी किट दिए और 600 बालिकाओं का HPV टीकाकरण भी कराया। राज्यपाल ने कहा कि छात्राएं तकनीकी क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करके देश का गौरव बढ़ाएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इन याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ के सामने प्रस्तावित है। इन याचिकाओं में घटना की CBI जांच और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन का ऑडिट कैग से कराने का अनुरोध किया गया है। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की राशि की गिनती के काम में लगे 20 से अधिक कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन कर्मचारियों के इस्तीफे को चढ़ावे में अनियमितता का मामला सामने आने के बाद व्यवस्था में किए गए बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है। इस बीच शेष बचे कर्मचारियों की ड्यूटी व्यवस्था और छुट्टियों में बदलाव किया गया है। वहीं चढ़ावे की गिनती को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त की जा रही है। अब इस काम के लिए अलग से विशेष कर्मचारी रखे जाएंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत प्रदेश भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों को मौसमी बीमारियों सहित अन्य बीमारियों के लक्षण और बचाव के बारे में जागरूक करेंगी। फतेहपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी उदयभान सिंह ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग लिया जाएगा।
1: इसमें करीब 7-8 विभाग हमारे जुड़े हुए हैं और 7-8 विभाग का प्लान है। इस तरीके से बनाया गया है कि एक ही स्थान पर उसी दिन सारे लोगों का कार्यक्रम, तो उसमें ये रहता है कि कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि जो छूट जाए, जिससे कि वहाँ की सारी व्यवस्था एक साथ ठीक हो सके। कार्यक्रम में जितना मलेरिया वर्कर है वो लगा है हमारे यहाँ से, HS लगे हुए हैं और नोडल ऑफिसर्स भी बनाए गए हैं और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी और उनके अधीन जितने चिकित्सक हैं वो सभी लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
0: प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी बारिश से हो रही जनहानि और पशुहानि की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को क्षेत्र में जाकर प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मानसूनी बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गई हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार से
0: भारी बारिश के चलते बदायूं और सीतापुर में आज कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या और बस्ती में 936 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश में हो रहा विकास और विरासत का अद्भुत समन्वय। मुख्यमंत्री आज कुशीनगर और गोरखपुर में 1283 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को होगी सुनवाई। और भारी बारिश से कई जिलों में बढ़ने लगा नदियों का जलस्तर। बारिश से हो रही जन और पशुहानि पर मुख्यमंत्री ने 24 घंटे में पीड़ितों को मुआवजा देने के दिए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: एक तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। आप हमारे कार्यक्रमों को न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव हाजिर हूँ। एक नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच, जानकारी और मनोरंजन से भरा कार्यक्रम आज सुबह के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा और
1: निधि का नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आप सभी के लिए और हमारे सभी सुनने वालों के लिए बेहद शुभ हो, अच्छा हो, बेहद खास हो, क्योंकि अंजलि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया मौका होता है जीवन जीने का, तो इसे पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ शुरू करना चाहिए।
0: शुरू करना चाहिए। सुबह की भीगी फुहारों में प्रकृति का मधुर संदेश है, नई उमंग, नई आशा और नए सपनों का परिवेश है, और हम अपने आज सुबह कार्यक्रम में भी नई बातें, नई जानकारी और गीतों के साथ प्रवेश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, और यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि मौसम जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा है, बादल छाए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये भी कहना बहुत ज़रूरी है कि सुबह सुबह हम सभी को अपने मन को शांत रखना चाहिए। और जो सूरज की किरणें, मैंने मौसम की बात अंजलि इसलिए की क्योंकि आज शायद सूरज निकलने में थोड़ा लेट हो रहा है, फिर भी सूरज की किरणों को खुले मन से गले लगाना चाहिए। जो लोग जी बिल्कुल
0: सुविचार के साथ जब हम अपने कार्यक्रम को शुरू करें
1: हाँ,
0: तो और मजा आएगा ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज का सुविचार क्या है? आज है, जैसे वर्षा के बाद धरती निखर उठती है
1: हाँ?
0: वैसे ही संघर्ष के बाद जीवन भी खिलखिला उठता है। ये सुविचार हमें जीवन का एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संदेश देता है। जब गर्मी की तपिश से धरती सूख जाती है, पेड़ पौधे मुरझाने लगते हैं और चारों ओर उदासी सी छा जाती है, तब वर्षा की पहली बूंदें धरती को नया जीवन दे देती हैं। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो जाती है, फूल खिल उठते हैं और प्रकृति का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है।
1: अंजलि, आपने संघर्ष की बात की, वैसे तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी ये होती है कि संघर्ष जो होता है वो हमें बेहद मजबूत बनाता है, अनुभव देता है और हमारा जो व्यक्तित्व है उसको निखार देता है। यानी कि कहते हैं ना कि जब कष्ट होता है तभी इंसान निखर कर सामने आता है। तो जिस प्रकार से वर्षा के बिना धरती की जो हरियाली है वो अधूरी रहती है, उसी प्रकार संघर्ष के बिना जो सफलता है उसका आनंद भी अधूरा होता है।
0: यदि हम पूरे तो बारिश की बूंदों का
1: जिक्र किया,
0: कुछ और है।
1: बिल्कुल। और कठिनाइयां हमें, हम ये बताना चाहेंगे, कठिनाइयां जो होती है हमारे जीवन में जो आती है अंजलि, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं आती बल्कि और बेहतर बनाने के लिए आती है।
0: तो अब इसी बात पर हम सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: निधि, बारिश के इस गीत के बाद बारिश हो भी रही है अच्छी, हम सब इसका आनंद भी ले रहे हैं,
1: है ना? बिल्कुल, इतना अच्छा आपने अंजलि गाना सुनवाया है, गुरु फिल्म का ये गाना, तो इसमें जो बारिश का जो सीन है वो देख के मजा ही आ गया। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इस बार अंजलि मॉनसून जो है वो एक हफ्ता लेट जरूर आया है, लेकिन मजा ही आ गया। और ये भी अपने श्रोताओं को जानकारी देते चलें कि बहुत से जिले ऐसे भी हैं जहाँ इसके लिए अलर्ट भी जारी किया गया है, क्योंकि कई जगह जो भूस्खलन भी हुआ है और यातायात भी बाधित हुआ है।
0: बिल्कुल, लेकिन जानती हूँ यही पानी हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, हाँ। क्योंकि यही पानी हमारे किसानों को, हमारे पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम लेकर आए हैं अपने श्रोताओं के लिए नंद किशोर वर्मा, जल संरक्षण कार्यकर्ता से रमनप्रीत सिंह की बातचीत। विषय है पानी जहाँ भी गिरे, जब भी गिरे उसे इकट्ठा करें। तो आइए सुनते हैं।

0: आज सुबह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रमनप्रीत सिंह। दोस्तों, जल ही जीवन है, लेकिन आज के दौर में इस जीवन को सहेजने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी दोनों की है। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया कैच द रेन इसी दिशा में बेहद जरूरी और क्रांतिकारी कदम है, जिसका मूल मंत्र है पानी जहां भी गिरे, जब भी गिरे, उसे इकट्ठा करें। आज हमारे स्टूडियो में इस अभियान, इसकी बारीकियां और जल संरक्षण के महत्व पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बेहद खास मेहमान नंद किशोर वर्मा जी, जिन्हें जल दूत के नाम से भी जाना जाता है। यही नहीं, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इनको जलनायक और रक्षा मंत्रालय की ओर से जल योद्धा की उपाधि मिली हुई है। आकाशवाणी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप बहुत सरल शब्दों में बताइए कि कैच द रेन अभियान की शुरुआत क्यों हुई, कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया। कैच द रेन अभियान की शुरुआत के पीछे जो मंशा थी भारत सरकार की, कि जिस तरह से हमारे जल संसाधन तेजी से खत्म हो रहे थे, भूमिगत जल स्तर भी बहुत तेजी से लगभग 1 मीटर

0: प्रतिवर्ष के रूप में नीचे जा रहा था, और ऐसी अवस्था में जहां सप्लाई और डिमांड में भारी दिक्कतें आने लगी, तो उन जल संसाधनों को पूरा करने के लिए आने वाले भविष्य में कि जल की कमी ना हो, तो भारत सरकार ने 22 मार्च 2021 को इस अभियान का शुभारंभ किया। और इसका मूल उद्देश्य ये रहा कि हम जल का संरक्षण कैसे करें और किस स्तर पर करें ताकि भविष्य में जल की कमी हमारे देशवासियों को ना हो।
1: नंदकिशोर जी, जब ये कहते हैं कि पानी जहां भी गिरे, जब भी गिरे, उसे सहेजें, तो आम शहरी या ग्रामीण नागरिक अपने घर के स्तर पर इसे आसानी से कैसे लागू कर सकता है?
0: ये जिस प्रकार से जल की आवश्यकता जन जन की है, और चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हम सभी जन सामान्य का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये संसाधन हमारे बच्चों के हैं और भविष्य के लिए है, तो इनको सहेजने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तमाम सारे प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण अंचल में तो बहुत

0: आवश्यकता जन जन की है, और चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, हम सभी जन सामान्य का एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि ये संसाधन हमारे बच्चों के हैं और भविष्य के लिए है, तो इनको सहेजने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर तमाम सारे प्रयास हम कर सकते हैं। जैसे ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे तौर तरीके होते हैं, उनके पास कच्ची भूमि होती है, कुएं तालाब झील होते हैं, उनके माध्यम से पानी का संरक्षण वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए खासतौर से हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो छत के पानी का संचयन करें, और दूसरा हमें ये भी संचयन के साथ ही साथ ओवर हेड टैंक के माध्यम से जो पानी बह जाता है उस पर भी हम अपना ध्यान रखें, ताकि जो अमूल्य निधि है जल के रूप में हमको मिलती है प्रकृति से, इसको हम संरक्षित करें।
1: तो शहरों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं या प्रयास किए जा रहे हैं कुछ?
0: जी, कैच द रेन के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में इसका बड़ी सूक्ष्मता से और बड़े स्तर पर जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। स्कूलों में भी इसकी कक्षाएं लगती हैं और प्रशासन के माध्यम से, और स्कूल भी इस मामले में अपना सहयोग दे करके बच्चों में जागरूकता लाने के लिए कि बच्चों में एक बचपन से माइंडसेट हो जाए कि जल को हम कैसे संरक्षित करें, तो एक बड़ा अच्छा अभियान और जिसका लाभ भी समाज को मिले।
1: कोई भी अभियान वर्मा जी जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता है।
0: जी,
1: इस अभियान से युवाओं, महिलाओं और स्कूली बच्चों को जोड़ने के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनाई जा रही है?
0: जहां तक भारत सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, कैच द रेन के माध्यम से एक तो गणना की जा रही है कि कितने तालाब हैं, झील हैं, पोखर हैं, शहर में कहां कहां पर जल को संरक्षित किया जा सकता है, तो उसके लिए एक तो गणना की गई, और उस गणना के हिसाब से देखा जाए कि लगभग 36 करोड़ एक तो पौधे लगाए गए, दूसरा 24 लाख ऐसी संरचनाएं मिली शहर और ग्रामीण अंचल दोनों को मिलाकर के, जहां पर जल संरक्षण आसानी से किया जा रहा है। आपका दूसरा प्रश्न था कि ये जन आंदोलन के रूप में इसको लाया जाए, क्योंकि जल सबकी आवश्यकता है, तो इसको जन आंदोलन बनाने के लिए सरकार अनेकानेक प्रयास कर रही है, कई माध्यमों से, रेडियो के माध्यम से और स्लोगन के माध्यम से, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर के माध्यम से, विद्यालयों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से, तो बहुत सारे ऐसे माध्यमों से सरकार प्रयास कर रही है कि बच्चों में इसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया जाए।
1: वर्मा जी, आप जलनायक हैं, जल योद्धा हैं, जलदूत हैं, आपने जमीनी स्तर पर बहुत से काम किए हैं
0: जी,
1: तो आप ये सबसे बेहतर बता सकते हैं कि जल संरक्षण के रास्ते में सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौतियां क्या आती हैं? जैसे कि कई बार सिस्टम लगा दिए जाते हैं लेकिन उनका रखरखाव नहीं किया जाता, तो इस पर आपका क्या कहना है?
0: इसमें सबसे जो बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं कि लोगों में, समाज में जागरूकता जहां पर उनको सीधे लाभ मिलता है वहां पर तो आसानी से उन अभियानों से समाज जुड़ जाता है, लेकिन जहां पर सीधे लाभ नहीं मिलता है तो थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। लेकिन उनके जब जल के दुरुपयोग और सदुपयोग के बारे में चर्चाएं होती हैं तो समाज धीरे धीरे जुड़ता है और उसकी आवश्यकता को समझता है। तो और जहां तक जन चेतना के साथ ही से, जैसे जैसे जन चेतना जग रही है और कहीं कहीं ऐसी भी दिक्कतें आ रही हैं कि जो आपने कहा कि संरचनाएं खड़ी कर दी जाती हैं, वाटर रिचार्ज सिस्टम लगा दिए जाते हैं या वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगा दिए जाते हैं, उनका रखरखाव जब कोई आंदोलन के रूप में काम करता है या समाज के उस स्तर तक पहुंचता है, लोग जागरूक होते हैं, तो कोई न कोई निकल करके उसको अपनाता है और ऐसे संसाधनों को जो रिचार्जिंग हो या हार्वेस्टिंग के जो पॉइंट्स हैं उनके लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए, और सरकार उसकी जिम्मेदारी उस छोटे क्षेत्र या उन जैसे ब्लॉक स्तर पर लगाया जा रहा है, जैसे 670 करीब केंद्र बनाए गए हैं जहां पर इस तरह के कार्रवाई, इस तरह के जल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, और जल सहेलियां के रूप में हो या ऐसे से कई अभियानों के माध्यम से उसकी तरफ भी सरकार का पूरी तरह से अच्छा रुख बनाया जा रहा है, उसके परिणाम भी अच्छे मिल रहे हैं।
1: मतलब लोगों को सरकार की तरफ से जागरूक किया जा रहा है कि वो जो सिस्टम लगा रहे हैं जल संरक्षण के लिए उनका रखरखाव वो कैसे कर सकते
0: जी।
1: कैच द रेन अभियान के तहत अब तक के परिणाम कैसे रहे हैं और आने वाले सालों में देश में वाटर टेबल यानी भूजल स्तर को सुधारने के लिए क्या लक्ष्य?

0: भूजल स्तर सुधारने के लिए सबसे बड़ा तो एक अभियान जो चल रहा है कैच द रेन का चल ही रहा है, दूसरा खेत में मेड़, मेड़ पर पेड़, इस तरह के एक अभियान चल रहा है जो बांदा में जहां तक देखा है हमने कि बांदा में इसका अच्छा परिणाम निकल के आया है। जहां पर वाटर टेबल 200 फीट पहुंच गई थी वो धीरे धीरे 5 मीटर 3 मीटर इस तरह अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वाटर टेबल बढ़ा है। इससे पता चलता है कि इन अभियानों से लाभ कितना हो रहा है, वाटर टेबल कितना बढ़ रही है, तो धीरे धीरे इसका एक अच्छा परिणाम सामने आ रहा है।
1: अच्छा वर्मा जी, ये भी सुना है मैंने कि साहित्य के माध्यम से आप जल संरक्षण पर जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं
0: जी,
1: तो आज हमारे श्रोताओं को एक दो दोहों के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हमारा तो एक ये रहता है कि नदियां झील तालाब सब, नदियां झील तालाब सब वसुधा के ये अंग, बिछुड़ गए पुनि ना मिले, बिगड़ेंगे सब रंग, बिगड़ेंगे सब रंग। नदियां जीवन दायनी, जल का यह भंडार, बिन पानी जीवन नहीं, ना बिन नदियां उद्धार, ना बिन नदियां उद्धार।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, पानी की हर एक बूंद कीमती है और इसे बचाना किसी एक सरकार या विभाग का नहीं बल्कि हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। आज आपने हमारे श्रोताओं के साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं, इसके लिए आकाशवाणी परिवार और हमारे सभी श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हमारा भी आप सभी श्रोताओं को और आमंत्रित करने के लिए आकाशवाणी परिवार का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने इस अहम कार्यक्रम में मुझे हिस्सा अपना बात रखने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेकर आप भी अपने घर और आसपास वर्षा के जल को सहेजने का संकल्प लेंगे। याद रखिए, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। आज सुबह की अगली कड़ी में फिर से उपस्थित होंगे किसी खास विषय के साथ और साथ ही साथ किसी खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रमनप्रीत सिंह को अनुमति दीजिए।
2: निधि, नंद किशोर वर्मा जी ने कितनी अच्छी बातें बताई कैच द रेन और अपने साहित्य की बातों के साथ कि हमें पानी का संरक्षण कैसे करना चाहिए, उसे कैसे बचाना चाहिए, जो ये बारिश हो रही है ये हमारे लिए आगे कितनी काम आएगी।
3: और साथ ही ये भी कहा कि जहाँ भी गिरे जब भी गिरे उसको संरक्षित करें
2: तभी वो हमारे आगे काम आएगी। तो नंद किशोर वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भेंट कर रहे थे रमनप्रीत सिंह जी।

0: मेजबानों ने। साथ ही ये भी आपको बता दें अंजलि कि बारिश की बात हो रही है तो जब भी बारिश होती है जो भीनी भीनी सुगंध खुशबू आती है ना एकदम मतलब दिल को छू जाती है,
1: मन में बस जाती है,
0: मन में बस जाती है। और हमें लगता नहीं कि ये ऐसी जो खुशबू है किसी को ना पसंद आती है, सबको पसंद आती है। और आज अंजलि 11 जुलाई है और एक जो खास विशेष दिन है इसके बारे में भी बताते चलें अपने श्रोताओं को कि आज 11 जुलाई है यानी आज विश्व जनसंख्या दिवस है। ये दिवस बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और साथ ही जो अवसर हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। और पहली बार की बात करें तो पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया था।
1: बिल्कुल। और इस वर्ष 2026 में विश्व जनसंख्या दिवस का विषय है युवाओं को निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना है। विद्यालय और संगठन इस विषय का उपयोग अपने अभियानों, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताओं या जागरूकता रैलियों के साथ कर सकता है। विश्व जनसंख्या दिवस का पालन करने से जिम्मेदार परिवार नियोजन, युवा सशक्तिकरण और सशक्त विकास को बढ़ावा मिलता है ना?
0: बिल्कुल।
1: और अब हम बात करते हैं मौसम की। रिमझिम बूंदे गुनगुनाकर खुशियों का संदेश सुनाती हैं।
0: हाँ।
1: सोनी धरती की हर धड़कन हमें नई उमंग जगाती है। सावन की मस्ती छाई है, हर मन झूम झूम गाता है। बारिश का प्यारा मौसम जीवन में उत्सव ले आता है। और आज का ये बारिश का मौसम क्या संदेश ला रहा है ये जानने के लिए चलते हैं सीनियर साइंटिस्ट IMD मोहम्मद दानिश जी से बात करने के लिए।
2: हेलो
3: जी,
2: नमस्कार दानिश जी।
3: नमस्ते।
2: आज सुबह कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है
3: जी। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग। आज मौसम कैसा रहेगा तो बताइए प्लीज
3: जी। मौसम की बात करें तो जैसा कि एक निम्न दबाव का क्षेत्र सेंट्रल यूपी पे बना हुआ है जिसके वजह से पिछले दो दिन से लखनऊ और आसपास के इलाकों में अच्छी वर्षा हो रही है। अगर हम बात करें तो आज भी दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी और साथ ही में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। ये सिलसिला आज और कल रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसमें कमी देखने को मिलेगा।
2: अच्छा।
3: तो मिला आज और कल दो दिन थोड़ा मौसम खुश होना बना रहेगा।
2: अच्छा, तो दो दिन हम सभी भी खुश रहे कि बारिश होगी, आगे फिर मौसम बदलेगा, फिर आएगा
3: मॉनसून का फिर मौसम बना रहेगा।
2: अच्छा ठीक है दानिश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओके धन्यवाद।
2: नमस्कार।

0: और अब हम अपने श्रोताओं को इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। आज के दिन यानी 11 जुलाई 1987 में दुनिया की जनसंख्या 5 अरब के आंकड़े तक पहुंच गई थी। इसी के बाद विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। और आज के दिन 1879 में आज के दिन सोवा बाजार क्लब किसी फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बना।
1: और साथ ही आपको बता दें कि 11 जुलाई 2011 में नेपच्यून ग्रह ने अपनी खोज के बाद पहली परिक्रमा पूरी की। और साथ ही आज ही के दिन ही 2008 की बात कर लेते हैं तो एप्पल ने 3G आईफोन रिलीज किया था।
0: बिल्कुल। और एक इवेंट के बारे में भी हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 12 जुलाई को एक बार फिर हरियाली के क्षेत्र में नया इतिहास रचने जा रही है, जिसमें हरितमा उत्सव के तहत पूरे प्रदेश में एक ही दिन में 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। 15 अगस्त को वंदे मातरम, वाटिका, रक्षाबंधन पर भाई बहन पौधारोपण और शिक्षक दिवस पर एक पेड़ गुरु के नाम अभियान चलाया जाएगा। वृहद पौधारोपण के लिए वन विभाग ने प्रदेश की लगभग 2000 नर्सरियों में 52.44 करोड़ पौधे तैयार किए हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है कि हम इस बारिश के मौसम में पौधे लगाएं।
1: और साथ ही हम आपको ये बता दें, जैसा कि अभी आपने बताया अंजलि, कि 35 करोड़ पौधे लगाने का जो लक्ष्य है ये कल से शुरू हो रहा है। और साथ ही जैसे एक पेड़ माँ के नाम अभी आपने बताया, एक पेड़ गुरु के नाम भी लगाया जाएगा। और साथ ही ना सिर्फ लगाना है अंजलि, यहाँ पर सीएम योगी का सख्त निर्देश ये भी है कि ना सिर्फ आपको पेड़ पौधे लगाने हैं बल्कि उनको संरक्षित करना,
0: बिल्कुल
1: उनको सुरक्षित भी करना है।
0: जब तक हम उनकी देखरेख नहीं करेंगे तो वो पनपेंगे कैसे, बड़े कैसे होंगे, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी के साथ अब आज का आज सुबह कार्यक्रम समाप्त करने की अंजलि श्रीवास्तव
1: और निधि श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार। और इसी के साथ श्रोताओं नमस्कार, लखनऊ कार्यक्रम भी यही समाप्त हो रहा है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता

0: एकता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
1: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है। और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम

0: ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेस्सी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defence, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और न्यूजीलैंड ने दिफा, कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त और मवेशियों की अफजाइश नस्ल समेत अहम शोबों में 5 मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद इक्तसादी और दिफाई तआवुन में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब

0: क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की है। उन्होंने भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान FTA को ऐसा तारीखी संग मील करार दिया है जिसे दोतरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिलेगी। भारतीय बहरिया आज विशाखापट्टनम में मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्र गिरी को अपने कामकाज में शामिल करेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत बहरीन खित्ते में अमन इस्तेहकाम का एक बुनियादी जामिन है। वजीर दाखिला अमित शाह ने बंदरगाहों की हिफाजत का ब्यूरो शुरू करने के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मजबूत साहिली सिक्योरिटी के इकदामात की हिदायत दी। फीफा आलमी कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। उधर आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में आज खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में चेक जमहूरिया की कैरोलिना मुचोवा का मुकाबला अपनी हमवतन लिंडा नोस्कोवा से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और न्यूजीलैंड ने आज 5 अहम मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं जिनमें दिफा, मवेशियों की अफजाइश नस्ल और डेरी, सियाहत, खेलकूद और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त के शोबे शामिल हैं। ये दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में एक नया बाब है। इन माहिदों पर दस्तखत ऑकलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत के बाद किए गए। इससे पहले वफ्द की सतह की बातचीत के दौरान वजीर आजम मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड उनका ये दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संग मील की हैसियत रखता है और इससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा होगी। वजीर आजम ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमन इस्तेकाम और सलामती को मुस्तहकम बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं।
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम ने जनाब मोदी के दौरे को एक तारीखी संग मील करार दिया जो पिछले 40 वर्षों में भारत के किसी वजीर आजम का न्यूजीलैंड का पहला दौरा है। जनाब लक्सन ने जनाब मोदी का खैर मकदम करते हुए कहा कि उनकी मेजबानी उनके लिए खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा ताल्लुकात की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा होता है। दोतरफा बातचीत से पहले गवर्नमेंट हाउस में एक इस्तकबालिया का अहतमाम किया गया था जिसमें वजीर आजम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद में वजीर आजम मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हमनसब ने ऑकलैंड में 2026 की भारत न्यूजीलैंड तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक एक तकरीब में शिरकत की जिसमें दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अपने अज़्म को दोहराया। वजीर आजम के दौरे की खबरें देने वाली हमारे नामा निगार की एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम मोदी ने सरकर्दा ताजिरों से खिताब करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आजाद तिजारती समझौता महज 9 महीने में ही मुकम्मल कर लिया गया है जिससे दोतरफा ताल्लुकात में एतबार और रफ्तार का अंदाजा होता है। उन्होंने एतमाद जाहिर किया कि दोतरफा तिजारत 2030 तक दोगुना हो जाएगी। वजीर आजम ने अगले 15 साल में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के न्यूजीलैंड के अज़्म को भी उजागर किया। उन्होंने इसे बढ़ती हुई इक्तसादी शराकत दारी में एक बड़ा संगमेल करार दिया। भारत को मौकों की सरजमीन करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत महज एक मार्केट नहीं है बल्कि ये आलमी सतह पर तरक्की करने के लिए एक लॉन्च पैड भी है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि पॉलिसी असलाहत, मैनुफैक्चरिंग तरगीबात, आलमी दर्जे की मसनूआत साजी और बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से भारत आलमी सरमायाकारी के लिए एक तरजीही मुल्क बन गया है। वजीर आजम मोदी ने दोनों मुल्कों के नौजवानों के दरमियान मजीद सरगर्मियों के लिए भी कहा। उन्होंने तजवीज रखी कि 35 साल से कम उम्र के कारोबारी जज्बे वाले अफराद पर मुश्तमिल तजारती वफूद को एक दूसरे के मुल्कों में लगातार दौरे करते रहना चाहिए ताकि तवील मुद्दती शराकत दारी कायम की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुस्तकबिल में इख्तिराकारों और कारोबारी भारत न्यूजीलैंड इक्तसादी तआवुन की तश्कील करेंगे। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड से मंजू मीना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: जनाब मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान आवाम से आवाम के रिश्तों की अक्कासी के सिलसिले में आज भारतीय बिरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। वजीर आजम तीन मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत कल ऑकलैंड पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का दौरा किया था। भारतीय बहरिया अपने छठे प्रोजेक्ट 17A के तहत

0: मुल्क में ही तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज महेंद्रगिरी F-38 को आज आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में अपने मशरकी बेड़े में शामिल करेगी। इस तकरीब की सदारत वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे। ये दिफा के शोबे में खुद किफालत और जंगी जहाज़ों को मुल्क ही में तामीर करने की जानिब एक और अहम कदम है। इस जहाज को बहरिया में शामिल किए जाने की तकरीब के मौके पर बड़ा खाना के दौरान बहरी अमले से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बहर हिंद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की बुनियादी जामीन के तौर पर भारत के मौकफ को दोहराया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: भारतीय बहरिया के जंगी जहाज़ों को डिज़ाइन करने वाले ब्यूरो के डिज़ाइन करदा और मुंबई में मजगन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का तामीर करदा ये जहाज़ महेंद्रगिरी एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो जदीद तरीन हथियारों, हसास आलात और इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ाम से लैस है। ये जहाज दुश्मन के हथियारों को फजा और ज़मीन में नीज आबदोज कर सकता है। ये समंदर में सलामती के लिए गश्त, तलाश और बचाव का काम भी अंजाम दे सकता है। ये जहाज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद, कुदरती आफात की सूरत में राहत कार्रवाई और बहरे हिंद खित्ते में मुस्तकिल तैनाती की खिदमात भी अंजाम दे सकता है। इस जहाज का नाम मशरकी घाट के महेंद्रगिरी पहाड़ी सिलसिले पर रखा गया है। हुकूमत ने कहा है कि इसे कामकाज में शामिल किए जाने से भारतीय बहरिया की कार्रवाई की सलाहियत में इजाफा होगा और बहरी जहाज़ों की मुल्क ही में तामीर के मैदान में एक सरकर्दा मुल्क के तौर पर भारत की हैसियत उजागर होगी। इस जहाज से बहरे हिंद खित्ते में भारत को सलामती के शोबे में शराकतदार मुल्क के तौर पर एक तरजीही मुल्क की हैसियत कायम होगी। विशाखापट्टनम से अल्लू मुराली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: कोयले की वजारत ने कोयला ब्लॉकों की तजारती नीलामी के 15वें मरहले के लिए बोलियों का अमल शुरू कर दिया है। वजारत ने बताया कि इन मरहलों में जिन 23 कोयला ब्लॉकों की पेशकश की गई थी उनमें से 8 के लिए कुल 21 बोलियां मौसूल हुई हैं, जिससे भारत के तजारती कोयला कानकनी के फ्रेमवर्क में सनअतों की मजबूत शिरकत की अक्कासी होती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के साहिली सलामती के निज़ाम को इंतहाई पुख्ता बनाने के तई अहद बस्ता है। जनाब शाह ने बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल के साथ ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS के क्याम से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा लेते हुए ये बात कही। वजीर दाखिला ने कहा कि बंदरगाहों की सलामती की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को ही दी जानी चाहिए और उनकी हिफाजत के लिए CISF के जरिए तरबियत याफ्ता एहलकारों को ही तैनात किया जाना चाहिए। जनाब शाह ने BOPS के तहत तैनात किए जाने वाले सभी हिफाजती एहलकारों का जामे डेटाबेस तैयार करने की भी अफसरान को हिदायत दी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि BOPS हिफाजती फ्रेमवर्क के तहत आने वाली सभी बंदरगाहों को कंटेनर स्कैनिंग सहूलतों से लैस होना चाहिए। वजीर दाखिला ने विशाखापट्टनम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और मुंदड़ा बंदरगाह समेत बड़ी बंदरगाहों पर मुजवजा सिक्योरिटी इंतजाम की आजमाइश करने की CISF को हिदायत दी। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी BOPS बहरी जहाज़ों और बंदरगाहों की सहूलतों की हिफाजत का मायना करने और उन्हें मुंजबित करने का जिम्मेदार है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर, सरहदी इंतजाम से मुतालिक सेक्रेटरी, बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के सेक्रेटरी और माही परवरी के महकमे के सेक्रेटरी, नीज CISF के डायरेक्टर जनरल और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मर्चेंट जहाजरानी कानून 2025 की दफा 13 के तहत ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क्याम को कानूनी इदारे की शक्ल दी जा रही है। ये ब्यूरो बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत के तहत डायरेक्टर जनरल के मातहत काम करेगा। ये ब्यूरो सलामती से मुतालिक मालूमात मुश्तरक करने, तज्जिया करने और उन्हें बरवक्त जमा करने की यकीनी बनाएगा। इसके अलावा ब्यूरो साइबर सलामती पर खसूसी तवज्जो देगा और एक मखसूस डिवीजन साइबर हमलों के खिलाफ बंदरगाहों के IT बुनियादी ढांचे को तहफ्फुज़ फराहम करेगा। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बे।
0: नायब सदर CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। इस दौरान नायब सदर गया के बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट में बिहार कानून साज असेंबली के अराकीन के तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुकासमत में हालिया इजाफे के बावजूद वाशिंगटन और तहरान बातचीत जारी रखने पर रजामंद हो गए हैं। तहम सदर ट्रंप ने यह ऐलान किया कि फरीकैन के दरमियान गुज़िश्ता महीने हुई जंगबंदी खत्म हो चुकी है। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस कार्यक्रम में मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके साथ हूँ। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस कार्यक्रम का ईमेल एड्रेस बता देते हैं। आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप इस ईमेल एड्रेस पर हमें मेल भेजिए और सुनिए अपनी पसंद के गीत।

हमारे पास पहला मेल आया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव संजय ढींगिया संदीप मक्कड़ अनिल जैन और दर्शन भाई का। और एक मेल है हमारे पास लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाब साबिर राही मेरा जहां। और अगला मेल है हमारे पास कुरावली से अनिल कुमार वर्मा माया देवी राहुल वर्मा विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का। आप सभी सुनना चाहते हैं फकीरा फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जो गीत आप सुनना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास मेल भेजा है जिला खरकौन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा और आयुषी वर्मा ने। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का। और एक मेल है हमारे पास हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमलजीत कौर का। आप सभी सुनना चाहते हैं कसूर फिल्म का गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

0: से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। अब जो गीत हमारे श्रोता सुनेंगे उसके लिए हमारे पास मेल भेजा है जिला रायबरेली से रामराज राजभानु, रामशंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, मिर्जा तुराक बेग और पप्पू पासीनी। और एक मेल है हमारे पास राजकोट गुजरात से रश्मि, छन्ना और भरत कुमार का। और हमारे पास एक मेल और आया है, वो है पंजाब से, संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल रंधावा, सुरविंदर कौर रंधावा का। आप सभी सुनना चाहते हैं राम बलराम फिल्म का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में।

मोतावा, मोताला महाराज से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर का मेल है और ये सुनना चाहते हैं दो बदन फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में। और जिला बिजनौर से इसी गीत को सुनने की फरमाइश भेजी है मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर ने। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

लखनऊ पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक सुनना चाहते हैं। जानी दुश्मन फिल्म का गीत किशोर कुमार और अनुराधा पोंडवाल की आवाज़ों में। इसी गीत को सुनने के लिए पंजाब से ही हमारे पास मेल है वडिंग खेड़ा से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा का। तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

किन कारणों से ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, लीजिए अब सुनिए। सनावत मध्य प्रदेश से मेल है मास्टर अशोक वर्मा का, और टीकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा का। आप सभी सुनिए दिल तो पागल है फिल्म का गीत, उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

इसी गीत को सुनने के लिए हमारे पास मेल है कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार संवर्ध देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख और कुमारी कल्पना देशमुख का।

और हम भी अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि अब इस कार्यक्रम से दीजिए अंजलि श्रीवास्तव को अनुमति। मिलेंगे फिर किसी और दिन इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का।
2: अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार

0: किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। SIT जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए DTB योजना का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं DTB योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1,200 रूपए की धनराशि भेजी गयी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
1: पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है।
0: अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के PPE मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी MP सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।
2: चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थोरोली चेक करेंगे। NOC जब भी इशू किया जाता है, जो उनके जो मानक है, हमारा निर्धारित मानक, वो पूरा करते हैं जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं।
3: अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशाल धर दुबे का।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
5: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है।
4: इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने

0: लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा।
1: हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन, ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का।
0: केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ाने शुरू होने के बाद कार्गो उड़ाने भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री केंजेरापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। घिटन ऊर्जा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार उद्योग संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था, स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि सक्सेस मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है।
2: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल कार्यक्रम समाप्त हुआ।
4: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
5: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
4: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
6: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश गान।

0: अभी आप देशगान सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम।
1: सुनो ये फर्ज तुम्हारा भी है हमारा भी। इसी पैगाम के साथ आपके प्रोग्राम की मेजबान रबाब अंजुम रामपुर रेडियो मरकज से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सलाम सुबह कबूल करें सामीन। आज 11 जुलाई है और आज आलमी यौम आबादी है। ये दिन 1987 से मनाया जा रहा है जब दुनिया की आबादी 5 अरब तक जा पहुंची तो वर्ल्ड बैंक में काम करने वाले सीनियर डेमोग्राफर डॉक्टर के सी जकरिया ने तजवीज पेश की कि आबादी का आलमी दिन मनाया जाए। और जब से ही ये दिन हम 11 जुलाई को मनाते आ रहे हैं। आबादी का आलमी दिन मनाने का मकसद आबादी के बढ़ने से पैदा होने वाले मसाइल और उसके हल को उजागर करना है। तो इसी दिन को पेश नज़र रखते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में भी इनेकाद किया है एक मुबाहसे का जिसका मौजू रखा है बढ़ती आबादी और हमारी जिम्मेदारी।

0: तक जाना है उनको सस्टेन करने के लिए, उनके इंस्टीट्यूशन सस्टेन करने के लिए। पूरा कॉन्टिनेंट डाइंग है, पूरे पूरे विलेजेस खाली हो रहे हैं
1: जी।
0: अब फीमेल फर्टिलिटी रेट के बारे में बता दूं, लेकिन सबसे ज्यादा फीमेल फर्टिलिटी रेट जो है वो बीमारू स्टेट्स में है, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश
1: जी,
0: बीमारू स्टेट्स। तो इसमें यूपी की 2.6 है, बिहार की 2.9 है। अब आप उसको देख लें और दूसरों को देखें, केरला 1.5, केरला इज 100% एजुकेटेड,
1: बिल्कुल 100% एजुकेटेड है।
0: आप उसको ले लें,
1: बेहतरीन उनका तर्ज जिंदगी,
0: जे एंड के को ले लें 1.5, यानी नेशनल एवरेज से भी नीचे है
1: जी।
0: तो डिपेंड करता है कि हम ठीक है, हमारे वसाइल लिमिटेड है, हर कंट्री के वसाइल लिमिटेड है, हमारे पास जो फर्टाइल लैंड्स हैं दे कैन सस्टेन, वो सस्टेन किया तभी आगे हैं
1: जी।
0: ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, तो ये सब चीजें हम जो पिछले दिनों में जो इम्पोर्ट करना पड़ता था, गेहूं और ये सब चीजें,
1: वो आज हम खुद पैदा कर रहे हैं,
0: अब हम खुद पैदा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अपनी यंग जनरेशन को प्रॉपरली ट्रेन कर पा रहे हैं चाइना की तरह
1: जी। फजल भाई, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी जो यंग जनरेशन है अगर वो अच्छे से ट्रेंड हो और सही सिमत में चले तो हम भी बड़े ऐसे तरक्की याफ्ता ममालिक का मुकाबला कर सकते हैं, बल्कि उनसे भी आगे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारी ज़मीन है, हमारा जो हुदूद व अरबा है अपने मुल्क का, और उसके अंदर पैदा होने वाली ग़ज़ाएँ हैं, जो अनाज है, क्या वो सब हमारी उस बढ़ती हुई आबादी के लिए काफ़ी है?
2: देखिए, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से जितने इदारे खोले जा रहे हैं वो उनके लिए नाकाफ़ी हो रहे हैं
1: जी।
2: उसकी वजह यह है कि वो आप कभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहीं कोई आईआईटी में चले जाइए, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है। आपको वहाँ वैसे फैसिलिटी मिले लेकिन तब मिले ना। अच्छा, वो जो है एक तबका जो दौलतमंद है वो तो फायदा उठाता है, लेकिन जो गरीब है, जो मिडिल क्लास का है, उसको वो फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से यह है कि उसी की वजह है कि मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। बकौल के 80 करोड़ लोगों को हम फ्री अनाज दे रहे हैं
1: जी।
2: तो ये 80 करोड़ लोगों को अनाज देना क्या मकसद है? इतनी बड़ी तादाद में फ्री अनाज दिया जाना, ये तो जो मुल्क के वसाइल हैं वो भी सब खत्म हो रहे हैं,
1: बिल्कुल, और लोग आदि हो रहे हैं
2: आदि हो रहे हैं
1: तरबी के। डॉक्टर आजमी साहब, जिंदगी की बुनियादी तीन जरूरियात हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारे मुल्क की इस बढ़ती आबादी को किस हद तक मैसर है बआसानी?
3: ये हमारे मुल्क के हालात जो हैं उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि 50% कम से कम लोग ऐसे हैं अभी जो बेघर हैं
1: जी,
3: और बहुत ही सतही जिंदगी गुजार रहे हैं। ना उनके पास तालीम है, ना उनके पास अपना कोई स्टेटस है, ना कोई मेयार है, ना कोई शऊर है। तो उस तरह की चीज़ों को देखकर लगता है कि सोसाइटी अभी हमारी बहुत ही अनकल्चर्ड बिल्कुल फील हो रही है
1: जी।
3: अगर वही एक एजुकेशन हो जाए उनके अंदर, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए तो शायद वो और कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं कि मुल्क क्या है, तरक्की किसे कहते हैं, आबादी किसे कहते हैं, ज़िंदगी क्या है, इसको समझने का शऊर ही नहीं है। अगर ये तालीम और तालीमी बेदारी आ जाए लोगों में तो शायद ये पता चले कि ज़िंदगी किसका नाम है, क्या सबसे पहले कपड़ा ज़रूरी है कि पहले मकान ज़रूरी है, पहले रोटी ज़रूरी है। और ये हालात ऐसे बन चुके हैं कि रोटी तो मिल गई किसी तरह से, तो कपड़े नहीं मिले, कपड़ा मिला तो मकान नहीं मिला
1: जी।
3: तो वो कहीं ना कहीं कमी है। और जिस रेशियो में आबादी बढ़ रही है, वसाइल तो बढ़ नहीं रहे हैं, तो वो दिक्कतें हैं आज और ऐसी होती रही। अगर हमने उस पर कंट्रोल नहीं किया शायद आने वाले दिनों में फुटपाथ वाली ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ जाएगी, फ्लैट की ज़िंदगी कम हो जाएगी। अच्छा, पॉल्यूशन का बढ़ना, बेरोज़गारी का बढ़ना, गुर्बत का बढ़ना, ये तमाम मसाइल जो है वो सब बेरोज़गारी और इससे आपके यहाँ बढ़ती हुई आबादी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आपने उसको सेल्फ कंट्रोल कर लिया तो शायद धीरे धीरे हालात सबके बन जाएं और सब बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें।
1: डॉक्टर साहब, एक थिंकर ने कहा था कि हमारे जो वसाइल हैं वो 1, 2, 3, 4 के रेशो से बढ़ते हैं, जबकि आबादी जो है वो 2, 4, 6, 8, 12 के रेशो से बढ़ती है। तो हमारे मुल्क में जो तेजी से आबादी बढ़ रही है वसाइल के मुकाबले में, उसके वजह क्या है और जिम्मेदार कौन है?
0: देखिए, ये फैमिली प्लानिंग या पॉपुलेशन कंट्रोल जो है ये एक पॉइंट या दो पॉइंट का सिस्टम नहीं होता है कि आप एक लाइन पे चलें पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। ये एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज होता है
1: जी।
0: यानी इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो बच्ची की पढ़ाई
1: जी,
0: यानी माँ की पढ़ाई, पढ़े लिखे

0: जी, अब देखेंगे कि जो बगैर पढ़े लिखे फैमिली हैं उन्हें बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, और जो
1: बिल्कुल
0: पढ़े लिखे माँ है वो एक दो से ज्यादा आगे नहीं बढ़ती है, दो
1: जी
0: तीन। दूसरी बात यह है कि उसको सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल
1: जी
0: सिक्योरिटी में पढ़ाई भी आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट भी आ जाता है,
1: आसानी से वो सब कुछ कर सकती।
0: एम्प्लॉयमेंट।
1: जी
0: तीसरी चीज हेल्थ है, यानी
1: जी
0: उसको मालूम होना चाहिए उस फैमिली को कि मेरे पास दो बच्चे हैं तो वो जवानी तक पहुंच जाएंगे, और
1: जी
0: अब हेल्थ
1: जहां
0: इश्यूज।
1: तक पहुंच सकता।
0: उसके बाद एक सिक्योरिटी का भी मसला है।
1: जी बिल्कुल
0: जब तक लॉ एंड ऑर्डर हमारे मुल्क में नहीं होगा प्रॉपर, तो
1: जी
0: डर और खौफ का जो माहौल है,
1: जी जी जी
0: वो डर और खौफ से जो दबे हुए लोग होते हैं वो अपने आप को ज्यादा असर्ट करने। आप गांव में चले जाइए, जिसका बड़ा खानदान होता है वो ज्यादा हावी होता है।
1: हावी हो
0: जी
1: जाता है। जी जी
0: जी
1: बेशक
0: आप प्रधानी के इलेक्शन में देख लीजिए,
1: जी
0: जाकर
1: जी जी जी तादाद पर मुनहसिर करता
0: तादाद
1: है।
0: पर मुनहसिर होता है।
1: जी
0: तो वहां पर जो ताकत है, या प्रधानी का सपोज करिए या किसी और चीजें जो है, वो ये सोचता है जो कमजोर आदमी है या बगैर पढ़े लिखे फैमिली है, वो ये सोचता है कि मेरे तो हाथ पैदा हो रहा है।
1: जी
0: मान लीजिए वो

0: चल जाइए। जिसका बड़ा खानदान होता है वो ज्यादा हावी होता है,
1: हावी हो जाता है। जी जी बेशक।
0: आप प्रधानी के इलेक्शन में देख लीजिए जाकर,
1: तादाद पर मुनहसर,
0: तादाद पर मुनहसर होता है
1: जी।
0: तो वहाँ पर जो ताकत है या प्रधानी का सपोज करिए या किसी और चीजें जो है, वो ये सोचता है जो कमजोर आदमी है या बगैर पढ़े लिखे फैमिली है, वो ये सोचता है कि मेरे तो हाथ पैदा हो रहा है
2: जी।
0: मान लीजिए वो आदमी जो है वो साइकिल के पंक्चर जोड़ रहा है, तो वो दो वो चाहिए उसको हाथ, तो वो चाह रहा है कि मेरा बच्चा मेरी जगह ले ले, दूसरा बच्चा दूसरे काम पे लग जाए या मजदूरी करने लगे।
1: तो उनकी सोच ये है कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा हमारे माशी हालात बेहतर।
0: गवर्नमेंट को ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज देना पड़ेगा आपको, एजुकेशन इंप्रूव करना पड़ेगी, हेल्थ इंप्रूव करना पड़ेगी, लोगों के एम्प्लॉयमेंट का ध्यान करना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करना पड़ेगा, सोशल
1: इन सब चीजों को इतना आसान करना पड़ेगा कि हर बंदे तक वो बआसानी पहुंच सके, हर एक उसका फायदा उठा सके। अभी आपने एक बात कही सिक्योरिटी के नजरिए से, तो उसी की वजह है शायद कि हमारे मुल्क में कम उम्री की शादियों का भी चलन बढ़ता जा रहा है, हालात को देखते हुए कि जल्दी बच्चे को अपने घर का कर दो ताकि हम इसकी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सके।
0: एजुकेशन जब तक हम इंप्रूव नहीं
1: करेंगे,
0: सिक्योरिटी नहीं देंगे,
1: माँ बाप इस चीज से डरते हैं कि हम कब तक बच्चे की हिफाजत करेंगे, किस तरह उसे बाहर तालीम हासिल करने के लिए भेजें, किस तरह उसको कहीं हम जॉब के लिए भेजें, उससे बेहतर है जल्द से जल्द अपने घर का कर दो।
2: नहीं, ये तो खैर सोच है ही, चूंकि मुल्क के हालात इस तरह के हैं, सियासत असल में इन्वॉल्व है यहाँ
1: जी,
2: कानून के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर, अगर ये सब अलहदा हो जाए और कोई किसी ने पुलिस को आज़ादाना वो कार्रवाई के देते हैं, तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब हर आदमी अपने आप को तहफ़ महसूस करेगा। लेकिन तहफ़ किस लिए नहीं है कि जो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि अभी आबादी जैसी बढ़ेगी, जैसे एक गाँव है वहाँ पर जो एक बड़ी तादाद है एक फिर एक ख़ानदान की, वहाँ भी होता इसी तरह यहाँ भी यही है कि वो तहफ़ नहीं मिल पा रहा है
1: जी।
2: जो हमारी बच्ची हैं, इसलिए हर आदमी खौफज़दा है कि मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल कर रखूं।
1: डॉक्टर साहब, आप तिब्बी मैदान से जुड़े हुए हैं, इस सिलसिले में शरह अमवात जो कम हुई है नई दवाओं के जरिए, क्या वो भी हमारी बढ़ती आबादी के लिए जिम्मेदार है? जैसे पहले होता था कि बहुत तरह की वबाएं फैलती थी, बीमारियां फैलती थी और बस्ती की बस्ती खत्म हो जाती थी, मोहल्ले के मोहल्ले खत्म हो जाते थे, अब हमारी दवाओं ने, हमारे नए नए टीकों ने इस तरह कंट्रोल कर लिया है उन चीज़ों पर, तो क्या वो भी जिम्मेदार है कहीं?
0: देखिए, ये तो एक मुल्क का या एक सोसाइटी का या एक सिविलाइजेशन का एक तरीका कार होता है
1: जी।
0: वैसे ही टेक्नोलॉजिकल आजकल एडवांसमेंट्स कह लीजिए आप, तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स या हेल्थ में एडवांसमेंट्स या ये सब चीज़ें जब होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चाइल्ड की डेथ के रेट है
1: जी,
0: कम, तो वो ऑटोमेटिकली कम होती है। तो ये इट इज़ ए इंडिकेटर दैट आवर हेल्थ सिस्टम इज वर्किंग प्रॉपरली
1: जी,
0: यानी हमारा हेल्थ सिस्टम सही है, उसमें गिरावट आ रही है और गिरावट फीमेल फर्टिलिटी में भी आ रही है। तो इसकी ये वजह नहीं है, ये वजह नहीं है कि हमारे बच्चे ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं या ज़्यादा एडल्ट एज को पहुंच रहे हैं। ये चीज़ को हमें फर्टिलिटी रेट को कम करना है और उसके लिए बहुत से तरीक़ेकार हैं
2: जी।
1: जी,
2: आबादी जो बढ़ रही है रोज़ उसको हमें कंट्रोल करना है,
1: उसमें इजाफे को रोकना
2: हाँ,
1: है।
2: अब इजाफे का क्या है, देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि साहब दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, अभी ये कानून बनाने की बात हो रही थी कि साहब जिसके दो से ज़्यादा बच्चे होंगे वो उसको टिकट नहीं मिलेगा या वो
1: सरकारी नहीं हो सकता है,
2: सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती।
1: डॉक्टर आज़मी साहब, ये जैसा हम अभी बात कर रहे हैं कि आबादी को हम कंट्रोल करें, उसमें इजाफे की तरफ तवज्जो दें, तो उसके लिए ये जिम्मेदारियां सिर्फ हुकूमत की ही हैं या अवाम की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि अपने मुल्क को बेहतर वसाइल देने के लिए, अपने मुल्क को तरक्की देने के लिए आम आदमी को भी ये सोचना पड़ेगा या हुकूमत ही इसके लिए कोई ऐसा सख्त कदम उठाए?
3: नहीं, इसमें तो दोनों को सोचना पड़ेगा। एक तरफ एक पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी पड़ेगी कि अगर आपने इन चीज़ों को इख्तियार किया तो ये नुकसान हो सकते हैं, उसको अपने प्रोग्राम के जरिए अवेयरनेस पब्लिक के अंदर लानी पड़ेगी। और हम खुद एक जिम्मेदार शहरी अगर हैं तो हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क, हमारा वतन या हमारा परिवार, हमारा समाज खुशहाल कैसे बने। खुशहाल बनने के लिए वसाइल का बढ़ना, आबादी का घटना, कम होना, मतलब ये दोनों ज़रूरी है। अगर दोनों रेशियो बराबर चलते हैं तो एक खुशगवार ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं, एक अच्छा माहौल अपने मुल्क का बना सकते हैं। ये दोनों की ज़रूरत है कि दोनों अपनी अपनी पॉलिसी बनाएँ।

0: और एक पढ़ा लिखा इंसान और सोचे कि हम हमारी
1: हमारी
0: जिम्मेदारी
1: क्या
0: क्या होती है।
1: जिम्मेदारी है। बिल्कुल।
0: अगर वो जिम्मेदारी निभाता है तो कामयाब है, और नहीं निभाता है तो सबके सब नाकाम होगा।
1: तो हमारा जो आज का ये मुबाहिसा था, तबादला ख्याल था, इसका लुभलुभाव यही निकलता है कि जो बढ़ती आबादी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मसाइल पैदा कर रही है। हमारे जंगल कटते जा रहे हैं इसलिए कि हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए, हमें अपने बच्चों को आबाद करने के लिए घर बनाने हैं, पेड़ कट रहे हैं लकड़ी के इस्तेमाल के लिए, जिसकी वजह से हमारा जंगली जो जिंदगी है, जंगली जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं, वो भी कम होते जा रहे हैं, जिससे फिजाई आलूदगी, तरह तरह की परेशानियां पैदा हो रही हैं, जंगली जानवर बस्तियों के अंदर दाखिल हो रहे हैं।
0: इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हो रहा
1: जी
0: है।
1: हाँ, खेती की जमीन कम होती जा रही है। कहना बेजाना होगा कि एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और खेत पक्की सड़क ने निगल लिया, एक और गांव शहर की वसत में खो गया। तो इन हालात को देखते हुए हम हर हिंदुस्तानी, बल्कि दुनिया के हर इंसान की ये सोच होनी चाहिए कि हम उतनी ही आबादी अपने घर की, अपने खानदान की बढ़ाएं, जिसे हम बेहतर वसाइल मुहैया करा सकें और जिसे बेहतर तालीम के साथ हम अपने मुल्क के लिए मुस्बत सोच वाला शहरी बना सकें,
0: बिल्कुल
1: ताकि वो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को एक आइडियल मुल्क, एक आइडियल शहर बना सके और हम तरक्की की दौर में दूसरे ममालिक से आगे निकल सकें। तो सामीन, अभी हमने बढ़ती आबादी और हमारी जिम्मेदारी इस मौजू पर तबादला ख्याल किया, और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आज हमारे मधु किए हुए जो मेहमान यहाँ तशरीफ लाए थे, एक बार फिर उनके बारे में आपको बता दें, हमारे साथ थे डॉक्टर इश्तियाक आलम आज़मी साहब, डॉक्टर महमूद अली खान साहब और जनाब फजल शाह फजल साहब। हम अपने मेहमानों के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर इस अहम मौजू पर अपने कीमती ख्यालात का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आप रामपुर मरकज पर तैयार आज का ये प्रोग्राम खत्म करने की अपनी मेजबान रबाब अंजुम को इजाजत दें। अलविदा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नशर किया जा रहा था।
3: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई जान।
4: कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
3: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर, गूंजे सफलताओं की आवाज।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं रश्मि उपाध्याय के गाए अवधि लोकगीत। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं ये देवी गीत।

मौरी अंगनामा मैया पधारी। अभी आपने रश्मि उपाध्याय की आवाज़ में ये देवी गीत सुना और इनकी ही आवाज़ में अब हम आपको सुनवाते हैं लोक भजन।

0: रश्मि उपाध्याय की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये लोक भजन। संगत कर रहे थे ढोलक पर मोहम्मद सलाम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बासी पर थे मुकेश कुमार और साइट रिदम पर शैलेंद्र सिंह। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब समाप्त हुआ।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ के इंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मंजिल फिल्म से, आवाज़ है किशोर कुमार की।

फिल्म संगीत के बाकी नगमे हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:20 से। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण हमारी दिल्ली केंद्र से।

आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हुई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 9 बजे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्ष के लिए सहयोग रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला, सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए

0: समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने पर भी सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और उसके विस्तार की आवश्यकता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार्य समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने ऑकलैंड में इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट 2026 कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता केवल 9 महीने में पूरा होना दोनों देशों के मजबूत विश्वास का प्रमाण है।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड अगले 15 वर्ष में भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध ईरान के नए नेता मुज्तबा खामेनेई के एक प्रमुख वित्तीय सहयोगी सहित 13 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर लगाए गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार दुबई स्थित ईरानी बैंकर और कारोबारी अली अंसारी पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। उन पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने का आरोप है। अमेरिका ने ईरान से जुड़े 3 एक्सचेंज हाउस और कई कंपनियों को भी प्रतिबंधों के दायरे में शामिल किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य ईरान के शीर्ष नेतृत्व की वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से हुर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया है कि खाड़ी क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए

0: मध्यस्थ के रूप में कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान जा रहा है। वेनेजुएला में पिछले महीने आए दो शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं। वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। 24 जून को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंपों से लागुएरा प्रांत में भारी तबाही हुई थी। संयुक्त राष्ट्र ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए लगभग 30 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता की अपील की है। नाइजीरिया में सुरक्षा एजेंसियों ने लगभग 2 महीने पहले अगवा किए गए शिक्षकों और स्कूली बच्चों को सुरक्षित बचा लिया है। ये कार्रवाई दक्षिण पश्चिमी ओयो राज्य में की गई। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार अभियान के दौरान 8 संदिग्ध अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जबकि कई अन्य मारे गए। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया। वर्ष 2030 तक वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। पश्चिम एशिया में गहराते संकट के बीच अमेरिका ने ईरान से जुड़े व्यक्तियों पर नए प्रतिबंध लगाए। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हुई। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने देश के लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है चितपट से कार्यक्रम। इसमें सुनिए कुछ नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। आवाजें हैं ऐश किंग और शाशा तिरुपति की।

आप सुन रहे थे फिल्म संकेत, मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।

0: मॉर्निंग सर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं?
0: अनु पांडे गोंडा से।
1: अनु जी कैसी हैं आप?
0: सर मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी आपसे बात करके बहुत अच्छी हो गई हूँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरी कॉल लग गई।
1: आपके लिए आज का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। क्या करती हैं अनु आप?
0: सर मैं तो पढ़ाई करती हूँ और रेडियो के साथ मस्ती।
1: अच्छा बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। गाना बताएं कौन सा सुनवाना है?
0: सर मुझे गाना सुनना है फिल्म का नाम है सावन को आने दो और इसका टाइटल सॉन्ग सुनना है और दो तीन नाम लेना है।
1: हाँ बिल्कुल बताएं।
0: एक मेरी दोस्त है रिंकी पिंकी और पूनम जी कानपुर से और मेरे भैया है विजय कुमार पांडे वहाँ बलरामपुर से। और सर आप?
1: बहुत शुक्रिया अनु, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं ग्राम परसेठा, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, यमुना बेल्ट के किनारे से सर बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ।
0: बेटा जी, कमाल करते हैं, आपकी फोन कॉल हमेशा लग ही जाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, और आप आ जाते तो और भी जल्दी लग जाती है।
0: अच्छा, और सब ठीक है घर पे?
1: सब बाकी सब लोग सर बढ़िया है, अच्छे हैं, जो भी है कार्य सुन रहे हैं, आनंद भी आ रहा है।
0: अच्छी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभ हो। मंगलमय आज का दिन आपके लिए, शनिवार का दिन शुभ हो। गाना बताएं।
1: जी जी, गाना रहेगा सर, फिल्म का नाम रहेगा हम हैं राही प्यार के।
0: अच्छा,
1: और गीत की बोला वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, कुछ मेरे मित्र है दो चार। सबसे पहले हमारे मांगीलाल चंदेल साहब हो गए, फूलचंद मनकारी से हो गए, मणिराम पाल हो गए, दिनकर चित्रकूट धाम से हो गए, और जितेंद्र पाल हो गए, जितने हमारे लाइव सुने सभी लोग के लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे
1: हैं? सर प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम जी, क्या करते हैं आप?
1: सर मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, अरे वाह,
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: हमारा ग्रुप बना हुआ है 8 लोगों का।
0: ओके,
1: उसमें 4 लोग हम गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं, 1 ढोलक और 1 तबला बजाते हैं।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपको अनंत
1: जी
0: शुभकामनाएं हैं। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: मेघा रे मेघा, मत परदेस जा, प्यासा सावन फिल्म का।
0: अच्छा,
1: जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम प्रयागराज से लालमणि बोल रहे हैं।
0: लालमणि जी, बहुत बहुत प्रणाम है आपको। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी, क्या करते हैं आप?
1: बस ये खेती किसानी से जुड़े हैं, इस समय धान की रोपाई चल रही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फोन किया है। गाना कौन सा सुनवाना है?
1: गाना क्रांति का है जी।
0: अच्छा, बोल क्या है?
1: तुम तारा।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ सर जी।
0: रमेश जी कैसे हैं आप?
1: स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। थोड़ी गर्मी कम हुई, थोड़ा सा पानी गिरा, ज्यादा नहीं, एक झल्ला पानी गिरा, मामूली गर्मी कम हुई, उसके आनंद ले रहे हैं और आपका कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आकाशवाणी लखनऊ के इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है। जी गाना बताएं, कौन सा सुनवाए आज?
1: धर्मात्मा फिल्म का है, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा चलाता हूँ। और दो एक नाम ले लूँ आपकी,
0: जी बताएं
1: आपका
0: बताएं।
1: मेहरबानी हो तो।
0: नहीं नहीं मेहरबानी का मसला नहीं है, आप नाम
1: पहले
0: बताएं।
1: तो आपको,
0: थैंक यू
1: और हमारे मित्र है भगवान सिंह परमार,
0: जी,
1: कानपुर से पूनम जी है, और हमारी बिटिया है तनुश्री बिटिया है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: Hello? Hello? Hello? Hello? जी बताएं, नाम बताएं, कौन बोल रहे, कहाँ से फोन किया है?
1: डांगी भोपाल जिला सीहोर मध्य प्रदेश।
0: जी, क्या नाम बताया आपने?
1: नरेंद्र डांगी। नरेंद्र डांगी।
0: नरेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है हमारे इधर।
0: अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ ठीक मिल रही है। गाने के बोल बताएं, फिल्म का नाम बताएं। हेलो, फिल्म का नाम बताएं। हेलो, आप फिल्म का नाम बताएं, गाने के बोल बताएं, मुझे आपकी आवाज़ ठीक मिल रही है।
1: सर आवाज बहुत कम आ रही, मालूम ही नहीं पड़ा। फिल्म का नाम है सर फर्जे गीत के बोल है, तुमसे वो हसीना।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं?
1: आकाशवाणी लखनऊ के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनूप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना।
0: जी अनूप जी, कैसे हैं आप?
1: मसाला बहुत अच्छा हो, और आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी परछाई हमारे दिल में है, आपकी यादें हमारी आंखों में है, आपको हम भूले जी कैसे, आपकी मोहब्बत हमारी सांसों में है ना।
0: बहुत शुक्रिया आपका अनूप जी, बहुत शुक्रिया।
1: जी जी जी और बहुत शिद्दत से मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा मन में एक यकीन है, मतलब आज लग जाएगा, क्योंकि हमारे छोटे भाई ने, अविनाश जी ने बताया, राजेश्वरी जी आएंगे, और मैं तो एक सुकून मन में ठान लिया लग जाएगा, और लग ही गया,
0: यही
1: लग ही गया।
0: अनूप जी, ईश्वर का बहुत धन्यवाद है कि आपने चाहा
1: जी जी जी
0: और आपकी मोहब्बत का
1: और
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बारिश हो रहा है,
0: अच्छा,
1: लगातार बारिश हो रहा है, सूर्य सूर्य किरण तो नहीं दिखाई रहे हैं, मतलब आखिर तक ऐसे बारिश होने से क्या होता है, डिजास्टर हो जाता है,
0: हाँ, डिजास्टर
1: फ्लड
0: हो
1: हो
0: जाता है।
1: जाता है,
0: जी जी
1: और चाची भाई तो बहुत
0: जी
1: विडम्बना में पड़
0: जी
1: जाते
0: जी
1: हैं, है
0: जी
1: ना।
0: थोड़ा दुश्वारियाँ तो हो जाती हैं।
1: जी,
0: बहुत धन्यवाद
1: इसीलिए
0: आपका, आपने
1: आज
0: वक्त।
1: इसी प्लेटफॉर्म में एक गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ,
0: जी बताएं।
1: फिल्म का नाम है
0: जी
1: खुद्दार,
0: अच्छा।
1: अमिताभ बच्चन वाला फिल्म है, और गाने का बोले से, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, ऐसे करके गाने
0: जी
1: है, और
0: जी जी
1: कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
0: हाँ
1: पहले
0: बताएं।
1: है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, छोटे सिस्टर है, बसंत बोबीता बागेल जी और अविनाश जी है, सैंदी चक्रवर्ती जी है, पुरुषोत्तम कुमार जी है, अमर सिंह साहू जी है, और है हमारे उसका नाम क्या है, लोकेंद्र वर्मा जी है, और है ढेर सारे सुताब, ओह

0: एकदम भूल गया हमारे उसका नाम क्या है, विजय सिंह लखेरा जी है और ढेर सारे सभी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम सबके लिए और सतीश भाई के लिए।
1: अनुप जी बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
0: जी भगवान जी, आपका
1: सीहोर से तीसरा कॉल मेरा है और मध्य प्रदेश से चौथा कॉल है सर।
0: अच्छा, ये हिसाब किताब ही लगाया जा रहा है?
1: जी सर, बिल्कुल लगाते हैं। मध्य प्रदेश जितने कॉल लगते हैं हम गिनती लगाते हैं सर।
0: मध्य प्रदेश का जवाब नहीं है।
1: जी,
0: बहुत शुक्रिया।
1: आपके मध्य प्रदेश से आते हैं आपके यहाँ सर?
0: हाँ, बहुत ज़्यादा हमारे सुनने वाले, बहुत प्यार करने वाले हैं। हम बहुत धन्यवाद करते हैं मध्य प्रदेश का। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: गाना है, फिल्म का नाम है आजमाइश और गाने के बोले कांटा लगे निकल जाए।
0: अच्छा,
1: कुछ दोस्तों का नाम लेना चाहूंगा।
0: हाँ बिल्कुल बताएं।
1: पहले तो गजराज लोधी जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, केसर सिंह राजपूत जी, रामबाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, गंगाधर सावनकर जी, पूरन वर्मा जी, राकेश जी है, पूनम दीदी है कानपुर से, आशुतोष जी है और गुंजन तिवारी जी अयोध्या से, कनुश्री बिटिया, स्वाति सिंह जी है, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे सर। आपको डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको सुनवा रहे हैं आप सबके पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राम अदालत प्रजापति बोल रहा हूँ लखनऊ से सर।
0: अच्छा अच्छा बहुत बहुत प्रणाम, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ सर। मैं आपके आंगनबाड़ी में जाके दवा ववा डालते थे कर्मचारी, मैं मलेरिया का था सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह।
1: हाँ, वहाँ तक दवा ववा डाले में जाते थे, रिटायर हो गए।
0: अच्छा,
1: 17 में।
0: अरे वाह।
1: हाँ, यो यका सुनता हूँ करीब 85 से 80 से।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका
1: सर,
0: बहुत धन्यवाद। आज क्या सुनाया जाए?
1: कोई गाना, कोई भक्ति सुनाइएगा सर।
0: अच्छा अच्छा।
1: और जितना श्रोता है सबका मेरा नमस्कार, सबका बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार मेरा पहुँचे सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: हेलो,
1: आप कौन? नमस्ते।
0: नमस्ते, कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं?
1: ठीक है सर।
0: क्या नाम है आपका?
1: सर आचार्य रही सर, मैं शास्त्री रोड के निवासी ग्राम हथौड़ा रियासत जनपद हरदोई सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हाल चाल है? घर में सब ठीक है?
1: बहुत कुशल क्षेम है। पूरे जनमानस को शुभकामनाएं हमारी तरफ से। सारे नर नारी सब लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत रहे, सभी लोग खुशहाल रहें, सुकून से रहें, यह मेरी शुभकामनाएं।
0: वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका लंबी और बड़ी दोनों उम्र हो। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: सर पगला कहीं का तुम मुझे न भुला पाओगे।
0: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर नमस्ते, मैं फतेहपुर जिला से जितेंद्र पाल बात कर रहा हूँ सर जी।
0: जी जितेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: जी हम तो बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी, क्या करते हैं आप?
1: जी हम तो किराने की दुकान करते हैं।
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: सर हम सुनते
0: वाह
1: रहते
0: वाह,
1: हैं, कॉल भी लगा है और कॉल भी लग गई।
0: कारोबार ठीक चल रहा है सब?
1: जी बढ़िया चल रहा है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं हैं आपको, आज का दिन आपके लिए शुभ मंगलमय हो। गाना बताएं कौन सा सुनवाना है?
1: सर जी मूवी रहेगी किस्मत, गाने के बोल रहेंगे तेरे किस्मत में मेरा प्यार लिखा। सर जी कुछ डेडिकेशन रहेंगे, सबसे पहले आप हैं और दीप्ति मैम हैं और पूजा बिमल मैम हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, रोहित भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मलकाई से फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं और मिंटू तिवारी हैं। और सर जी जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी दोस्तों का धन्यवाद और आपके लिए ये गाना।

0: सर हम स्टूडेंट हैं, अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं।
1: अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने लखनऊ आकाशवाणी के इस प्रोग्राम को याद किया है। पढ़ाई ठीक चल रही है?
0: थैंक यू सर, हमारी मम्मा भी आपकी श्रोता हैं,
1: अच्छा,
0: नियमित श्रोता हैं, वो भी
1: ओके
0: आपके प्रोग्राम में कॉल लगाती हैं। आज हमारी छुट्टी थी तो हमने सोचा हम भी कॉल लगा लें और कॉल लग भी गया।
1: बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया गुनगुन, बहुत शुक्रिया आपका। मामा का भी शुक्रिया, घर में सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना। गाने के बोल क्या है और गाना, फिल्म का नाम बताएं।
0: जी, फिल्म का नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई और गाने के बोल हैं ये तूने क्या किया।
1: अरे वाह, थैंक यू गुनगुन।
0: सर हम कुछ लोगों के नाम ले सकते हैं?
1: हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं।
0: सबसे पहले तो असम से हमारी मम्मा के दादा हैं अनूप कुमार भट्टाचार्य जी,
1: अच्छा।
0: और बेटा सिंह यादव जी, तमनापुर से पूनम दीदी और सभी सुनने वाले श्रोताओं को, सबसे पहले आपको
1: थैंक यू गुनगुन, थैंक यू सो मच। आप सबको सुनवाते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: सभी सुनने वाले श्रोताओं का
0: जी,
1: मंडला मध्य प्रदेश से गुनगुन बघेल का नमस्कार।
0: वाह गुनगुन जी, कैसे हैं आप?
1: और आपको भी
0: धन्यवाद। कैसे हैं आप गुनगुन जी?
1: क्या तो अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपकी। गुनगुन जी क्या करती हैं आप?

0: हेलो
1: हेलो सर जी को राधे राधे।
0: जय श्री राधे राधे। कौन बोल रहे हैं?
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ सर, बैरसिया जिला भोपाल।
0: केसरी जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया सर, और आप कैसे हैं?
0: दुआएं आपके। मध्य प्रदेश वाले तो कमाल कर रहे हैं भाई।
1: नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं, मतलब ये सर कार्यक्रम बहुत अच्छा है, तो लगाने में और सुनने में रोचकता रहती है, तो लगाते भी हैं।
0: जी जी जी, मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ आप तमाम मध्य प्रदेश के सुनने वालों का जो हमारे लिए वक्त निकालते हैं। आज गाना कौन सा सुनवाना है भाई?
1: गाना सुनवा दीजिएगा सर, शर्मा आगा जी की आवाज़ में, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल।
0: अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। लीजिए गाना सुनिए।

0: हेलो
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशगंज पोस्ट औरंगाबाद जिला काशगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से आपकी बात कर रहा हूँ। सर जी कैसे हो?
0: रूप सिंह जी आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है। घर में कैसे हैं सब लोग?
1: बढ़िया हैं हम भी।
0: क्या करते हैं आप रूप जी?
1: खेती बाड़ी करता हूँ सर।
0: अच्छा, बरसात हो रही उधर को?

0: हेलो।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम नंगला काशान पोस्ट औरंगाबाद जिला काशगंज उत्तर प्रदेश से रूप सिंह से आपकी बात कर रहा हूँ। सर जी कैसे हो?
0: रूप सिंह जी आपकी दुआएं हैं, सब ठीक है। घर में कैसे हैं सब लोग?
1: बढ़िया हैं हम भी।
0: क्या करते हैं आप रूप जी?
1: खेती बाड़ी करता हूँ सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बरसात हो रही है उधर को
1: जी?
0: पानी पड़ रहा है, बारिश हो रही है?
1: हाँ हल्की हल्की हो रही है बारिश, कभी कभार हो जाती है थोड़ी बहुत।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत, अब टाइम ही बारिश का है, बरसात का ही मौसम है।
1: हाँ
0: धन्यवाद। गाना बताएं, कौन सा सुनवाना है?
1: फिल्म है अनाड़ी, क्या मौसम आया है।
0: अच्छा
1: जी, और कुछ दोस्तों को याद करना चाहूँगा, सबसे पहले आपको और आकाशवाणी लखनऊ को, और अजीत शर्मा हैं, रोशन लाल साके हैं, दीपक साख रट्टे नंगला अलीगंज से हैं, और सतीश वर्पावा से, महिपाल, सुरेश, मुन्ना लाल, अनुप्रिया और खुशी।
0: बहुत शुक्रिया आपका रूप जी, आपको सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर, टेकचंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा क्या हाल चाल है आपके?
1: सर हम बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपके, क्या करते हैं आप?
1: सर एक वरिष्ठ नागरिक हैं सर।
0: अरे वाह, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम।
1: जी जी
0: धन्यवाद आपने।
1: 6 साल हो गए सर मुझे अपने कोल इंडिया से रिटायर हुए।
0: अच्छा अच्छा, बहुत भाग्यशाली हैं आप, क्योंकि एक अच्छी अनुकरणीय सेवा के बाद अगर
1: वर्ष सर हम लोगों ने लगभग सेवा दिए हैं।
0: अरे वाह वाह वाह, बहुत
1: और साकुशल सर अपने घर लौटे हैं।
0: ये बड़ी बात है, ये ईश्वर का बहुत बड़ा एहसान है, उसका बड़ा धन्यवाद।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बहुत खुशी होती है सर कि हम मतलब साकुशल जो रिटायरमेंट हमारा हुआ है।
0: हाँ बहुत बड़ी बात है,
1: क्योंकि सर ये एक मतलब कहना चाहिए जो नियमानुसार जो अगर हम रिटायरमेंट नहीं होंगे तो हमारे आने वाले बच्चों को वो जगह कैसे मिलेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये भी बड़ी बात है कि एक अनुकरणीय सेवा करने के बाद अगर अवकाश प्राप्त होना है, ये तो ईश्वर का वाकई वरदान है और धन्यवाद भी है।
1: जी जी,
0: गाना कौन सा सुनवाना है?
1: और काफी प्रयासों के बाद सर आज आपसे बात हो रही है, पहली बार हो रही है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, अच्छा लगा मुझे।
1: सर मुझे सुनवा दीजिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।
0: जी जी,
1: नई रोशनी फिल्म का गाना।
0: अच्छा,
1: तेरी आंख का जो इशारा ना होता।
0: अरे हाय हाय, क्या फरमाइश, क्या गीत
1: हमारा ना होता,
0: बहुत ही खूबसूरत फरमाइश।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग सर।
0: वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रही?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास है, शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं सर। और बताएं आप कैसे हैं?
0: दुआएं हैं आपके, अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ा करम है। क्या करती हैं आप?
1: आपके तीनों चैनल सुनते हैं, विविध भारती तो आजकल नहीं सुनाई देता है, लेकिन आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते हैं और घर का काम करते हैं।
0: बहुत बड़ी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। गाना कौन सा सुनवाना है?
1: गाना सुनेंगे सर तेरी मेहरबानियां मूवी से, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां।
0: अच्छा
1: सर, डेडिकेट करना चाहते हैं।
0: हाँ जी बताएं, नाम बताएं।
1: सबसे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं।
0: शुक्रिया।
1: फिर शबनम अब्बासी, रिहाना मंसूरी, हसीना मंसूरी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम, बाबू अंसारी और जावेद अख्तर भाई और जितने सुन रहे उन सभी सुनने वालों को, अल्तमस भाई और हिमांशु भाई।
0: बहुत शुक्रिया। आप सब सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: मैं गंगा में कहता था आपको जमना समझता हूँ, आप दिल के इतने करीब हैं गुरुजी कि मैं आपको अपना समझता हूँ। और पता बता दूं जल्दी जल्दी सर जी, आप 150 किलोमीटर की रफ्तार में भाग रहे थे तो मैंने टॉप गियर लगाया और टॉप गियर ये है आपके बगल में खड़ी हुई।
1: जी नाम बताएं।
2: नमस्कार भाई।
1: नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप?
2: जी भाई साहब बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: दुआएं
2: हैं
1: आपके। अच्छा लगा कि इतनी तेज रफ्तार में आपने गाड़ी दौड़ाई है।
0: ये टॉप गियर है सर जी, इन्हीं ने लगाया फोन। मैंने कहा टॉप गियर लगा दूं तो आप कहीं नहीं बच के जाएंगे, उन्हीं से एक्सीडेंट हो जाता सर जी। फिसल जाते सर जी, लफड़ा हो जाता, फिर आप
1: जी
0: मान के चलिए मेरी टांग टूट जाती।
1: नहीं नहीं, मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। जी बताएं, फिल्म का नाम बताएं, गाने के बोल बताएं।
0: आज बहुत जल्दी बता दूंगा सर जी, और ये बता दूं कि ज्यादा नाम ना बुलवाया करें सर जी श्रोताओं के, और गाने भी श्रोताओं से कहना कि बदलते रहा करें, वही वही गाने की पुनरावृत्ति सही नहीं होती। फिल्म का नाम है हमसे ना टकराना। जल्दी जल्दी मैं भी बता दूं, 200 किलोमीटर की रफ्तार में एक लाइन गुनगुना लूंगा मैं और आपकी भाभी जान।
1: जी जी बताएं।
0: जब प्रेमदास बाबा जी के साथ में रहेगा गान, जवानी ए जवानी इसका नाम जवानी है, और इससे बच के रहना तो फिर दुनिया में क्या करना। जी ए जियो ए जियो ए जियो। नमस्कार भाई साहब,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए गाना सुनिए।

आज शनिवार को बड़ा इंतज़ार किया और बहुत कोशिश की, फ़ोन कॉल लगा और बातचीत भी हो गई, मुलाकात भी हो गई, बहुत धन्यवाद उनका। कुछ दोस्त नाराज़ भी होते होंगे कि भाई इतनी कोशिश करते हैं लखनऊ से, इतना प्यार करते हैं लेकिन फ़ोन कॉल लगता ही नहीं है। अब ये किस्मत की बात है, क्या कहा जाए, दिल तो हमारा भी करता है कि रोज़ मुलाकात हो, लेकिन अगर आज जिन लोगों का फ़ोन कॉल शामिल हो गया है, अगर वो एक आध हफ्ते बाद 10-15 दिन के बाद अगर फ़ोन कॉल करें तो शायद दूसरे लोगों को भी मौका मिलेगा, मुलाकात और ज़्यादा लोगों से होगी। आज इसके प्रोग्राम में बस इतना ही, ईश्वर ने चाहा तो अगले शनिवार को फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए, नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन प्रोग्राम, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 12 बज चुके हैं। चित्रपट संकेत।

2 अक्टूबर। इस फिल्म में भी आप साधना सरगम और उदित नारायण को सुन रहे थे। और अब तुमसे अच्छा कौन है, इस फिल्म का एक गीत जिसे स्वर दिया है तौसीफ अख्तर ने।

आओ प्यार करें। इस फिल्म में भी आप कुमार सानू को सुन रहे थे। शब्द रचना श्यामराज की थी और संगीत आदेश श्रीवास्तव का। आइए अब नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में समीर का लिखा हुआ एक गीत आपको सुनवाते हैं। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की हैं। फिल्म का नाम है दामिनी।

यस बॉस, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ अभिजीत की थी। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और धुन बनाई थी जतिन ललित ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे। फिल्म थी जीवन मृत्यु। आइए अब मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है जीने की राह। गीत के बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जिगरी दोस्त। इस फिल्म में भी आप लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। आइए अब आपको सुनवाते हैं हसरत जयपुरी का लिखा हुआ एक गीत, जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की हैं। फिल्म का नाम है सूरज।

बेटी बेटे फिल्म में गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की थी। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में इंतकाम फिल्म का गीत आप सबके लिए, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की हैं।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की गायी फिल्म इंतकाम के इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमों के प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। यह आकाशवाणी लखनऊ है, 1 बजने को है। अब कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
2: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
1: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
3: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरि में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
4: INS महेंद्रगिरि में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरि को महेंद्रगिरि पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज

0: नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:05 हुए हैं। लेकिन अब सुनिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं। ओम प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री सियाराम मिश्रा, निवासी ग्राम सराय सैफ, थाना टिकैत नगर, जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि सियाराम मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष है, कद 5 फुट, सियाराम हिंदी और अवधि बोल सकते हैं। सियाराम पिछले 9 अक्टूबर 2025 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी सियाराम मिश्रा के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। ओम प्रकाश मिश्रा, पुत्र श्री सियाराम मिश्रा, निवासी ग्राम सराय साहेब, थाना टिकैत नगर, जनपद बाराबंकी। बलदेव प्रसाद, पुत्र श्री स्वर्गीय धनपत, निवासी मुनियापुरवा, मजरे ताजपुर, थाना देवा, जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि प्रदीप कुमार, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, कद 5 फीट 3 इंच। प्रदीप कुमार पिछले 19 सितंबर 2024 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी प्रदीप कुमार के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। बलदेव प्रसाद, पुत्र श्री स्वर्गीय धनपति, निवासी मुनियापुरवा, मजरे ताजपुर, थाना देवा, जनपद बाराबंकी। मोहम्मद नईम, थाना विक्टोरियागंज, जनपद हरदोई से हमें सूचित करते हैं कि भैजबी, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, कद 5 फिट, रंग गोरा, चेहरा गोल है। भैजबी पिछले 5 जून 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी भैजबी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। मोहम्मद नईम, ग्राम विक्टोरियागंज, थाना पिगौली, जनपद हरदोई। श्रवण, पुत्र श्री रमेश, निवासी थाना देवरिया, जनपद बाराबंकी से हमें सूचित करते हैं कि कविता कुमारी, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, कद 5 फिट। जिस किसी को भी कविता कुमारी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें।

0: श्री श्रवण पुत्र श्री रमेश निवासी देवरिया जनपद बाराबंकी। अभी आप खोई हुई व्यक्ति के संबंध में कुछ सूचनाएं सुन रहे थे।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
0: यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 1:10 होने को है। अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। कल गोरखपुर दौरे पर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में अवामी दर्शन करने के बाद कुशीनगर जिला पहुंचे, जहां उन्होंने टेकुतार में मुनक्किद तरक्याती कामों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने की तकरीब में 3 असेंबली हलकों रामकोला, हाटा और कुशीनगर के लिए सड़क, तालीम, सेहत और आबपाशी से मुतालिक 525 करोड़ रुपए के 464 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस दौरान वजीर आला ने जलसायाम से खिताब भी किया। अपने खिताब में वजीर आला ने कहा,
4: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन रहा।
3: आज ही वजीर आला गोरखपुर के पिपराइच असेंबली हलके के इंद्र भाथड़ बंस्थान में 758 करोड़ रुपए के 24 तरक्याती कामों की नकाब कुशाई करेंगे। वो 697 करोड़ 49 हजार रुपए की लागत वाली भाट भंस्थान 4 लेन वाली सड़क समेत 5 सड़कों का इफ्तिताह भी करेंगे और 60 करोड़ 63 लाख रुपए से ज्यादा की लागत से सड़क की तामीर और सयाहत से मुतालिक 19 तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट पीर को अयोध्या के श्रीराम मंदिर में एहतियात की मुबैना चोरी की गैर जानबदाराना तहकीकात का मतालबा करने वाली कई अर्जियों पर समाअत करेगी। दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहन पर मुश्तमिल बेंच के सामने होगी। इन दरख्वास्तों में इस वाकये की सीबीआई तहकीकात और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माली लेन देन का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑडिट का मतालबा किया गया है। कबल अज अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 मुलजिमान में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। कमेटी के चेयरमैन रुपेंद्र मिश्रा राम मंदिर की तामीर कमेटी की मीटिंग में शिरकत के लिए आज अयोध्या में हैं। राम मंदिर में पेशकश की चोरी के बारे में उन्होंने कहा कि खजांची गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि यह अपने आप में एक बदनुमा दाग है और हम सब खुद को छोटा महसूस कर रहे हैं। उम्मीद है कि अब इंतजाम बेहतर होंगे और ऐसा दोबारा नहीं होगा। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एहतियात की गिनती करने वाले 20 से ज्यादा मुलाजमीन ने बैंक वक्त इस्तीफा दे दिया है। इन इस्तीफों को एहतियात में बेजाब्तगियों के सामने आने के बाद निजाम में की गई तब्दीलियों से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान बाकी मुलाजमीन की ड्यूटी शेड्यूल और छुट्टियों में रद्दोबदल कर दिया गया है। एहतियात की गिनती के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त किए जा रहे हैं। इस काम के लिए अब खसूसी अमले की खिदमत हासिल की जाएगी। माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए रियासती हुकूमत कल शजरकारी महायज्ञ 2026 का इनेकाद करेगी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ

0: गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के करीब एक पौधा लगाकर तकरीब का आगाज करेंगे। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य झांसी में पौधा लगाएंगे और बृजेश पाठक लखनऊ में पौधा लगाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत रियासती हुकूमत ने 35 करोड़ पौधे लगाने का हदफ रखा है। मुतअद्दी अमराज पर काबू पाने की मुहिम के तौर पर रियासत भर में आज से 31 जुलाई तक दस्तक मुहिम चलाई जाएगी। इस मुहिम के तहत महकमा सेहत की टीमें घर घर जाकर मौसमी बीमारियों और दीगर बीमारियों की अलामत और उनसे बचाव के बारे में आगाही फराहम करेंगी। आज आबादी का आलमी दिन है। ये दिन हर साल 11 जुलाई को आबादी में इजाफे से मुंसलिक चैलेंजों और मवाक़े के बारे में बेदारी पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इसका मकसद आबादी से मुतल्लिक मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना और पायदार तरक्की के लिए कोशिशों की हौसला अफजाई करना है। इस साल आबादी के आलमी दिन का थीम है आज और मुस्तकबिल के लिए नौजवानों की उम्मीदों और उमंगों का इदराक। रियासत के मुख्तलिफ अज़ला में मूसलाधार बारिश की वजह से जानों और मवेशियों के नुकसान के वाकयात का नोटिस लेते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अहकाम दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर नुकसान का अंदाज़ा लगाने और मुआवजा फराहम करने की हिदायत है। वज़ीर आला ने तमाम आला हुकाम को इलाके का दौरा करने और मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत की है। मानसून की बारिश की वजह से रियासत के कई अज़ला में नदियों की सतह बढ़ने लगी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में लगातार हो रही बारिश के चलते लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। वहीं कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। उधर बिजनौर बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण अमरोहा में खादर क्षेत्र के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। क्षेत्र की कई बीघा फसलें जलमग्न हो गयी है। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क है और सुरक्षा के सभी उपाय कर लिए गए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।
2: हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बहनी तनिक सोचो, एक तठिया मां चार रोटी हैं और खाए वाले भी चार मनी, मने सबका एक एक बराबर से रोटी मिली, मुला खाए वाले आठ हो जाए तो? रोटी तो वही चार है, मुला मनई बढ़ जाए से भूख और तकलीफ भी बढ़ जात है। बिल्कुल यह हाल हमरे सबके बीच के कुछ परिवारन के भी है, जहां लड़का बच्चा की संख्या अधिक होत है, घर परिवार में ज्यादा सदस्य तो मतलब ज्यादा जरूरतें, ज्यादा भोजन, ज्यादा पानी, ज्यादा स्कूल के फीस और अस्पताल के भी खर्चा, क्यों के बीमारी अजारी माँ। बोला हमार संसाधन सीमित हैं, जमीन उतनी ही है, पानी नौकरियां सब सीमित हैं, मूल इनके अनुपात में दिन पर दिन जनसंख्या बढ़त जा रही है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़त है, सड़कन पर जाम लागत है और प्रदूषण भी बढ़त है। मतलब साफ है, जनसंख्या बढ़ी तो प्रति व्यक्ति समृद्धि घट गए। बहनी यही के मतलब यह नहीं कि लड़का बच्चा बुरे हैं, बच्चे तो देश के भविष्य हैं। बात है संतुलन के, मने छोटा परिवार सुखी परिवार। यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता पर ध्यान दें, परिवार नियोजन के संसाधनन का अपनाई, तो हर बच्चा का अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छा भविष्य मिल सकत है। श्रोता बहनी, विकास के असल मतलब केवल इमारतें बनाओ भी नहीं है, असल विकास तब है जब हर मनई के जीवन स्तर ऊपर उठे। यह खातिर बतावत चली कि आज के दिन यानी हर साल 11 जुलाई का विश्व जनसंख्या दिवस मनावा जात है, जिसके उद्देश्य जनसंख्या से जुड़ी समस्यावन मने गरीबी, परिवार नियोजन, समानता, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारन के प्रति वैश्विक स्तर पर मने इनका जागरूक करब है। यह खातिर श्रोता बहनी हम सब मिल के संकल्प लई एक संतुलित और समृद्ध भारत बनावे के, देश के जिम्मेदार नागरिक बने के। कहे से कौनो भी परिवार, समाज या देश तबे समृद्ध बनी जब जनसंख्या संतुलित होई। याद रखें, देश के असली धन उनकी जनसंख्या नहीं बल्कि शिक्षित और स्वस्थ नागरिक होते हैं। तो श्रोता बहनी, ई बात का गुनो और बुनो भी।

0: और यह बात पर चलो सुना जाए ये लघु नाटिका। बुद्धू अस्पताल में जोन चुहल करत भय एक प्यारा सा संदेश भी दे जाते हैं हम सबका, तो चलो सुना जाए।
1: अरे फूफा,
2: हाँ?
1: तुम तो लड़कन के पूरी फसल तैयार कीने हो है। हम राजा हो तो तुमका धृत राष्ट्र के उपाधि दे।
2: अरे बिरजू, तुमका हंसी सूझी है, हियाँ परान विपत्ति में पड़े हैं।
1: काहे का बात है बताओ ना।
2: अरे बिरजू, तुम्हारी बुआ के बाल बच्चा होए वाला।
1: चलो छुट्टी भाई, अब तो पूरी क्रिकेट टीम तैयार हो जाये।
2: देखो बिरजू, तुम हियाँ अस्पताल में हो तो तुम्हारी वजह से घर इतनी जल्दी भर्ती हो जाये।
1: देखो फूफा, वही सिस्टर आ रही है, उनसे बात करो।
2: ए सिस्टर, सिस्टर।
3: ओ मैन, हम बोलता है दूर से बात करो, तुम सिर पर क्यों चढ़ाता है?
2: सिस्टर, हम 20 में सुबह के खरे बाम है ना, तुम छुए के ना दे रहा हो। हाँ?
3: Nonsense, आज से तुम दूर से बात करो, समझा?
2: सिस्टर, हमारी घरे तीन का पाँव गरु है तो उनका अपने यहाँ भर्ती कर लियो।
3: क्या हो गया तुम्हारा घर वाली को?
2: हो ही नहीं गया सिस्टर, होए वाला है। हाँ?
3: ओ, आप समझा। हाँ? तुम्हारा घर वाली को बाल बच्चा होने वाला है।
2: हाँ, सिस्टर। हाँ?
3: तो तुम्हारा कार्ड किधर है?
2: सिस्टर, राशन कार्ड तो मेरे पास नहीं है, बोला हम बाहर से खाना दाना भिजवा दे।
3: नॉनसेंस, हम बोलता है कि जच्चा को अस्पताल में भर्ती कराने के वास्ते पहले कार्ड बनवाना मांगता, समझा?
2: तो सिस्टर, हम यहाँ थोड़े रही, हम तो देहात्यान है, हम पर दया करो सिस्टर।
3: अच्छा अच्छा, हम देखता है, बेड खाली होगा तो भर्ती कर लेगा।
2: ए, सिस्टर बताओ ये बेड का होता?
3: ओ, बेड, बेड नहीं जानता, बेड यानी चारपाई।
2: तो सिस्टर, तुम चारपाई की चिंता न करो, हम कहो तो मांग लेबे, तुम खाली तनिक जगह दे दियो बस।
3: हाँ? स्टूपिड, तुम कुछ नहीं समझता।
1: कहो फूफा, काम बना।
2: अरे सिस्टर, कहती है की चारपाई खाली हुई तो वही तुम्हारी बुआ को भर्ती कर ले। हम कहा चार पाई की चिंता न करो, हम कहते मांग लेंगे।
1: धोए गए फूफा, अरे अस्पताल में कहूँ बाहर थे चार पाई लाए जाते।
3: ओ मैन, हम बोलता है तुम अपनी घर वाली को ले आओ।
2: धन्य हो सिस्टर, तुम जुग जुग जियो। अरे आओ लड़काओ, हम मांग ले वालो।
3: ओ माय गॉड, सो मेनी चिल्ड्रन, हम पूछता है ऐसा आप किसका बच्चा लोग है?
2: ये सब लड़का आप है क्या? ही सिस्टर का घो हो रहा क्या?
3: ओ शट अप नॉनसेंस, पूरी पलटन तैयार कर लिया है तुमने।
2: का करी सिस्टर, भगवान ही लड़कन का हमारे है घर में ढकियालत चले जात है।
3: ओ भगवान ने तुमको अकल तो दिया है।
2: हाँ, हाँ।
3: तुमको अपने घर वाली को ऑपरेशन करा देना चाहिए था। हम पूछता है तुम्हारा नाम क्या है?
2: सिस्टर, हमारा नाम है बुद्धू बाजपेयी।
3: तुम्हारा नाम है बुद्धू? तुम वैसा बात नहीं करता है।
2: सिस्टर, रजिस्टर, सिस्टर।
3: नॉनसेंस, आज से सिस्टर रजिस्टर, क्या बकता है तुम?
2: सिस्टर, रजिस्टर में लड़कनों के नाम लिख लियो, यो महताजी के साथ है रही है।
3: तुम कुछ नहीं समझता है, ये अस्पताल है, कोई धर्मशाला थोड़ी है।
2: चलो लड़का, तुमका हिया न रह दे।
1: हद हो गए, का कहा तो फूफा के लड़कनों को यहाँ भर्ती कर ले।
2: अरे हम कहीं कोनो कमरा खाली हुई तो लड़का ही रह जाये।
1: का कही फूफा, तू आपन अकेले फूक फाक के बर्बाद कई दिनों है।
2: बिरजू, कहा सिस्टर का मूड फिरा थे?
1: अरे यू कहा तो फूफा, मूड नहीं फिरा थे।
2: फिर ये मूड में रुमाल को है बांधे यही।
1: अरे ये तो इनके ड्रेस है, ड्रेस।
2: सिस्टर बार बार झनझनाती रिसाती आई ना, तो हम कहीं इनका मुंह पिरा।
1: अरे बधाई है फूफा, बधाई है।
2: कहा भा बिरजू?
1: अरे फूफा, तुम्हारे लड़का भावा है।
2: अरे लड़का भाव है तो चलो देखी तो इसका।
1: नहीं नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सका तो।
2: अरे चलो बिरजू, देख ले कि लड़का वहाँ हम ही परा है ना।
1: अरे कैसी बातें कर रहे हो तो फूफा, लड़का अपन महतारी बाप पर तो परत है।
2: अरे हमका परा हो तो बड़ा सुंदर हो, चलो छिन भर देख ले वही का।
1: अब कह दे फूफा के तुम हुआ नहीं जा सकत हो।
2: अरे कहो बिरजू, हम कसम खाए ले कि अपनी मेहरिया छान के कहू तन चित तक ना। हाँ?
1: बात हो गए फूफा, कहो तुमका ककस समझाई।
2: तो याक बात का ध्यान रखियो बिरजू।
1: वाह कौन बात,
2: या कहो हमारा लड़कवा कहू के लड़का ते बदल न पाओ।
1: ठीक है फूफा, अरे यहाँ आइस नहीं होते।
2: तो बिरजू, लड़कवा की पीठी पर तो हमारा नाव लिखवा दो, जैमा हमका विश्वास हो जाए।
1: हाँ हाँ, सब ठीक हो जाए। अब जल्दी ते सीसा कंघा तेल साबन ले आओ।
2: अरे बिरजू, तुम रिश्तेदार हो, अस्पताल ती सब चीजें दिवा दो।
1: अरे फूफा, यू अस्पताल आए कोका घर थोड़े आए, तुम्हारे लड़का भा है तो कहा चार पैसों नहीं खर्च कर सकत हो?
2: नहीं, काहे नहीं कह सके थे, अब कौनो उपाय कहकर वही सब चीजें देखो हम लाए थे।
3: ओ मैन, इधर आओ।
1: देखो फूफा, सिस्टर बुलाए नहीं।
2: अरे आए सिस्टर, आए सिस्टर। हमार लड़कवा घर इतनी तो अच्छी तरह है ना?
3: हाँ, सब अच्छी तरह से है, मगर तुम्हारे वास्ते खुशखबरी है।
2: हाँ सिस्टर, सुना है लड़कवा भा है।
3: हाँ, एक हुआ था।
2: हाँ?
3: अब एक और बॉय हुआ है।
2: हे भगवान, या कहीं नहीं दू दू लड़का ढकियाले लगे तो अब कैसे निर्वाह होई?
3: हाँ, अब तो जो कुछ होना था हो गया।
2: हाँ?
3: अब काई को पछताता है।
2: हाँ,
3: हाँ? जल्दी से जाकर सामान ले आओ।
2: सिस्टर, एक बात पूछी।
3: क्या जानना मांगता
2: सिस्टर? अब तो हमारी घरेतीन का पेट नहीं।

0: बात है?
1: ओह नो नो नो, शी इज ऑल राइट नाउ। आगे के लिए हम बंदोबस्त कर देगा, समझा?
0: ये सिस्टर तुम ऑपरेशन के बारे कह रहा है ना, तो उन आगे आओ वाला लड़का तो उन अब की ही कूद पड़ा, अब ऑपरेशन का नाम ना लेने हो सिस्टर। हाँ
1: डोंट वरी, आई से तुम चिंता क्यों करता है
0: सिस्टर, उनके जिंदगी बनाए रहो, हमारे यहाँ आग मेहरिया है।
1: ओ नॉनसेंस, तुम क्या बकता
2: है फूफा, अब तो डबल बधाई स्वीकार करो, दुई लड़का साथे आए हैं।
0: अरे तुम हंस रहे हो बिरजू, हिया परान आ रही है, हे भगवान, तीसरा लड़का हो या हो तो पड़ोसी के दे दिन हो हमका न चाहिए, ईश्वर तो यह मनाई तो है, अब तो बस इतने जने रहे हमका ना, और चाहिए ज्यादा, जितने हैं उतने बने रहे।
2: अरे फूफा, लड़के भाई हैं तो खुशी मनाओ, चिंता का है करत हो?
0: अरे अब जब ते को शुरू हो गए, हर साल आनंद बधाओ बजे, अब तलक साल में एक ही भा मुलो, अब तो लाग डबल उपजे।
2: फूफा यह पलटन लेके देखकर यहाँ जात हो, वही का जीव देखते सन्ना जात हो।
0: अरे कुछ पूछो ना बिरजू, हमरे घर आवे जो पाहुन, सोच तवे हम तन हाक का बाक का।
2: हाँ।
0: और हम जाई जह की पहुनैती, तहके जीमा है धाक का धाक।
3: तो श्रोतापन जो रही ना मजेदार लघु नाटिका बुद्धू अस्पताल में, जिका अबे हम सब सुना। और श्रोता पंचो, अब बात की जाए आप सब द्वारा पठाई गई प्यारी और स्नेह भरी पाती और ईमेल के, कहे से कि आज है महीना के दूसरा शनिवार और आज के दिन हम लाइत है घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत शब्द एक और गीत अनेक, जिमा आज के सुनवाए जाए वाले गीतन मा मेघ और बादल शब्दन से पिरोए गीत शामिल हैं। तो बस अब इंतजार खत्म और बढ़ चला जाए आप सब द्वारा पठाई पाती और ईमेल की ओरिया। तो पहले पाती पढ़ा जाए जो उनकी आई है ग्राम कोटवा जिला मेठी से, जिका पठवे वाले हैं अवधेश श्रीवास्तव, दीप्ति, सूर्यांश, ट्विंकल, अंश और दीपाली। और बात ईमेल के करी तो यावा है नेपा नगर से, जिका पठवे वाले हैं प्रभुदयाल, शिवदे, शिवा, बसंती बाई और गणेश शिवदे। अगला ईमेल आवा है खंडवा से, जिका पठवे वाली हैं श्यामाबाई रायकवार। और ई सब जने फरमाइश करी ने फिल्म बेताब के गीत बादल यूं गरजता है सुने के, तो चलो सुना जाए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता पंचो, इबेरिया बरखा बूंदी के मौसम है और एक साथ मौसम है रसीले मीठे आमन केर भी। और ई बरखा के मौसम मा जब घर मा आम होए तो वही के मेर मेर के व्यंजन भी बनावे के मन करत है। तो आज हम लेके आयन है आप सब खातिर आम रोल व्यंजन बनावे के विधि। तो सबसे पहले जौन आम आपका पसंद होए, मने दशहरी, चौसा, लंगड़ा, कौनो भी, वही के रसा गार लो। अच्छा, मने हम 6 आम लीन जी के रसा गार लीन, फिर वही मा 2 चम्मच आरा रोट के घोर के डार दो। अब वही का धीमी आंच पर हल्का देसी घी डार के पकाए लो। जब आम के रसा थोड़ा गढ़ाया जाए तो 4 चम्मच शक्कर डार दो और फिर थोड़ी देर पकाओ। जब आम के मिश्रण गढ़ाए जाए और करहिया छोड़े लगे तो ई मिश्रण का एक तटिया में फैलाए लो, इतना पातर कि उई एक मोट रोटी नुमा रहे। फिर जब वह ठंडाए जाए तब वही के पट्टी नुमा काट लो और उन पट्टियन पर सूखा मेवा मिला खोवा फैलाए के लपेट दो, ताकि वही के आकार रोल नुमा हो जाए। अब ऊपर से सूखे मेवा काट के सजाए के

प्लेट में परोसें और स्वयं खाएं और परिवार का भी खवावें। ई आम रोल सबका पसंद आई, लड़का बच्चा बूढ़ जवान सबे का। और बात पसंद के कीन है तो श्रोता पंचो, अब बारी है एक बार फिर से बढ़ चला जाए आप सब द्वारा पठाई पाती और ईमेल की ओरिया और सुना जाए आप सब के पसंद के फिल्मी गीतन का। तो पहले पढ़ा जाए पाती जो नाई है रुदौली अयोध्या से, जिका पढ़े वाली हैं लक्ष्मी, माला, रीना और रेखा। और बात ईमेल के करी तो यावा है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से, जिका पढ़े वाले हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू और रामचरण। और अगला ईमेल आवा है ग्राम व पोस्ट ललहौवा जिला खीरी से, जिका पढ़े वाले हैं विजयपाल यादव, शुभम, ऋचा, गुड़िया और बबलू। और ई सब फरमाइश करी ने फिल्म प्यासा सावन के गीत मेघारे मेघारे सुने के। तो चलो सुना जाए गीत।

श्रोता पंचो अब बढ़ चला जाए उई फिल्मी गीत की ओरिया जी के सुने खातिर ईमेल आवा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जी का पठे वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई। अगला ईमेल आवा है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से जी का पठे वाले हैं प्रेम लता वर्मा निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई। तो चलो सुना जाए इन सब के फरमाइश पर फिल्म सुनैना से ही गीत।

बरखा बूंदी के मौसम प्रकृति का एक नई ऊर्जा दे जाता है। हर तरफ हरियाली, पानी से भीगा वातावरण और एक भीगा आवरण धरती के, और ऐसन मा हर मन कुछ न कुछ गुनगुनाए उठत है, गाय उठत है। तो यह बात पर चलो पढ़ा जाए अगला ईमेल और जाना जाए कौन सा गीत सुने के फरमाइश कीन गई है। तो ईमेल आवा है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड से, जिका पढ़े वाले हैं रामशरण, विश्वकर्मा, साहिल, मंजू, रंजना, प्रियल और दिव्यांशी। और ये सब जने फरमाइश करें फिल्म कवि कालीदास से गीत सुने के। तो चलो सुना जाए।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। वीडियो वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 1:50 हुए हैं। अब प्रसिद्ध फिल्म संगीत का कार्यक्रम जवानों के लिए।

ये था कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। फौजी भाइयों, जय हिंद।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गीत आपने सुना, आवाज महेंद्र कपूर की थी। आइए अब महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले का गाया हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है कहीं दिन कहीं रात।

नाइट इन लंदन। इस फिल्म में भी आप मोहम्मद रफ़ी को सुन रहे थे। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब महेंद्र कपूर का गाया हुआ ये गीत आपको सुनवाते हैं, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है रवि ने। फिल्म का नाम है अनमोल मोती।

महेंद्र कपूर को आप सुन रहे थे, फिल्म थी अनमोल मोती, बोल राजेंद्र कृष्ण के थे और धुन बनाई थी रवि ने। फौजी भाइयों, आइए अब आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत आपको सुनवाते हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है बगावत।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अए ये नागन डसले तो क्या कहना।

मोहम्मद रफ़ी के गाय फिल्म बगावत के इस गीत के साथ ही फौजी भाइयों आज का फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम संपन्न करने की हम आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

यह था कार्यक्रम जवानों के लिए। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षो में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग

0: बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्र गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्र गिरी को महेंद्र गिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया

0: दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है, उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
2: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय में शामिल सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप इनसे दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
1: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्प्टन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 400.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:30 हुए हैं। विज्ञान और किसान, आज के इस कार्यक्रम में सुनिए तिल की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी के साथ की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ में जहां तिलहन उत्पादन की योजना बनाए हैं और खास करके तिल उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा से वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर CM त्रिपाठी साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि खरीफ में तिलहन उत्पादन की और खास करके तिल की खेती की क्या कुछ संभावना है?
3: नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों। देखिए, तिल की खेती बहुत ही अच्छी फसल है, कम समय में अच्छी उत्पादन दे जाती है। ऐसी जमीन में जहाँ पे जल निकास अच्छा हो, ढलवादार जमीन हो, वहाँ पे तिल की खेती का जमीन का चयन करना चाहिए, वहाँ पे बुआई करनी चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, क्या फर्दा खेती करें किसान भाई बहन या सफसली खेती भी कर सकते हैं?
3: देखिए, दोनों पद्धतियों में कि उसमें पूरे खेत में केवल तिल ही बो दें और फिर साफ फसल के साथ यदि हम बोते हैं तो संभावना रिस्क जो रहता है वो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है। और दूसरी फसल मतलब कुछ बारिश या किसी अन्य विपदा के कारण एक फसल खराब हो रही है तो दूसरी फसल हमको साथ दे जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि अंतर्वर्ती खेती के रूप में इसको हमको प्रिफर करना चाहिए।
2: यानी आज का दौर जलवायु परिवर्तन का है तो ऐसे में फर्दा तो करें ही, अगर दलहनी फसलों के साथ या अन्य अनाज वाली फसलों के साथ सह फसल के रूप में भी उगा सकते हैं।
3: जी जी जी, अरहर के साथ भी कर सकते हैं हम। चार लाइन जो है तिल की, एक लाइन अरहर की, इस तरह से उसमें कर सकते हैं। उड़द के साथ भी कर सकते हैं, मक्का के साथ भी कर सकते हैं
2: और मिलेट्स फसल के साथ भी।
3: मिलेट्स के साथ तो बहुत अच्छी चीज है।
2: ज्वार और बाजरा,
3: मिलेट्स भी आजकल जो है कहीं जल्दी उत्पादन नहीं होता तो हम मिलेट्स के साथ इसको लगाएंगे, उसको भी कम पानी लगता है और इस तिल को भी कम पानी लगता है तो बहुत अच्छी पैदावार उसको मिल जाएगी। किसान भाइयों को जो है बीज का चुनाव और खेत की अच्छी तैयारी कर लेनी है कि जल निकास वाली जमीन हो, और खेत की तैयारी से पूर्व ही उसमें 8-10 टन जो है गोबर की खाद मिल जाए सड़ी हुई तो उसको डाल देना चाहिए।
2: यानी 80-90 कुंटल?
3: जी जी, 2.5 एकड़ में 35-40 कुंटल जो है ये खाद जो है
2: प्रति एकड़
3: की दर से जो है किसान भाई उसमें कर सकते हैं।
2: डॉक्टर साहब, खेत की तैयारी में क्या कुछ खास है?
3: खेत की तैयारी 2 बार कल्टीवेटर से बढ़िया से जुताई करके उसमें खेत तैयार करके रख लें और गोबर की खाद मिलाने के बाद जो है कल्टीवेटर लगा करके जुताई करके अच्छी से तरह खेत तैयार कर लें। फिर बीज का भी चयन करना पड़ेगा, बीज प्रक्रिया करनी पड़ेगी, ये सब बातें जो है।
2: डॉक्टर साहब, उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी प्रति इकाई क्षेत्र में?
3: देखिए, इसमें कई प्रजातियां हैं जो विशेष रूप से TKG 308, TKG 21 है, TKG 22 है और ST1 है, इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां हैं जो प्रमुख रूप से अपने क्षेत्रों में उगाई जाती हैं।
2: इनकी खासियत क्या महसूस कर रहे हैं?
3: देखिए, ये रेजिस्टेंट है किसी भी प्रकार का, उसमें रोग बीमारी इस तरह नहीं आता है। थोड़ा बहुत जो है ब्लाइट का या क्या फिलोडी की भी समस्या आती है तो अपना वो कोई भी फंजीसाइड डाल करके हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं।
2: और फाइलोडी के लिए कोई न कोई कीटनाशक का प्रयोग करना होगा?
3: इसमें हेक्साकोनाजॉल जो है 1 ग्राम पर लीटर पानी में जो है डाल करके उसको यदि हम स्प्रे कर देते हैं तो फाइलोडी की समस्या जो है वहाँ पे खत्म हो जाती है।
2: अच्छा होगा कि अपने नजदीकी राज्य के कृषि बीज भंडार पर जो बीज उपलब्ध है उन्नत प्रजातियों का तिल का, उसका चुनाव करें डॉक्टर साहब?
3: हाँ, उसका चुनाव करें, लेकिन मेरा एक ही संदेश है कि जो भी किसान भाई हमारे बीज बोने के लिए लाए हुए

0: हैं, बीज उपचार ही जरूर कर लें।
1: डॉक्टर साहब, बीज उपचार पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन बीज की मात्रा कितनी लगेगी प्रति एकड़, और बीज शोधन और भूमि शोधन करना है तो कैसे करना?
0: देखिए, बीज प्रति एकड़ जो है 1.5 से 2 किलो बीज की आवश्यकता है।
1: और बीज शोधन में?
0: अब बीज शोधन में वही जो है कार्बन डाइजिम 2% का जो है बीज में लगा करके 2 ग्राम जो है 1 किलो बीज मात्रा लगती है, अच्छे से उसको हाथ से मिला करके उसको शोधित कर लेना चाहिए।
1: और अगर जैविक उपचार करना है तो?
0: जैविक उपचार करना है तो आजकल जो प्राकृतिक खेती के जो व्यवस्थाएं हैं, ये बीजामृत जो है, और उसे हम बीज को उपचारित करके फिर हम बुआई कर सकते हैं।
1: और ट्राइकोडर्मा से अगर बीज उपचार करना है
0: हाँ,
1: तो?
0: ट्राइकोडर्मा भी जो है 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जो है ट्राइकोडर्मा हम लगा करके उनको जो है बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। और सॉइल में एप्लीकेशन भी हम गोबर की खाद के साथ मिला करके जो है जब हम देते हैं उसी समय हम ट्राइकोडर्मा जो है डाल देते हैं 5 किलो प्रति एकड़, तो हमारा जो है जमीन जो है शोधित हो जाता है उसे।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बीज शोधन भूमि शोधन की बात रही, बुआई का अंतरण क्या होगा और बुआई में कौन कौन सी बारीकी है?
0: देखिए, ज़्यादातर खरीफ में किसान भाई छिटवा विधि से जो है प्रिफर करते हैं कि खेत में छिटकते हैं, लेकिन वो तरीका गलत होता है। इसमें कूंड से ही उसको प्रमुख रूप से बोना चाहिए, तो लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर पर रखनी चाहिए। क्योंकि क्या रहता है, जब हम लाइन से बोते हैं तो कोई अंतर क्रियाएँ करनी है, खरपतवार निकालना है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, पौधे हमारे उसमें खराब नहीं होने पाते हैं।
1: यानी लाइन से लाइन की दूरी लगभग 1 फीट,
0: 1 फीट के आसपास।
1: और चूंकि बुआई में घने पौधे होंगे तो
0: बाद में उसकी विरलीकरण उसके हम कर दें, तो पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन कर लेंगे, तो उसमें जो स्वस्थ पौधे होंगे रह जाएंगे, उसमें बहुत से कमजोर पौधे रह जाते हैं, उनको हमको निकाल देना है। पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन कर देने से तो उसमें शाखाएं भी अच्छी निकलती हैं और पैदावार हमको मिलती है।
1: और ये काम 15 से 20 दिन बाद ही होगा?
0: हाँ, ये लगभग 20 से 25 दिन के बाद जो है हम ये विरलीकरण का काम उसमें कर सकते हैं।
1: फसल की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन कब, कितना और कैसे करना है?
0: देखिए, बुआई के समय ही जो 20 से 25 किलो के आसपास नाइट्रोजन और लगभग 16 से 20 किलो जो है फास्फोरस और 15 से 20 किलो तक जो है पोटास, ये बेसल एप्लीकेशन जब हम बुआई करते हैं उसी समय हमको खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। किसान भाइयों को यहाँ पे जो है गंधक का भी प्रयोग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बुआई के समय हम जो डाल देते हैं, तो हमारी जो तेल के प्रमाण है या उसमें और अन्य नोडुल्स भी फॉर्मेशन होता है, तो अच्छी प्रकार से तैयार होता है और फसल भी वही उसमें कैप्सूल वगैरह बढ़िया तैयार हो जाती है।
1: यानी तेल का उत्पादन होने के साथ साथ गुणवत्ता भी अच्छी होगी?
0: गुणवत्ता भी अच्छी होगी। दूसरा एक चीज इसमें मैं कहना चाह रहा था कि जैसे किसान भाई जो है हमने बता दिया कि 24 किलो नाइट्रोजन डाल दीजिए, 20 किलो फॉस्फोरस और 15 किलो पोटास डाल दीजिए, तो उनको तो डीएपी के रूप में मिलता है या मिक्स फर्टिलाइजर
1: या
0: एनपीके 12-32-16, तो 2 बोरी 1 एकड़ के लिए 12-32-16 का पर्याप्त है। वो यदि किसान डाल देते हैं तो उसमें उनके बुआई का पूरी न्यूट्रिएंट मिल जाता है।
1: फिर खड़ी फसल में टॉप ड्रेसिंग?
0: हाँ, फिर उसमें 1/3 जो नाइट्रोजन हमारा बच जाता है उसको जब हम पहली सिंचाई करते हैं उस अवस्था में यूरिया के रूप में जो हमको छिड़काव कर दे या बारिश हो जाए, नहीं तो हमको 2% यूरिया का पर्णीय छिड़काव यदि हम कर देते हैं, नैनो यूरिया आ गया, ये आ गया है, तो भी इफेक्टिव बहुत अच्छा काम करता है उसमें।
1: बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान खेत में उगते हैं, तो खर पतवारों का प्रबंधन कैसे हो तिल में?
0: देखिए, इसमें तो ये है कि एक तो निराई करके एक बार निराई करना चाहिए, नहीं तो बुआई के तुरंत बाद हमारे पास जो है पेंडीमिथिलीन नाम का एक हर्बिसाइड है, खरपतवार नाशी रसायन है, कि जो कि 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है, उसको 300 लीटर से 400 लीटर के आसपास वैसे अंदाजे पानी लगता है, उसमें घोल बना करके बुआई के तुरंत बाद 48 घंटे के अंदर अंदर किसान भाई अगर जो उसमें छिड़काव कर देते तो खरपतवार नहीं आते। अगर जो खरपतवार आते हैं तो 20 से 25 दिन की अवस्था में एक क्यूजुलो फॉप एक बीडीसाइड आता है जो घास वर्गीय जो रहते हैं उन्हीं को केवल मारता है, चौड़ी पत्ती के जो हमारी तिल रहती है। हाँ, 20 से 25 दिन की अवस्था में तो 200 ml जो है 250 लीटर पानी में डाल के हमको इसको छिड़काव कर देना है, तो जो घास रहता है वो हमको नष्ट हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे तिल की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र गोपाल ग्राम गोंडा आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: जी, 820-88-73-126 8200

0: 8 7 3 1 2 6 820 88 73 126। एक बात मैं थोड़ा सा इसमें आपको चाहता हूँ किसान भाइयों को कि देखिए इस वर्ष बारिश का जो व्यवस्था है वो कहीं ज्यादा बारिश हो सकती है, कम बारिश हो सकती है, तो इसके लिए किसान भाइयों को हमको सबको तैयार रहना होगा कि खेत में निकासी यदि अधिक बारिश हो रही है तो निकासी की व्यवस्था हो, यदि बारिश कम हो रही है तो हमको हमारे पास जो एक जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था उसमें हमको करके रखनी पड़ेगी। और जब भी हमारी फसल कटे तो हम उसको किसी अच्छे स्थान पर सूखे स्थान पर रख करके उसको सुखा लें।
1: डॉक्टर सीएम त्रिपाठी साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और तिल की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तिल की उन्नत कृषि तकनीक, अभी आप इस विषय पर डॉक्टर चंद्रमणि त्रिपाठी के साथ की गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके साथ ही आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 2:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं। उपनिरीक्षक रमेश सिंह, थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी से प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गेश जायसवाल, जिसको उम्र 30 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ है। दुर्गेश जायसवाल पिछले 20 मई 2026 से कहीं लापता हैं। जिस किसी को भी दुर्गेश के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। उपनिरीक्षक रमेश सिंह, थाना दरियाबाद, जनपद बाराबंकी। उपनिरीक्षक ब्रजेश चंद्र यादव, पुलिस थाना सुबेहा, जनपद बाराबंकी से प्राप्त सूचना के अनुसार नेहा, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, कद 4 फुट 6 इंच। नेहा 2025 से कहीं लापता है। जिस किसी को भी नेहा के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। उपनिरीक्षक ब्रजेश चंद्र यादव, पुलिस थाना सुबेहा, जनपद बाराबंकी। प्रभारी थाना AHT, जनपद लखीमपुर खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार सुमी देवी, जिसकी उम्र 18 वर्ष है, कद 9 फुट 10 इंच, चेहरा लंबा है। सुमी देवी पिछले 4 जुलाई 2023 से कहीं लापता है। जिस किसी को भी सुमी देवी के बारे में कोई जानकारी हो या मिले, कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। प्रभारी थाना AHT, जनपद लखीमपुर खीरी। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

लीजिए, आप सुनिए कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आज रात 10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। दिल्ली केंद्र से ही 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती।

विज्ञान जगत कार्यक्रम में 7:31 पर अन्य बातों के अलावा विज्ञान समाचार होंगे और साथ ही 2047 का संकल्प, कैसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, विश्व ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम। स्टूडियो में होंगे डॉक्टर निमिष कपूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक बीरबल सहनीपुरा विज्ञान संस्थान, आपसे भेंट करेंगे प्रवीण कुमार। विज्ञान जगत में 7

मीडियम वेव 431.6 एक मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। 2:45 हुए हैं। लोक माधुरी, लोक संगीत के इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अवधि लोक गीत। कलाकार हैं रश्मि उपाध्याय। आइए पहले सुनते हैं ये मुंडन गीत।

ये नकटा भी आप सुन रहे थे लोक माधुरी कार्यक्रम में। आज आप रश्मि उपाध्याय के गाए हुए अवधि लोकगीत सुन रहे थे। आपके साथ संगति की ढोलक पर मोहम्मद सलाम, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर मुकेश कुमार और साइड रिदम पर थे शैलेंद्र सिंह। इसके साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: मीडिया वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम की 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ हो रही है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के

0: प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: प्रधानमंत्री ने ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में प्रवासी भारतीय समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
2: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्षता करेंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही ये नाव होन में रुत नगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। एक दिवसीय श्रृंखला से पहले भारत की नज़र ये मैच जीतने पर रहेगी। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। शाम के 5:05 हुए हैं और अब समय है आपको जानकारी देने का इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। तो सबसे पहले जानकारी इस सभा के कार्यक्रमों की। आज रात्रि 9:30 पर राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम संस्कृति भारती, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। ये दोनों ही कार्यक्रम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शाम 5:10 पर सुनेगा कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा शाम 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम

में डॉक्टर सुरेश सिंह की वार्ता का विषय होगा ग्रामीण उद्यम से सशक्त होता गांव। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में भेंट वार्ता सुनिएगा, विषय होगा धान की रोपाई और खरपतवार। इस विषय में डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम में विज्ञान जगत, इसमें भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी 2047 का संकल्प, कैसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत। इस विषय में डॉक्टर निमेश कपूर से बातचीत करेंगे प्रवीण कुमार। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत सुनिएगा, विषय होगा जनसंख्या बनाम विकास। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा भजन, कलाकार होंगे अभिषेक कुमार। ये थी जानकारी इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब जानकारी कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। कल रात्रि 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा प्रसारित की जाएगी, इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। हमारे केंद्र से उर्दू कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर, इसमें सुनिएगा मुबाइसा, सेहतमंद खेलों से दूर होते बच्चे। इसमें शिरकत करेंगे नगमा जैसी और डॉक्टर रिजवानुल रजा, पेशकश आकाशवाणी लखनऊ मरकज की होगी। सामयिक चर्चा 9:15 पर, शाम 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। 6:05 पर कृषि चर्चा कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा धान रोपाई में आवश्यक सावधानियां। इस विषय में डॉक्टर अतुल कुमार सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आराधना कार्यक्रम सुनिएगा 6:15 पर, 6:43 पर श्री रामचरितमानस गान प्रसारित किया जाएगा। 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में नीना सोनकर की जानकारी का विषय होगा कोलीन, एक पोषक तत्व। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम का विषय होगा सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है। 7:31 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रचना शुक्ला का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। 9:50 पर और दिन में 2:45 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक रंग और लोक माधुरी, इसमें आप सुनिएगा अवधि लोकगीत, कलाकार होंगी विंध्यवासिनी त्रिपाठी। सवेरे 10:00 कार्यक्रम आपकी पसंद के लोकगीत, दिन में 12:00 बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बाल मंच। दिन में 1:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज इतवार है, इसमें पंकज शुक्ला की लिखी झलकी सुनिएगा बैंकिंग का चक्कर। दिन में 1:30 पर अक्षयवट कार्यक्रम में भेंटवार्ता सुनिएगा, विषय होगा वृद्धावस्था और सहायक प्रौद्योगिकी। इस विषय में डॉक्टर अमित कुमार से भेंट करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। जवानों के लिए यह कार्यक्रम दिन में 1:50 पर प्रसारित किया जाएगा। दिन में 2:30 पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर शशांक शेखर सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत का विषय होगा खरीफ सब्जियों में कीट रोग प्रबंधन। संस्कृत कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 3:15 पर। रिकॉर्डेड फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण समय रहेगा दिन में 3:30 पर, इसमें विषय होगा विभिन्न प्रकार की जांचों और इससे जुड़ी भ्रांतियां। विशेषज्ञ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश बाबू और संचालन सुभाष खन्ना का होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे इस सभा के और कल की सभाओं में प्रसारित होने कार्यक्रमों के विषय में, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी सुरभि। दोस्तों, आज है वीकेंड और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए कुछ खास और

ज़रूरी बातें। साथ ही हम और आप सुनेंगे कुछ बेहतरीन गीत जो इस शाम को बनाएंगे और भी खूबसूरत, शानदार और जानदार। तो फिर दोस्तों, देर किस बात की, एक प्याली चाय लीजिए और बैठिए रेडियो के करीब और थोड़ा सा करीब और सुनिए हमारा कार्यक्रम युवा तरंग, जिसकी शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ। तो आइए साथियों, सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आजकल हम सभी को बस एक ही शिकायत रहती है, और वो शिकायत है कि उफ़, भीड़ कितनी बढ़ गई है। सड़कों पर, बसों में, अस्पतालों में, यहाँ तक कि साथियों मंदिर और तीर्थ स्थानों में भी, हर जगह हमें दिखाई देती है बस भीड़ ही भीड़, लोग ही लोग। अगर एक छोटी सी भी परीक्षा हो तो लाखों हजारों परीक्षार्थी, नौकरी में एक सीट के लिए लाखों हजारों आवेदक, अस्पताल में जाइए तो वो मुहावरा बिल्कुल चरितार्थ प्रतीत होता है कि एक अनार और 100 बीमार, एक डॉक्टर और एक लंबी कतार, लगभग 100 लोगों की, मरीजों की लंबी कतार, राशन की दुकान में भी लंबी कतार, रेल, बस या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वहाँ अपनी जगह बनाने के लिए महीनों पहले मशक्कत करनी पड़ती है और रिजर्वेशन कराना पड़ता है। अगर इसमें सफल हो गए तो ठीक है, और नहीं सफल हुए फिर हम लोग वही बात कहते हैं कि ओफो, कितने लोग बढ़ गए हैं। साथियों, लोग समस्या नहीं है, लोगों का अनियंत्रित रूप से बढ़ना समस्या है। समस्या है कि जब लोग अधिक हों, जनसंख्या अधिक हो, और उनकी अपेक्षा संसाधन कम हों। साथियों, ये अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि की समस्या हम सभी के लिए एक चुनौती हो गई है। ज़रा सोचिए साथियों कि अगर किसी कमरे में उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा लोग आ जाएं तो क्या होगा? जगह कम पड़ जाएगी, संसाधनों पर दबाव बढ़ जाएगा और व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। साथियों, यही बात हमारे देश और दुनिया पर भी लागू होती है। साथियों, आज है 11 जुलाई। हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य केवल बढ़ती जनसंख्या की चर्चा करना नहीं, बल्कि ये समझना भी है कि स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक समाज ही किसी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1989 में की गई थी, यानी कि 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य जनसंख्या से जुड़े मुद्दों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन और महिलाओं के अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। भारत आज दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। इतनी बड़ी आबादी अपने साथ अपार संभावनाएं भी लेकर आती है, लेकिन यदि सभी लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध ना हो सके, तब ये जनसंख्या दोस्तों चुनौती बन जाती है। युवा साथियों, अक्सर कहा जाता है कि जनसंख्या समस्या नहीं है, बल्कि संसाधनों का संतुलित उपयोग और जागरूकता सबसे बड़ा समाधान है। यदि हर बच्चा शिक्षित होगा, हर परिवार स्वस्थ होगा और हर नागरिक जिम्मेदार होगा, तो बड़ी आबादी भी देश की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। इसीलिए साथियों, आज आवश्यकता है कि हम परिवार नियोजन को केवल सरकारी योजना न समझें, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का हिस्सा माने। छोटे और स्वस्थ परिवार से बच्चों की शिक्षा, पोषण और बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना आसान होता है। इसके साथ ही साथियों, बढ़ती जनसंख्या का सीधा असर पर्यावरण पर भी पड़ता है। पानी की कमी, प्रदूषण, जंगलों का घटता क्षेत्रफल और बढ़ता कचरा, ये सभी चुनौतियाँ कहीं ना कहीं जनसंख्या और संसाधनों के असंतुलन से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए साथियों, हमें पानी बचाने, पेड़ लगाने और

0: प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करने की आदत भी विकसित करनी होगी। और दोस्तों, इस चुनौती से निपटने के लिए युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप स्वयं जागरूक बनें, सही जानकारी प्राप्त करें, अफवाहों से बचें और अपने परिवार तथा समाज में स्वस्थ शिक्षा और समानता का संदेश फैलाएं। एक जागरूक युवा कई लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, वक्त हो चुका है कार्यक्रम में आप सभी को एक भेंटवार्ता सुनाने का। तो आइए क्षितिज अवस्थी जी से बात करते हैं और समझते हैं कि आतंकरोधी नया सिद्धांत प्रहार क्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरभि। दोस्तों, आतंकवाद विश्व के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है। भारत ने भी दशकों तक सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का सामना किया। बदलते सुरक्षा परिदृश्य में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी रणनीति को और अधिक सशक्त, आधुनिक और निर्णायक बनाया है। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं क्षितिज अवस्थी जी, जो कि लखनऊ IIM से हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे आतंक रोधी सिद्धांत प्रहार के विषय में। क्षितिज जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि प्रहार अभी न्यूज में क्यों है और प्रहार के मुख्य स्तंभ क्या हैं?
1: सुरभि जी, गृह मंत्रालय ने भारत की पहली व्यापक राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति और रणनीति, जिसका नाम प्रहार है, वो लॉन्च की है
0: जी,
1: जो आतंकवाद से निपटने के तरीके में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। अब तक जैसे कि हम रिएक्टिव यानी हमले के बाद कार्रवाई वाली सोच अपनाते थे
0: जी।
1: वो सोच को छोड़कर ये नीति प्रोएक्टिव है, यानी हम हमला होने के बाद जवाब देने के बजाय उसे होने से रोकने का प्रयास करेंगे। प्रहार के कुछ मुख्य स्तंभ हैं, जैसे कि आतंकी हमलों की रोकथाम, त्वरित और अनुपातिक जवाब, आंतरिक क्षमताओं को जोड़ने वाला पूरे सरकार का नजरिया, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कमजोर करना इत्यादि।
0: सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रोकथाम वाला स्तंभ जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा?
1: ये स्तंभ केंद्र और राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल पर आधारित है
0: जी।
1: इंटरनेट का गलत इस्तेमाल, OGW नेटवर्क, हथियार आतंक गठजोड़ और फंडिंग पर लगाम लगेगा और सामरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी।
0: सर, प्रहार नीति आतंकवाद की मूल जड़ों जैसे कि कट्टरपंथ या रेडिकलाइजेशन से निपटने के लिए क्या प्रावधान करती है? साथ ही हम जानना चाहते हैं कि आतंकवाद की प्रकृति सीमा पार होने के कारण इस नीति में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल एंगल को कैसे शामिल किया जाएगा?
1: सुरभि जी, क्या है कि आतंकवाद की जड़ यानी कट्टरपंथ से निपटने के लिए प्रहार समुदाय आधारित तरीका अपनाएगा।
0: अच्छा।
1: समुदाय के नेता, धर्मगुरु, NGO ये सब मिलकर कट्टरपंथी सोच का वैचारिक जवाब देंगे। युवाओं के लिए ग्रेडेड रिस्पांस रहेगा, भटके हुए मामलों में सुधार और काउंसलिंग पर जोर होगा। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से आतंक को बढ़ावा देने वाली स्थितियों को कमजोर किया जाएगा। जो आपने ग्लोबल एंगल की बात करी
0: जी जी,
1: सो अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को जोड़ना इस वाले स्तंभ से कवर होगा। भारत म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी MLAT
0: जी,
1: प्रत्यर्पण संधि और ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप्स के जरिए आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने को खत्म करेगा और सबूत एक दूसरे से साझा करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में आतंकी संगठनों और व्यक्तियों को घोषित करवाने और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करने पर जोर होगा। मजबूत कानूनी सिस्टम और ह्यूमन राइट्स में बैलेंस भी रखा गया है। प्रहार पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कानून के राज पर आधारित है।
0: अच्छा।
1: हाँ, हमारे देश में शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक सही और ट्रांसपेरेंट तरीका अपनाया गया है। सख्त कानून, जैसे आपने सुना होगा UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, भारत में आतंकवाद से निपटने का मुख्य कानूनी तरीका है
0: जी।
1: इसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जैसे कानूनों से और मजबूती मिलती है।
0: सर, किसी संकट के बाद देश के पुनर्निर्माण और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रहार नीति में क्या प्रावधान है?
1: देखिए सुरभि जी, रिकवरी प्लस रेजिलियंस
0: जी
1: के तहत प्रहार पूरे समाज वाला मॉडल लाता है, जो सरकारी और प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित। इसका मकसद किसी संकट के बाद जल्दी सामान्य स्थिति लौटाना और लोगों की शारीरिक व मानसिक ताकत को दोबारा बनाना है। इसके अहम बिंदु हैं केंद्र राज्य में तालमेल, जैसा कि हमने पहले कहा, लोकल पुलिस के पास ड्रोन, डार्क वेब जैसी नई चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग, कट्टरपंथ के प्रति पर्याप्त आकलन एवं रणनीति, ये सारे साधन हैं।
0: तो सर, प्रहार की रूपरेखा को

0: आप कैसे देखते हैं?
1: पर हर मॉडल को सफल बनाने के लिए कुछ खास पहल की जरूरत है। पहला, बेहतर समन्वय के साथ साथ आतंकवाद रोधी कानूनों को समय के हिसाब से अपडेट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारी एजेंसियां हैं
0: जी,
1: वो आतंकियों से आगे रहें,
0: अच्छा,
1: ताकि कानून नई चुनौतियों से निपट सके। दूसरा, क्षमता निर्माण पर फोकस करना होगा। सभी राज्यों को आधुनिक ट्रेनिंग, ड्रोन, साइबर जैसे संसाधनों पर आवश्यक जोर दिया जाए। ग्लोबल सहयोग बढ़ाना होगा, क्योंकि आतंकवाद अब सीमाओं तक सीमित नहीं रहा।
0: जी,
1: इसके अतिरिक्त AI और बिग डेटा जैसे जो आधुनिक तकनीकी हैं, उनसे फंडिंग के सोर्स और संदिग्ध हरकतें पकड़ी जाएं। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कट्टरपंथी कंटेंट फैलाने के लिए जवाबदेह बनाया जाए।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छा एक मॉडल दिख रहा है और निश्चय ही बहुत ही सफल होगा अपने उद्देश्य में। सर, आखिर में हम ये जानना चाहेंगे कि प्रहार का मूल संदेश क्या है?
1: सुरभि जी, प्रहार का मूल संदेश है जीरो टॉलरेंस, लेकिन जीरो अधिकार नहीं।
0: जी,
1: ये प्रोएक्टिव है,
0: अच्छा,
1: ये टेक्नोलॉजी आधारित है और समाज को साथ लेकर चलने वाला है। हमारा देश भारत आजादी के बाद से दशकों से आतंकवाद का सामना कर रहा है।
0: जी,
1: बॉर्डर पार से आतंकवादी संगठनों, इंटरनेशनल आतंकवादी नेटवर्क ने भारत के समक्ष बहुत सारे खतरे पैदा किए हैं।
0: जी,
1: समय के साथ आतंकवादी सिर्फ गोला बारूद तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इससे आगे बढ़कर साइबर हमले, ड्रोन के जरिए तस्करी, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, डिजिटल तरीकों से टेरर फाइनेंसिंग, डार्क वेब और लोकल युवाओं के बीच कट्टरता जैसे मॉडर्न खतरों को भी शामिल कर लिया है।
0: जी,
1: इस स्थिति को देखते हुए जो प्रहार है, ये आतंकवाद से निपटने के लिए एक साफ और सिस्टमैटिक सिस्टम है। यह पॉलिसी का मकसद सिर्फ आतंकवादी हमलों का जवाब गोला बारूद से देना नहीं है,
0: अच्छा,
1: बल्कि आतंकवाद के पूरे सिस्टम को खत्म करना है, जैसे कि उनकी भर्ती, फाइनेंसिंग, हथियारों की सप्लाई और आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेंडा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे युवाओं को आतंकरोधी सिद्धांत से अवगत कराया, और तो आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद सुरभि जी इस अवसर के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे युवा इस योजना को जानेंगे और इससे आगे की समझ विकसित करेंगे।
0: धन्यवाद सर, नमस्कार। तो दोस्तों, ये जो नया सिद्धांत है, आतंकरोधी नया सिद्धांत प्रहार, इसके विषय में ये भेंटवार्ता सुनकर आप निश्चय ही हमारे प्रोएक्टिव भारत की रणनीतियों से परिचित हुए होंगे और समझा होगा। अब वक्त हो चुका है कार्यक्रम में एक गीत का, तो आइए सुनते हैं गीत।

0: जी साथियों, बात तो तब बनती है जब हम और आप जुड़ते हैं कार्यक्रम युवा तरंग के साथ। साथियों, भारत की माटी कला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। माटी कलाकार अपनी कला और मेहनत से न केवल परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं, बल्कि स्वरोजगार का भी एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा कई सुविधाएं और योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। इन्हीं सुविधाओं और इनके लाभों पर जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हैं श्री कृष्ण प्रताप सिंह। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: अपने देश में माटी कला का इतिहास कितना पुराना है, इस बारे में निश्चयात्मक तौर पर कुछ कहना बहुत कठिन है, क्योंकि वह प्रागैतिहासिक काल की सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है। पुरातत्वविद बताते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में भौगोलिक रूप से समूचे बृहत्तर भारत को अपने विस्तार में समेटने वाली इस सभ्यता के लोग अपनी जरूरत के अनुसार दूध व वनस्पतियां वगैरह पकाने के लिए मृत भांडों यानी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे। जाहिर है कि उन्होंने ये बर्तन बनाने का हुनर उनको इस्तेमाल करने से पहले ही सीखा होगा। हम जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान मिले सभ्यता के अवशेषों में मिट्टी के बर्तन भी शामिल हैं, जो साबित करते हैं कि इस कला की पहचान बहुत पुरानी है। उसके परवर्ती इतिहास में तो इस कला द्वारा अपने विकास के साथ समाज के लिए अपना उपयोग सिद्ध करने और सभ्यता के उन्नयन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने और जाति विशेष के जीवन निर्वाह के पुश्तैनी धंधे में बदल जाने का लंबा सिलसिला दिखाई देता है। आजकल हम अपनी युवा पीढ़ी का अपनी माटी से जुड़ाव लगातार कम होते जाने को लेकर जो चिंताएं जताते हैं, उनका एक सिरा भी माटी से जुड़ी इस कला तक जाता ही जाता है। इसके उन कलाकारों तक भी जिन्हें शुरू में कुंभ यानी घड़े बनाने के कारण कुंभकार, फिर भाषा विकास के मुख सुख सिद्धांत के तहत कुम्हार कहा गया, और जो आगे चलकर एक ऐसे जातीय समुदाय में बदल गए जो अपनी जीविका के लिए पूरी तरह इस कला पर ही निर्भर करता था। प्रसंगवश कुंभकारों अथवा कुम्हारों और माटी का रिश्ता हमारे देश के दार्शनिकों व भक्त कवियों की भी गहरी दिलचस्पी का सबब रहता आया है, और वे अपने लौकिक व दार्शनिक आख्यानों में उनका जमकर इस्तेमाल करते रहे हैं। संत कबीर के माटी कहे कुम्हार से

वाले बहुचर्चित दोहे में तो माटी ने कुम्हार से मनुष्य के रूप में उसके मिट्टी के चोले के अंततः मिट्टी में ही मिल जाने की अनिवार्य परिणति के मद्देनजर निरभिमान रहने की जो सीख दी है उसे कई दर्शनों के सार जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूधूंगी तोय। मुगल बादशाह अकबर के समकालीन कवि रहीम तो कुम्हारों के चाक को भी लोक शिक्षण के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। रहीमन चाक कुम्हार को, मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डार के चाहे नाद लै ले। इसका अर्थ यह कि कुम्हार अपने चाक से कितनी भी मिन्ती करता, वह मांगता रहे कि भाई मेरे लिए एक दिया तैयार कर दे, चाक उसकी एक नहीं सुनता। लेकिन चाक के छेद में डंडा डालकर उसे घुमा दे तो दिए से सैकड़ों गुनी विशाल नाद तक बनाकर दे देता है। कुम्हार माटी और चाक के रिश्तों को लेकर पौराणिक कथाओं की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन इतने समृद्ध अतीत वाली माटी कला का वर्तमान अभी हाल के बरसों तक बहुत खुशगवार नहीं था, क्योंकि बड़े पैमाने पर प्लास्टिक व फाइबर वगैरह से बनी स्वदेश निर्मित या आयातित वस्तुओं ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में तेजी से जगह बनाकर माटी कला के उत्पादों से उनके पैरों तले की जमीन तक छीन ली थी। पहले दुर्गा पूजा हो, दीपावली, छठ या ईद, माटी कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुओं के बगैर कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता था। हमारे परिवारों में जन्म से लेकर मृत्यु तक हर्ष और विषाद के जितने भी महत्वपूर्ण पल आते थे उनमें माटी कला की सामग्रियों की भरपूर मांग हुआ करती थी। दीयों, देवी देवताओं की मूर्तियों, खिलौनों, गुल्लकों, गमलों, कुल्हड़ों, प्यालों, तसलों, कमोरियों, खपड़ों और नाद वगैरह के खरीदार दूर दूर से मुहमागे दामों पर खरीदारी के लिए कुम्हारों के घर आया जाया करते थे। दूसरी ओर तब कुम्हारों के काम लायक मिट्टी और आमा धंधकाने लायक ईंधन की भी बहुतायत थी, मगर वक्त बदला तो इन दोनों के अभाव के साथ माटी कला उत्पादों की मांग में कमी, उन्नत शिल्प और तकनीकी शिक्षा के अभाव भी उनके आड़े आने लगे। लेकिन अब हालात बदलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारों ने इस ओर ध्यान देकर इसके लिए बहुविध जतन शुरू किए हैं। केंद्रीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 2018 में लॉन्च की गई कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत यह समझते हुए कि हर तरह की मिट्टी माटी कला के लिए उपयोगी नहीं होती, उसके कलाकारों के लिए उपयुक्त मिट्टी की व्यवस्था हेतु खनन के निःशुल्क पट्टों की व्यवस्था तो की ही जा रही है, उत्पादों की क्वालिटी बेहतर बनाने और मेक इन इंडिया के तहत मार्केटिंग में भी मदद दी जा रही है। राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके माटी कला बोर्ड के गठन और सरकारी कार्यालयों, बस स्टॉपों, रेलगाड़ियों के कोचों व रेलवे प्लेटफार्मों और हवाई अड्डों पर मिट्टी के कुल्हड़ों व अन्य बर्तनों का इस्तेमाल प्रोत्साहित करने की दिशा में भी प्रयत्न जारी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकोल से बने बर्तनों का चलन बंद करके देशवासियों से माटी कलाकारों के इको फ्रेंडली उत्पादों के इस्तेमाल की अपील करते और प्रदेश सरकारों को पर्यावरण विरोधी प्लास्टिक का उपयोग रोकने की प्रतिबद्धता याद दिलाते रहते हैं। माटी कलाकारों की बनाई वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने गत वर्ष अक्टूबर में आकाशवाणी पर अपने बहुचर्चित मन की बात कार्यक्रम में दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज से लेकर छठ पूजा जैसे त्योहारों तक की चर्चा करते हुए देशवासियों से कहा था, आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल, आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। आप अपने यहाँ के जो लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें उनके बारे में सोशल मीडिया पर शेयर भी करें, अपने साथ के लोगों को भी बताएं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत माटी कला से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के अनेक जतन किए जाते हैं। मसलन खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद, प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेट, डोंगे और भवन निर्माण सामग्री, फ्लोर टाइल, रूफ टाइल, लैट्रिन पैन, पाइप, वॉश बेसिन, सजावटी सामान, गुलदस्ते, गार्डन पॉट्स, बोनसाई पॉट्स और लैंप्स वगैरह के उद्योग स्थापित

0: कराए जाते हैं। कुम्हार जाति के लोगों यानी पीढ़ियों से माटी कला से जुड़े आ रहे कलाकारों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का निर्व्याज कर्ज भी दिया जाता है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में मिट्टी के डिजाइनर दीयों व बर्तनों का उत्पादन इतना बढ़ा दिया जाए कि दीपावली जैसे त्योहारों पर देश भर में उनकी सप्लाई की जा सके। माटी कलाकारों को इस उत्पादन वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 18 से 55 वर्ष तक के कलाकारों को माटी कला बोर्ड से जोड़कर ऑनलाइन व ऑफलाइन कार्यशालाओं के जरिए आधुनिक प्रशिक्षण तो दिलाया ही जाता है। माटी कला टूल किट वितरण योजना के तहत आवेदन प्राप्त कर उन्हें पगमिल, अत्याधुनिक डाई तथा फर्निशिंग मशीन, विद्युत चालित बियरिंग युक्त इलेक्ट्रॉनिक चाक व अन्य आवश्यक सामग्री भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए तक के व्यक्तिगत प्रोजेक्ट पर राष्ट्रीयकृत या ग्रामीण बैंकों से ऋण भी स्वीकृत कराए जाते हैं। इसके लिए उनके प्रोजेक्ट की लागत का 5% अंश संबंधित माटी कलाकार को वहन करना पड़ता है, जबकि 95% अंश 5 वर्ष के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। पूंजीगत ऋण राशि की 25% मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाती है। इतना ही नहीं, जिन क्षेत्रों में माटी कला के विकास से जुड़ी सुविधाओं का अभाव है, वहां प्रस्ताव आने पर सुविधा केंद्र भी खोले जाते हैं। इस सब के पीछे उद्देश्य यह है कि माटी कलाकार कम लागत में मिट्टी के ऐसे उच्च गुणवत्ता युक्त डिजाइनर दिए, बर्तन व खिलौने आदि तैयार कर सकें जो विदेशों से आने वाले दियों, बर्तनों व खिलौनों वगैरह से बेहतर भी हों और सस्ते भी, क्योंकि ऐसा होने पर ही वे प्रतिस्पर्धा में ठहर और खड़े उतर सकेंगे। कोई 2 दशक पहले रेलवे ने अपने स्टेशनों व कोचों में यात्रियों को मिट्टी के कुल्हड़ों में चाय देने की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में प्लास्टिक और पेपर के कपों ने फिर कुल्हड़ों की जगह हथिया ली। इस बहाने की यात्री चाय पीने के बाद कुल्हड़ रेलवे ट्रैक पर ही फेंक देते हैं, जिससे वहां मिट्टी एकत्र होने और समस्या पैदा करने लगती है। लेकिन अब फिर से हर रेलवे स्टेशन पर इको फ्रेंडली कुल्हड़ों में चाय बेची जाने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल अभी यह प्रेरणा के स्तर पर है, यानी ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों के मांगने पर वेंडरों को उन्हें कुल्हड़ में चाय देनी होगी और वे ऐसा न करें तो यात्री उनकी शिकायत भी कर सकेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी इस बात के लिए भी प्रयासरत हैं कि बस डिपो, हवाई अड्डों और मॉलों में भी कुल्हड़ में ही चाय मिले। माटी कला के विकास के इन सारे प्रयत्नों से यह उम्मीद मजबूत हुई है कि माटी कलाकारों की राह की अरसे से चली आ रही दुश्वारियां अब दूर होंगी और वे समुचित प्रशिक्षण के साथ आर्थिक व उपकरणों की सहायता प्राप्त कर अपने भविष्य के नए सपने देख सकेंगे। उनमें से कुछ ने तो देखने शुरू भी कर दिए हैं। वे बताते हैं कि परंपरागत बर्तनों और खिलौनों के अतिरिक्त कलाकृतियों व सजावट की आकर्षक वस्तुओं के निर्माण से उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा लाभ हो रहा है, क्योंकि शहरों में उनकी विशेष मांग है। उनके द्वारा निर्मित हंडी, गमले, झाड़ फानूस, लैंप, घंटी, बैल, घोड़ा, हाथी, हिरण व मुखौटे आदि खूब बिक रहे हैं। कह सकते हैं कि अब माटी और कुम्हार कबीर के समय के एकालाप से आगे बढ़कर बेहतर व सार्थक संवाद कर सकेंगे।
1: तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे माटी कलाकारों को मिलने वाली सुविधाओं के विषय में। साथियों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी कि PMKY KVY ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को उनकी रुचि और उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ते हैं, चाहे कंप्यूटर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यटन या अन्य क्षेत्र। युवा अपनी पसंद के अनुसार प्रशिक्षण लेकर अपने भविष्य को नई दिशा दे सकते हैं। साथियों, तो देर किस बात की, आप भी अपने कौशल को निखारना चाहते हैं, अपने नजदीकी कौशल विकास केंद्र की जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाएं। तो साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

युवा तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

साथियों नमस्कार, नई उड़ान कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त रीना आपका स्वागत करती है। अच्छा, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है और गर्मी से हम सबको राहत मिल गई है।

साथियों नमस्कार, नई उड़ान कार्यक्रम में आपकी रेडियो दोस्त रीना आपका स्वागत करती है। अच्छा, बारिश का मौसम तो शुरू हो गया है और गर्मी से हम सबको राहत मिल गई है, कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ये भी है कि भाई बारिश के मौसम की अपनी समस्याएं होती हैं और उनको भी हमें पार पाना ही पड़ेगा। समस्याओं का क्या है, जिधर देखिए उधर समस्या ही समस्या नज़र आती है कि नहीं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि जनसंख्या ही है। जी हाँ, अगर लोगों की जो तादाद है वो इतनी ज़्यादा न होती तो शायद हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ भी उतना ज़्यादा ना होता। कैसी अजीब सी बात लगती है कि कहीं पर तो देखिए बहुत सारे लोग हैं और कहीं पर लोगों की कमी नज़र आती है। क्या है चक्कर कि आज 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है। इस दिन की शुरुआत जो है जुलाई 1987 को की गई थी और कारण ये था कि ये माना जाता है कि संभवतः 11 जुलाई 1987 का दिन ही वो दिन था जब हमारे पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब को पार कर गई थी, मतलब 5 बिलियन डे कहा जाता है इस दिन को। और आज की अगर हम बात करें 1987 के बाद से लेके अभी तक, यानी आज हम 2026 में आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इतने ही कम सालों में अब हमारे विश्व की जनसंख्या हो गई है 8 अरब से ज़्यादा। ये कहा जाता है कि हर 14 महीने में हमारे पूरे विश्व में 10 करोड़ लोग जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी कि इतने लोगों की जनसंख्या आबादी बढ़ जाती है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो एक समान रूप से पूरे विश्व में बढ़ रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर कि जनसंख्या का घनत्व जो है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मकाऊ, सिंगापुर, हांगकॉन्ग, गिब्राल्टर, बहरीन, मालदीव, बांग्लादेश, ये वो देश हैं जहाँ पर कि जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, जैसे कि मंगोलिया, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड, लीबिया, कनाडा, कजाकिस्तान, रशिया। अब ये देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जनसंख्या है वो कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कहीं कहीं पर उसका जो घनत्व है वो काफ़ी कम है। यही हाल हमारे देश में भी है। हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली, और कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और इसके साथ और दूसरे स्टेट्स भी हैं। अब कहने की बात ये है कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। ये तो आपने सुना ही होगा और ये भी सुना होगा कि अति सर्वत्र वर्जिते, यानी कि न बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हो जाए तो वो भी नुकसानदेह है, बहुत कम हो जाए वो भी बहुत नुकसानदेह है। अगर हमारे घरों में बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाएँ वो भी बहुत उससे भी तकलीफ़ होती है, और वो घर ही क्या जहाँ पे बच्चे ना हो, मतलब एक दो बच्चे भी अगर ना हो तो भी उस घर के होने का क्या मतलब है। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि जनसंख्या जब संतुलित रूप में हो तभी अच्छी है। बैलेंस जो है वो लाइफ की हर चीज़ में होना ज़रूरी है और वही बात हम जनसंख्या के ऊपर भी लागू कर सकते हैं। यानी कि हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे घरों में जो पॉपुलेशन है, हमारे घर के जो लोगों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा ना हो, इतनी ज़्यादा ना हो कि हम उनको ठीक से उनकी देखभाल ना कर सकें, उनके रहन सहन का ख्याल ना कर रख सकें, और इतनी कम भी ना हो कि बात करने वाला भी कोई ना मिले। तो ये दोनों ही चीज़ों को अगर हम बैलेंस में रखेंगे तो हम अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए कुछ और भी चीज़ें हैं जिनका होना ज़रूरी है। एक है रोज़गार, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हमारे पास है वो होनी चाहिए वो है रोज़गार। और रोज़गार भी अगर ऐसा हो जिसमें कि हमारी जो देसी तकनीकें हैं, जो देसी चीज़ें हैं, उन पर अगर हम मंथन करें, उन पर काम करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी हमारे लोकल वोकल फॉर लोकल का नारा भी देते हैं। तो अब आइए, हम आपके लिए लेके आए हैं स्ट्रीट लाइन इंडिया श्रृंखला के अंतर्गत स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित अगली प्रस्तुति, जिसका विषय है

0: वोकल फॉर लोकल, यूपी के स्ट्रीट उद्यमियों की सफलता।
1: आज के सेगमेंट स्ट्रीट लाइन इंडिया में मैं कपिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्ट्रीट उद्यमी अपनी मेहनत, लगन और छोटे छोटे नवाचारों के बल पर न केवल अपनी आजीविका मजबूत कर रहे हैं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का उद्देश्य भी यही है कि हम स्थानीय उत्पादों, सेवाओं और उद्यमियों को बढ़ावा दें तथा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करें। इसी विषय को करीब से समझने के लिए हमने शहर के स्ट्रीट मार्केट के दुकानदारों, वहां खरीदारी करने वाले ग्राहकों और नगर निगम के कर्मचारी से बात की। आइए जानते हैं कि स्थानीय कारोबार को बढ़ावा देने और स्ट्रीट उद्यमियों की सफलता को लेकर उनकी क्या राय है। मनोज जी, पहले आप क्या करते थे, कैसे शुरुआत की इसकी?
2: शुरुआत पहले तो नौकरी प्राइवेट करता था। प्राइवेट नौकरी करते जब समझ में नहीं आया तो अपना बिजनेस डाला थोड़ा सा, थोड़ा मेज पे सामान वामान लेके अपने बैठे थे। धीमे धीमे करके बढ़ाते चले, स्टेशन शुरुआत करी थी और स्टेशन करते करते आज आपके सामने जो भी है।
1: कितनी पूंजी से शुरुआत की थी लगभग?
2: अरे 4-5 हज़ार रुपये शुरुआत किया, थोड़ी स्टेशन लाए थे, खाने पीने का सामान थोड़ा ले आए थे, थोड़े गिफ्ट वगैरह ले आए थे। धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते स्टेशन भी बढ़ते चले, गिफ्ट भी बढ़ते चले गए। आस पास में सब दुकानों पर बच्चों को पता लगता गया, 2-3 कॉलेज स्कूल भी आस पास हैं, उसका फ़ायदा भी मिला बढ़िया। तो आज आपके सामने सब दिख रहा है, इतनी बढ़िया दुकान आज कर ली, घर ही में करी ये दुकान ये।
1: अच्छा, क्या आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई सरकारी लोन भी लेना पड़ा?
2: नहीं, लोन नहीं लिया।
1: अच्छा, वोकल फॉर लोकल के कितने सपोर्ट में आप?
2: बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट में है। जितना अपने वोकल में जितनी चीज़ें अपने वही यूज़ की जाए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया जाए, अपने देश का फायदा होगा, अपने देश की इकोनॉमी बढ़ेगी उससे।
1: क्या नाम है आपका?
3: राहुल अग्रहरी।
1: राहुल, ये बताइए कि ये काम शुरू करने का विचार आपको कैसे आया था?
3: ये विचार इस वजह से आया था क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी कर रहा था और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग भी नहीं था मैं, घर में इतना मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ एक साइड बिजनेस भी करना चाहिए मुझे। तो मैंने अमीनाबाद में जगह देखी और उस पर फिर अपना थोड़ा सा पैसे वैसे घर से और अपने पास जो मैंने सेविंग्स कर रखी थी उससे मैंने इकट्ठा करके थोड़े माल लेके आया। उससे फिर धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस करता रहा, धीरे धीरे ऊपर वाले की कृपा से आज यहाँ पे हूँ। आज भी मैं स्टडी कर ही रहा हूँ, इस समय भी मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है।
1: अच्छा, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं?
3: जी, अभी भी चल रहा है।
1: तो कैसे मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को, व्यापार को और पढ़ाई को?
3: कभी कभी ऐसा होता है कि मैं लड़का भी एक रख रखा हूँ, कभी कभी अगर वो नहीं आता है तो मुझे बंद करना पड़ता है। वो पेपर वेपर देने के लिए लड़के को रखा है तो वो देख लेता है, मैं चला जाता हूँ पेपर वेपर देने और स्टडी वगैरह भी यहाँ पे भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, ऐसा नहीं है जब पेपर वगैरह चलते हैं।
1: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या आपने सरकार जो ऋण देती है उसके लिए भी कोई सहायता ली, जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना चलती है पटरी दुकानदारों के लिए?
3: जी, वो चलती है, मैंने अप्लाई किया था, अभी तो मुझे मिला है, हो गया साल भर हो गया, मैंने लिया था।
1: अच्छा, यही?
3: हाँ, 10,000 मिला था मुझे, पहले शुरुआत में 10,000 ही मिलता है ना। हाँ, तो मुझे मिला था।
1: खालिद, ये बताइए कि मोबाइल एसेसरीज का काम कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे सोचा कि ये काम करना चाहिए, फुटपाथ पे शॉप लगानी चाहिए और फिर उसको बड़ा करना चाहिए?
4: आजकल टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है तो लोगों जो है मोबाइल कवर रखना बहुत शौक है रखना। पहले सिंपल शुरुआत करी थी हम लोग ने, सिंपल कवर लाए थे, तो धीरे धीरे करते करते हम लोग ने लोग लेडीज भी आने लगी, उनको भी समझ में आने लगा कि अच्छा मिल रहा है, स्टोन पे लाइए, चार्म्स लगाइए, फलाना दिमाग का। तो दिल्ली बम्बई से हम लोग माल लाते हैं तो ऐसे ऐसे कारोबार बढ़ाया हम लोग ने। अब हम लोग की माशाल्लाह बहुत बड़ी शॉप हो गई है, फुटपाथ पे अच्छा चलता है, ये नहीं कि फुटपाथ पे तो चल नहीं रहे लेकिन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब चल रहा है।
1: क्या नाम है आपका?
4: उमर।
1: उमर, मैं देख पा रहा हूँ कि आपने यहाँ पर चिकन की कुर्तियाँ लगा रखी, ये व्यापार आपने कब शुरू किया था?
4: ये मैंने 3 साल हो गए तब से शुरू किया था।
1: 3 साल, तो कितनी पूंजी से शुरू किया था?
4: ये लगभग 30,000 रुपये।
1: 30,000 रुपये से शुरू किया था। आज और पहले के समय में क्या अंतर है, आपका व्यापार कहाँ तक पहुँच गया है?
4: मेरा व्यापार मान के चलिए अभी तक के तो जो है जैसे 2-2.5 लाख के आसपास पहुंच गई है।
1: आइए अब करते हैं इनसे बात। क्या नाम है आपका?
5: मोहम्मद आमिर।
1: आपने जनरल स्टोर शुरू करने का फैसला कैसे किया था?
5: मुझे नौकरी करना पसंद नहीं था तो मैंने अपनी ये छोटी सी दुकान शुरू की एक मेज से, जिससे आज धीरे धीरे बढ़ाता रहा और आज इस मुकाम पे हूँ।
1: आपने जैसा कि कहा कि आपने एक मेज से शुरू की, तो आपने क्या क्या प्रोडक्ट शुरू किए थे और कितनी पूंजी से शुरुआत की थी?

0: एक दो पैकेट नमकीन पानी इन सबसे शुरुआत की थी, और आज माशाल्लाह ये है कि मेरा अच्छा खासा कारोबार हो चुका है। चाय वाय का भी मैंने काम डाल दिया इसमें।
1: तो जब आपने शुरुआत की थी और अभी आपकी दुकान कितनी बढ़ चुकी है पहले से?
0: पहले से तो काफ़ी बढ़ चुकी है माशाल्लाह।
1: क्या आपने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई सरकारी ऋण भी उठाया?
0: जी हाँ, मुझे लोन लेना पड़ा। मुझे पता चला कि जो है सरकार की तरफ से पीएम स्वनिधि योजना का कोई लोन चल रहा है जो हम लोग को मिल सकता है, तो के बारे में हम गए जाके उसकी जांच पड़ताल की, फिर फॉर्म वॉर्म भरे, फॉर्म भर के हमने वो लोन प्राप्त किया, जिसकी वजह से हम आज इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर चुके हैं।
1: तो कितना लोन लिया था आपने अपनी शॉप के लिए?
0: लगभग 50,000 रुपये का।
1: तो दोस्तों हमारे साथ हैं एक और शख्स, इनसे करते हैं बात। क्या नाम है आपका?
2: मेरा नाम सुल्तान है, सुल्तान अहमद, और हमारा बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम है।
1: सुल्तान भाई ये बताइए कि आपका बैग मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कैसे इस व्यापार में आना हुआ, किस तरीके से काम शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: ये शुरुआत इस तरीके से हुई है, हमेशा से हम बैग लाइन में नहीं रहे हैं। शुरुआत ही हमें जो है पढ़ाई जो है अपना सरकारी स्कूल से हमने पढ़ाई करी थी, उसके बाद से धीरे धीरे ये रहता था कि हाँ जेब में पैसे होने चाहिए, घर से पैसे लेने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी पिताजी से माताजी से, ताकि जो है सोचते थे कि अपने पास अपना खुद का पैसा हो। तो हमारे जैसे स्कूल के पास हमें बैग की दुकानें रहती थी, तो सब लोग जानते थे कि यहाँ पढ़ता है, तो हमने बात करी कि हाँ हम बैग बेचने के लिए ले सकते हैं। तो हमने कुछ बैग, 4-6 बैग हमने जो है लिए, उसके बाद जो है लेके निकल गए बाज़ारों में बेचने के लिए, कि हाँ लोगों को जो है रोक रोक के हम बैग बेच रहे हैं। लोगों ने पहले तो बहुत इग्नोर करा, रहे ऐसे कौन बैग लेता है। लोगों ने देखा कि छोटा सा लड़का है बैग बेच रहा है, उसने पूछा भाई कितने का दे रहा हूँ। कोई अगर दुकान में वो 150 रुपये अगर रहता था तो हम भी जो है उसको 150 रुपये का बताते थे। तो उसमें शुरुआती में तो लॉस भी बहुत हुआ, जैसे 150 का लेके आए, 150 रुपये का दे दिया, तो उसमें 0 ही प्रॉफिट रहता था। तो इस वजह से फिर धीरे धीरे जब दुकानदारों को भी लगने लगा कि यार ये बच्चा बैग बेच पा रहा है, तो उन्होंने 6 से लेकर फिर 12 हुए, 12 से 24 हुए, फिर धीरे धीरे 10-10 रुपये पीस पे प्रॉफिट हम लेने लगे। जब हमने देखा कि 10 रुपये प्रॉफिट पर बैग बच रहा है, मेरी जेब में कुछ खर्चा आ रहा है, कहीं से पैसे अर्निंग हो रही है, तो हमें और धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा कि हाँ अब मतलब माँ बाप से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब धीरे धीरे अपनी अर्निंग कहीं ना कहीं से हम आती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से धीरे धीरे लगे रहे, 10-10 रुपये पीस कमाने लगे, फिर 20-20 रुपये कमाने लगे, फिर देखा कि दिन भर के हमारे 200-200 रुपये बनने लगे, 20-20 बैग बिकने लगे, 30-30 बैग बिकने लगे। तो इस वजह से हम धीरे धीरे इस लाइन में इंटरेस्ट बढ़ता गया, आते गए धीरे धीरे, फिर मैन्युफैक्चरिंग लाइन कारखानों में गए, काम किया, बहुत छोटे स्तर से काम को सीखा। तो धीरे धीरे मार्केट में जब निकलते गए, लोगों के साथ जुड़ते गए कि हम बैग बनाते हैं, तो जिन लोगों से हम बैग खरीदते थे आज वो लोग हमसे बैग खरीदते हैं।
1: अच्छा, वोकल फॉर लोकल, इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस समय बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, वो चाह रही है कि बाहर से जो प्रोडक्ट आते हैं वो आना बंद हो, रहा हमारे वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग इस्तेमाल करना शुरू करें। तो इसके लिए एक शॉर्ट में बताइए कि आपके क्या विचार हैं?
2: हमारे विचार ये हैं कि हम भी चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए चाइना है एकदम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस लाइन में सबसे वर्ल्ड में सबसे नंबर वन है, हम भी चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हर चीज़ होती चली जाए, जो इंडिया का पैसा है वो इंडिया में ही पूरा घूमता रहे, इंडिया में ही लगे।
1: तो हमारे साथ एक शख्स हैं जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं और ये बड़ी देर से मोबाइल कवर देख रहे थे, तो इनसे करते हैं बात। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम अमन है। मैं आया था मार्केट में, तो मैं दुकान आया रोड सूट लेने आया, तो मैंने सूट लेके ले लिए, तो मैंने एक जोड़ी सूट ले लिया अमीनाबाद से, ये रोड पे लगाते रेड़ी वाले, तो अच्छा लगा। मार्केट से लेते हैं तो मैं समझ में नहीं आता, ये न्यू सामने लायक होता है चीज़ कौन सी देखना है, कौन चीज़ ऑनलाइन मंगा रहे तो ऑनलाइन समझ में नहीं आ रही है, सामने देखी तो चीज़ अच्छी लगी तो मैंने एक सूट यहाँ से ले लिया। बगल में मोबाइल शॉप है, मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा मोबाइल कवर मुझे बहुत अच्छे अच्छे लगे, कवर पसंद आया, तो मैंने यहाँ से कवर इससे ले लिया। यहाँ पे सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिल जाता है और सस्ता भी मिल जाता है।
1: तो एक और शख्स हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है?
4: मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है।
1: इरशाद भाई ये बताइए कि आप पटरी दुकानदार जो है उनसे हमेशा परचेसिंग करते हैं या आज आएँ?
4: नहीं, मैं तो हमेशा ही पटरी दुकान से शॉपिंग करता हूँ।
1: अच्छा, इसका कारण क्या है?
4: क्योंकि यहाँ रिजनेबल प्राइस मिलते हैं, हमको डिस्काउंट मिलता है, रेंज सही मिलती है।

0: ऐसा ही मिलता है, इस वजह से मैं पट्टी दुकानदार से ही शॉपिंग करता हूँ।
1: तो क्या क्वालिटी भी वही मिल पाती है जो बाजार में, मतलब जो दुकानदारों के वहाँ मिलती है, वो क्वालिटी अब मिल जाती
0: है ना? ठीक है, क्वालिटी थोड़ी 19-20 रहती है मगर ठीक रहती है।
1: तो दोस्तों, अब मैं पहुँच चुका हूँ नगर निगम में, जहाँ से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलती है और लोन भी आप ले सकते हैं, जो पटरी दुकानदार हैं वो लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं जो इसको मैनेज करते हैं, स्वनिधि लोन योजना को, इनसे बात करते हैं। सर, आपका क्या नाम है?
2: मेरा नाम अनुराग शर्मा है।
1: अनुराग जी, क्या ये जो योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि, ये पटरी दुकानदारों के लिए ही बनाई गई?
2: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भी 18 प्लस मतलब बंदा हो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा करके और अपना स्टार्ट कर सकता है स्टार्टअप।
1: मतलब किस किस टाइप के व्यापार जो है इसमें कवर होते हैं?
2: इसमें आपका अपने लोकल के जो होते हैं उसी पे ही तो लोग ज्यादा करते हैं ना, जैसे चिकनकारी है और फास्ट फूड है और स्टेशनरी है और फेरी है, सब चीज इसमें आती है। जो फुटपाथ पे होते हैं उससे संबंधित सारे जो होते हैं उस पे प्रोवाइड हो जाता है यहाँ से।
1: अच्छा, कोई अगर अपनी दुकान खोलना चाह रहा हो, जैसे कोई छोटा व्यापारी हो, तो क्या उसको भी इस योजना का लाभ मिलता है?
2: जी बिल्कुल, 18 प्लस कोई भी हो स्टार्टअप करने के लिए मिल जाता है। अगर उसको आप एक स्थिर रूप से करना चाहता है तो उसको नगर निगम जगह भी प्रोवाइड कराती है।
1: तो उस जगह का क्या कुछ किराया होता है?
2: जी यहाँ पे उसकी रसीद कटती है और उसका जो जेन्युइन फीस जमा होती है उसकी बाई नगर निगम अर्थराइड आपको ऑनलाइन रसीद भी मिलती है। साल का 7200 रुपए जमा होता है।
1: तो ये वोकल फॉर लोकल जो है, जो अपने प्रोडक्ट्स होते हैं किसी भी शहर के हो, अभी तो हम लखनऊ में हैं, किसी भी शहर की बात कर लें, जैसे कहीं की कालीन प्रसिद्ध है, कहीं का जूता प्रसिद्ध है, कहीं की चिकनकारी प्रसिद्ध है, कहीं का कुछ प्रसिद्ध है, तो ये क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं?
2: बिल्कुल बिल्कुल, इस योजना के तहत उन्हीं लोगों को सपोर्ट ही मिल रहा है जो अपना लोकल वोकल मतलब करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मेन बनाई गई योजना। ये हाई लेवल के लिए नहीं, ये लोअर क्लास के ही स्टार्टअप के लिए ही शुरुआत है, क्योंकि इसमें फर्स्ट टाइम 15,000 मिलता है अगर आप उसको एक साल के अंतर्गत टाइम टू टाइम जमा कर देते हैं। और इससे डिजिटल लेन देन का भी बहुत बढ़ावा मिला है। इस पे जो हमारी नगर निगम की टीम है इस पे भी काम कर रही है, जिससे हमारा जो एक वो है कि डिजिटल वाला वो भी पूरा हो सके।
1: अच्छा, अगर कोई लोन लेना चाहता है, जैसे मान लीजिए कोई दूर दराज का आदमी है, गाँव का आदमी है, कोई लोन लेना चाह रहा है, अपना स्टार्टअप करना चाह रहा है, तो वो किस तरीके से लोन उसको मिल सकता है, क्या क्या प्रक्रिया है उसके लिए?
2: उसके लिए प्रक्रिया है, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एड्रेस ऑल ऑफ इंडिया हो, बट अकाउंट यहाँ लखनऊ में उसका होना चाहिए, क्योंकि जो पैसा प्रोवाइड होता है वो लोकलिटी बैंक से ही होता है। जैसे मेरे नगर निगम से अप्रूव कर दिया गया और बैंक प्रोवाइड कर देती है, उसमें इसमें लोकल एड्रेस का कोई महत्व नहीं होता है। जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस पे, अगर दो उस पे होता है, अगर एक आप अस्थायी रूप से करना चाहते हैं तो आपको नगर निगम जगह भी प्रोवाइड कराता है, अगर आप अस्थायी रूप से ना आप चल में कराना चाहते हैं तो आप चल में भी करा सकते हैं।
1: अच्छा, ये ऑनलाइन होता है या नगर निगम आके भी कोई करा सकता है?
2: नहीं, ऑनलाइन होता है, आप अपने आप भी कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है। आप ऑनलाइन अगर सही चीजें सब ने सही भरी है तो नगर निगम उसको वेरीफाई कर देता है।
1: क्या इस सहायता को प्राप्त करने के लिए आपका कोई नंबर भी है जिससे कोई अगर कांटेक्ट करना चाहे, जानकारी लेना चाहे तो ले सके?
2: जी बिल्कुल, मेरा नंबर है इसके लिए आप 6306106461। मैं नगर निगम का कर्मचारी हूँ, आप किसी भी समस्या के संबंधित संपर्क कर सकते हैं हमसे।
1: नगर निगम कैसे उनके लिए सहायक है?
2: मैं तो उनके लिए ही कहना चाहूंगा कि वो लोग मतलब जैसे बहुत लोग हमारे युवा साथी हैं जो 18 प्लस होकर के बेरोजगारी में गलत वे के रास्ते में चले जाते हैं, तो अपना स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा ही अपॉर्चुनिटी उनके लिए कि अपना आप 15,000 लीजिए, अगर वो मेहनत करके करना चाहते हैं स्ट्रगलर, आत्मनिर्भर भारत के तहत मोदी जी का सपना भी है, तो उसमें अपना आप कर सकते हैं।
1: आशा है कि हम सभी स्थानीय उत्पादों और स्ट्रीट उद्यमियों का समर्थन कर वोकल फॉर लोकल के संकल्प को और मजबूत बनाएंगे।
3: साथियों, अभी आप कपिल तिलेरी द्वारा तैयार की गई स्थल ध्वनिंकन पर आधारित यह प्रस्तुति सुन रहे थे। विषय था वोकल फॉर लोकल, यूपी के स्ट्रीट उद्यमियों की सफलता। और अब हम आपको गीत सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पेपर और पेन तैयार रखना है, क्योंकि आपको अमृत अवसरों के बारे में भी मैं बताऊंगी। तो इस जानकारी से पहले ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचेगी।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: तो साथियों, एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोग्राम चल रहा है नई उड़ान, और मैंने कहा था कि जब गीत आपको सुनवाने के बाद मैं आपको अमृत अवसरों के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले नोट कीजिए वेबसाइट www.bprd.nic.in। एक बार फिर से सुनिएगा www.bprd.nic.in। अब आपको विस्तार से थोड़ा बताती हूँ। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा भोपाल, दिल्ली, जयपुर, गाजियाबाद, हैदराबाद सहित चंडीगढ़ में प्रति नियुक्ति के आधार पर कई पदों के लिए काम करने हेतु योग्य जो अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब इसमें बहुत सारे पद हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, मैं कुछ पदों के नाम आपके सामने बता देती हूँ। जैसे कि इंस्पेक्टर है, प्रशिक्षण सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, ट्रेड्समैन, ऐसे बहुत सारे पद हैं जिन पर कि आप प्रतिनियुक्ति के

आधार पर आवेदन पत्र भेज सकते हैं। डिटेल्स आपको जाननी अगर हैं तो आप रोजगार समाचार का 4 से 10 जुलाई 2026 का अंक देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो वेबसाइट मैंने आपको बताई www.bprd.nic.in में, जब आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे वहाँ पे आप भर्ती के अंतर्गत सबसे पहले आप देखेंगे प्रशासनिक प्रभाग, उसके बाद जब आप उसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको भर्ती मिलेगी और भर्ती के अंतर्गत आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, अंतिम तिथि क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। अब अमृत अवसरों की जानकारी, अमृत अवसर की जानकारी तो मैंने आपको दे दी, अब अच्छी सी बात भी आपको बता देती हूँ। देखिए, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे जो है वहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा बिना बैरियर का टोल प्लाज़ा होगा। जब आप लखनऊ से कानपुर या कानपुर से लखनऊ जाएंगे तो वहाँ पे जो टोल प्लाज़ा होगा वहाँ पे कोई बैरियर नहीं होगा, रुकने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टोल प्लाज़ा से 500 मीटर पहले NPR कैमरों की मदद से 80 से 100 किलोमीटर स्पीड की रफ्तार से जो गाड़ियाँ चल रही होंगी उनकी नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच जाएगी और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर फास्ट टैग को रीड करके सिस्टम को भेज देगा और टोल टैक्स अपने आप ही कट जाएगा। है ना अच्छी बात, ना रुकना पड़ेगा, ना समय की बर्बादी होगी, आपका जो टोल टैक्स है वो अपने आप ही कट जाएगा। ये है आधुनिक तकनीक। और जब हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं तो एक जानकारी आपको और दे दूं कि मेलबोर्न में हुई शिखर वार्ता के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 18 समझौतों पर मुहर लग गई है। इनमें शामिल असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते से ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हो गया है। अब यूरेनियम का क्या इस्तेमाल है? यूरेनियम जो है वो भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रयोग किया जाएगा। है ना अच्छी बात। देखिए, हम ऐसी अच्छी अच्छी बातें आपको और भी बताते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, इतनी लंबी नहीं है, बहुत छोटी सी है। क्या हो सकता है अगर एक माँ जो है वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल से नोटिस लेके आया, उसको उसकी माँ ने पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये नोटिस ये कहता है कि तुम्हारे स्कूल में तुम्हें पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स नहीं हैं, वो तुम्हारा जो बुद्धि है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए तुम्हारे स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं ही नहीं कि वो तुम्हें पढ़ा सकें, अब तुम्हें घर में पढ़ना होगा। और फिर उस मदर ने, उस माँ ने क्या किया, अपने बच्चे की एक एक चीज़ का ध्यान रखा, पहले खुद पढ़ाया, फिर बच्चों को खुद पढ़ा, फिर बच्चे को पढ़ाया, हर चीज़ समझाई, और जब बच्चा वो बड़ा हुआ तो बना थॉमस एल्वा एडिसन। आप समझ सकते हैं, जिनको कि हम विश्व का महानतम वैज्ञानिक मानते हैं, ये है उनके बचपन की कहानी। और इस कहानी से हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, और माता पिता अगर चाहें तो अपने बच्चों को क्या से क्या बना सकते हैं। याद रखिएगा ये कहानी, आप भी और मैं तो हमेशा याद ही रखूँगी। अब इस कार्यक्रम से आपसे लेती हूँ विदा, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सोहन लाल सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री हिमांशी 29 मई 2026 से लापता है। हिमांशी की उम्र 19 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, शरीर सामान्य है। जिस किसी को भी हिमांशी के विषय में सूचना हो या मिले तो इस पते पर सूचित करें। सोहनलाल, ग्राम ऐश, थाना खमरिया, जनपद खीरी। मोबाइल नंबर है 8960277077। कालिका प्रसाद सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री सिमरन 20 जनवरी 2025 से कहीं लापता है। सिमरन की उम्र 16 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा शरीर। इन्होंने जीन्स और टॉप पहन रखा है।

0: जिस किसी को भी सिमरन के विषय में सूचना हो या मिले तो इस पते पर सूचित करें, कालिका प्रसाद, ग्राम दौलतपुर, ग्रंट नंबर 10, थाना मैलानी, जनपद खीरी। लल्लू सिंह की सूचना के अनुसार उनके पुत्र संतोष सिंह कहीं लापता है। संतोष सिंह की उम्र लगभग 55 वर्ष है, कद 5 फीट, रंग गोरा, चेहरा गोल, इकहरा मजबूत जिस्म, आंखें सामान्य। इन्होंने सफ़ेद कुर्ता और पाजामा पहन रखा है। जिस किसी को भी संतोष के विषय में सूचना हो या मिले तो कृपया इस पते पर सूचित करें, लल्लू सिंह, ग्राम अमरतापुर, थाना व जनपद खीरी। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। लीजिए एक सूचना सुनिए। रविवार 12 जुलाई 2026 की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य फोन इन प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस में जुड़िए। इसमें विशेषज्ञ होंगे कैंसर सर्जन डॉक्टर जीशानुद्दीन और विषय होगा फेफड़ों का कैंसर, लक्षण और उपचार में हालिया प्रगति। तो जुड़िए हमसे हमारे फोन नंबरों के माध्यम से। फोन नंबर है 0522-223-8845 और 0522-223-8852। तो सुनना ना भूलिए रविवार की दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य FM 100.7 MHz न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: जापान तैवानयोः विमानयात्राः निरस्तीकृताः, शैक्षणिकाः संस्थाः च स्थगिताः। भारत इंग्लैंड देशयोः मध्ये पञ्चमान्तिम च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडा अद्य सायं साउथहैम्प्टन नगरे आयोजयिष्यते। अपि च फीफा विश्व चषक पाद कन्दुक प्रतिस्पर्धायाः अन्तिम उपान्त्य स्थानानां निश्चयार्थम् अद्य रात्रौ प्रागुपान्त्य चरणे नॉर्वे इंग्लैंड दलयोर अथ अर्जेंटीना स्विट्जरलैंड देशयोर मध्ये स्पर्धा भविता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां सम्पाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक संबंधान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमंत्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः संबंधान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपांतरितवन्तौ। अनेनैव सह त्रिंशदधिक-2000तम वर्षं यावत् उभय देशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभय देशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लेक्सिन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिक रूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लेक्सिन इत्यमुना उभय देशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः।

0: पंचो जय हिंद। अपूर्व भैया,
1: हाँ कंचा,
0: मौसम बड़ा अच्छा है।
1: है तो बात है, देखो भैया
0: काल बड़ी अच्छी वर्षा भई रहा है और बारिश होए की वजह से यहाँ गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और किसान भाई लोग बड़े खुश हैं। और तब अपन किसान भाई और खुश हो जाते हैं जब अपने देश में गांव में घर में लोगन के यहाँ छोट मोट काम काज मिल जाते हैं, तब तो खुशी का और कोनो ठिकाना नहीं रहा था। वो खुशी चौगुनी हो जाते है जब भी कामे के यहाँ जो है जो रहा थे वो रोजगार रहा थे वही के खाते जो है जब सरकार बढ़ावा देते है और बढ़ावा दे के कौनी न कौनी योजना बनावे थे और जो है वेका यहाँ कार्यान्वित करत है।
1: बिल्कुल, देखो यही तरीके से एक योजना है अपने यहाँ जो चल रही है मेक इन इंडिया, इसका उद्देश्य ही यह है कि देखो अपने देश में उत्पादन हो और जो कौशल विकास के जरिए जो उसके मानक हैं वे निर्धारित कह के पूर्ण रूप गुणवत्ता वाली चीज़ें का उत्पादन अपने नहीं किया जाए।

0: जैसे कि देखो गांवन की अगर जो बात की जाती है तो गांधी जी भी कहते रहे कि जो गांव के संसाधन हैं उन्हें ते गांव का विकास संभव हो सकत है। इका मतलब यू है कि देखो हमका बाहर जाए कि कहूँ जरूरत ना है, अपने यहाँ खुद का उत्पादन करी और वही के उपभोग करी।
1: बिल्कुल भैया। और ये योजना कहीं है मेक इन इंडिया योजना कहीं है 2014 में यहाँ शुरू की गवारा है। और यही माँ मुख्य उद्देश्य ये योजना क्या यू है कि विदेशी और घरेलू कंपनी कहीं यहाँ प्रोत्साहित करके अपने देश के अंदर उत्पाद बढ़ावा जाए और वही का बढ़ावा देकर वैश्विक रूप से यहाँ रोजगार के अवसर पैदा करके सबका रोजगार के अवसर दिन जाए। जैसा कि आप कहो कि गवहे में यहाँ और जो है घर ही में यहाँ लोगन के यहाँ रोजगार दिन दे के जो है सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
0: बिल्कुल देखो अब तो तमाम हर क्षेत्र में है, देखो चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में ले लो या और कोई चीज़ें हैं, चाहे देखो सेना के संबंधित तमाम ऐसे उपकरण हैं जो कि अपनी देश में है उनका उत्पादन हो रहा है, विज्ञान के क्षेत्र में जितने तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने देश में है उनका उत्पादन होते हैं, वो कलपुर्जा बनाए जा रहे हैं, वो मशीनरी बनाई जा रही हैं जिनके द्वारा अपन देश आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से मैं देखो तमाम और चीज़ें हैं, स्टार्टअप
1: कृषि
0: योजना
1: है।
0: है, कृषि यंत्र हैं, इनका सबका अब बहुत बड़े पैमाने पर अपने देश में उत्पादन हो रहा है। इसे जो विदेशी कहूँ ना कहूँ निर्भरता है वह कम पड़ता है, अपने यहाँ रोजगार उत्पन्न होते हैं और लोगन का अवसर मिलते हैं।
1: बिल्कुल भैया, अवसर मिलते हैं। और ये जो मेक इन इंडिया है ये क्या मुख्य उद्देश्य यू है कि भारत देश में निवेश और नवाचार का यहाँ प्रोत्साहित किया जाए, रोजगार का निर्माण किया जाए और कई छोटे छोटे जो क्षेत्र में रोजगार दे के उनका जो है बढ़ावा दिया जाए और जो व्यापार है वही का सरल और सबकी पहुँच तक बनावा जाए।
0: बिल्कुल। और देखो आज एक विशेष दिवस है जिका हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के नाम से कहे थे, आज 11 जुलाई है। और आज के दिन देखो एक मानक निर्धारित किनका रहा है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो जनसंख्या का चाहे नियंत्रण कह लो या एक प्रकार से ऊपर चिंतन मनन कर लो आज की इन जाय सकत है।
1: बिल्कुल भैया, ये का हर साल 11 जुलाई के यहाँ मनावा जाता है और ये का सबसे पहले 1889 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मनावा गया है। और ये का यही की खातिर मनावा गया है कि जब सब लोग मूल्यांकित कहें तो वित्तीय समय 5 जो है मिलियन जो जनसंख्या रहा है वह जो है पूरे विश्व के रही रहा है। तो यही के खातिर जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या का मूल्यांकन करे के खातिर और वही का कम करे के खातिर जो है ये का सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा 1889 मनावागा। और ये का मनावे के पीछे ये उद्देश्य रहा है जैसा कि आप बताओ कि जनसंख्या का यहाँ नियंत्रण किया जाए और जो है लोगन के यहाँ जो है परिवार नियोजन और लैंगिक समानता, गरीबी और मातृत्व और जो बच्चा वे के स्वास्थ्य जो है बरकरार रहा है और लोगन के यहाँ उनके अधिकारन के प्रति जो है जागरूक किया जाए।
0: आकांक्षा वर्तमान समय में अगर जो देखो बात की जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा एक यह है कि भारत की जनसंख्या जो है अब तो मान के चलो नंबर 1 पर आई गई
1: हाँ,
0: है
1: नंबर 1 पर है।
0: विश्व में। और ऐसी स्थिति में जो कोई भौगोलिक क्षेत्रफल है वो तो बढ़ाना है, वो तो वह है जो पहले रहा है,
1: बिल्कुल भैया।
0: प्राकृतिक संसाधन वह सीमित हैं और कहूँ ना कहूँ उनका अत्ता क्षरण हो चुका है कि अब भी पर्याप्त नए बचे हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसी स्थिति में यू बहुत एक महत्वपूर्ण और विचारणीय बिंदु है कि हम लोग प्रकृति के साथ या पर्यावरण के साथ अपना संतुलन बनावे का है अगर जो तो कहूँ ना कहूँ जनसंख्या पर हमका ध्यान देख परी और इका नियंत्रित करे
1: करेक्ट
0: परी।
1: परी। और भैया जब नियंत्रित किन जाए तब ही जो है जनसंख्या कितनी है यही आधार पर लोगन के यहाँ संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, शिक्षा चिकित्सा मुहैया कराई जाती है। और जब शिक्षा चिकित्सा जो है जनसंख्या के आधार पर मुहैया कराई जाती है तब ही लोग शिक्षित हुई हैं और रोजगार पाई हैं और अपन जो देश है गाँव है वे सब विकसित हुई हैं।
0: बिल्कुल। और देखो जब रोजगार की और विकास की बात आवत है तो ग्रामीण उद्यम के द्वारा भी देखो अपने गाँवन का विकास होते हैं, उनमें उनकी का भूमिका है यह के संबंध में देखो एक वार्ता है अपने बीच में, ग्रामीण उद्यम से सशक्त होते गांव, इसके वार्ताकार हैं डॉक्टर सुरेश सिंह, तो आप सुन लीजिए या वार्ता।
1: हाँ भैया,
2: हमारे देश की बड़ी आबादी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। गांव केवल खेती किसानी का केंद्र ही नहीं है बल्कि वे हमारी संस्कृति, परंपरा, श्रम शक्ति और आत्मनिर्भरता के भी आधार हैं। यदि गांव मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। इसी संदर्भ में

ग्रामीण उद्यम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जलती अगर ज्ञान की ज्योति, यदि शिक्षा की कमी न होती, गांव स्वर्ग बन जाते, प्रेम अमल रस में पग जाते। उनका उद्देश्य था कि हमारे गांव के सभी साथी जो गांव में संसाधन उपलब्ध हैं, उसमें अपने विवेक का उपयोग करते हुए उद्यमिता की ओर अग्रसर हों। ग्रामीण उद्यम का अर्थ है गांव में उपलब्ध संसाधनों, कौशल, स्थानीय जरूरतों और परंपरागत ज्ञान के आधार पर छोटे छोटे व्यवसाय, उत्पादन इकाइयां, सेवा कार्य और स्वरोजगार के अवसर विकसित करना है। यह केवल कमाई का साधन नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज को आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक रूप से सशक्त बनाने का माध्यम भी है। आज समय बदल रहा है। पहले गांव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी, लेकिन अब केवल खेती से परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी करना कठिन होता जा रहा है। जोतों का आकार छोटा हो रहा है, लागत बढ़ रही है, मौसम अनिश्चित हो रहा है और बाजार की चुनौतियां भी सामने हैं। ऐसे में गांव के लिए यह आवश्यक हो गया है कि कृषि के साथ साथ उद्यमिता को भी अपनाया जाए। जब किसान महिलाएं, युवा और स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग और सेवा आधारित कार्य शुरू करते हैं तो गांव की आय बढ़ती है, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं और पलायन कम होता है। ग्रामीण उद्यम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, जहां दूध का उत्पादन अधिक है, वहां डेयरी, पनीर, घी, दही और मिठाई जैसे व्यवसाय यदि विकसित किए जा सकते हैं तो वहां पर अच्छा कार्य हो सकता है। जहां फल और सब्जियां प्रचुर मात्रा में होती हैं, वहां अचार है, मुरब्बा है, जैम है, जेली है, स्क्वैश है, टमाटर सॉस, सूखी सब्जियां और प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में गेहूं, धान, मक्का, दालें, सरसों या मोटे अनाज अधिक होते हैं, वहां उनकी सफाई करके ग्रेडिंग, पैकिंग, आटा चक्की, तेल निष्कर्षण, दाल मिल, पशुचारा निर्माण जैसे उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं। इसी प्रकार मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद निर्माण, पौधशाला, फूलों की खेती, औषधि एवं सुगंधित पौधों की खेती, कृषि यंत्र सेवा केंद्र, बीज उत्पादन, नर्सरी, ड्रिप या स्प्रे सेवा और कृषि सलाह जैसी अनेक गतिविधियां ग्रामीण उद्यम के सफल उदाहरण हो सकते हैं। ये कार्य न केवल अतिरिक्त आय देते हैं, बल्कि कृषि को भी अधिक लाभकारी बनाते हैं। ग्रामीण उद्यम का एक महत्वपूर्ण पक्ष है मूल्य संवर्धन। अक्सर किसान अपनी उपज कच्चे रूप में बेच देते हैं, जिससे उन्हें सीमित लाभ मिलता है। साथियों, यदि उसी उत्पाद को थोड़ा संशोधित कर पैकिंग और ब्रांडिंग बना करके बेचा जाए तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, गेहूं को सीधे बेचने के बजाय यदि आटा, बेसन, दलिया या मल्टीग्रेन मिश्रण बना करके बेचा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सरसों का तेल और खली के रूप में बेचा जाए, दूध को पनीर, घी या दही में बदला जाए, अमरूद, आम, आंवला या नींबू से प्रसंस्कृत उत्पाद तैयार किए जाएं, तो ग्रामीण परिवारों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। आज महिलाएं ग्रामीण उद्यम की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं पापड़, अचार, मसाला, अगरबत्ती, सिलाई कढ़ाई, रेडीमेड कपड़े, स्कूल यूनिफार्म, पोषण आहार, हस्तशिल्प, जैविक खाद, डेयरी और अनेक अन्य कार्य कर रही हैं। इन उद्यमों ने महिलाओं को केवल आय ही नहीं दी, बल्कि आत्मविश्वास, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की क्षमता भी दी है। जब महिला आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो उसका सकारात्मक

प्रभाव पूरे परिवार और गांव पर पड़ता है। बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य और बचत की आदतें भी बेहतर होती हैं। ग्रामीण युवाओं के लिए भी उद्यमिता एक नया अवसर है। आज का युवा केवल नौकरी की तलाश में शहर जाना नहीं चाहता, बल्कि अपने गांव में रहकर भी कुछ नया करना चाहता है। यदि उसे सही प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, तकनीकी ज्ञान, ऋण और बाजार की जानकारी मिले तो वह बहुत सफल हो सकता है। कई युवा आज ड्रोन स्प्रे सेवा, कस्टम हायरिंग सेंटर, मोबाइल रिपेयरिंग, डिजिटल सेवा केंद्र, ई कॉमर्स पैकिंग, डेयरी, मशरूम, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, खाद बीज विक्रय और खाद्य प्रसंस्करण जैसे कार्यों से अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिकता का भी बदलाव है। नौकरी मांगने से आगे बढ़कर रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाना है। ग्रामीण उद्यमों के विकास में सरकारी योजनाओं की भी बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप और स्टैंडअप योजनाएं, कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षण, डेयरी एवं पशुपालन विभाग की योजनाएं, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी सहायता और विभिन्न बैंकों की रोजगार योजनाएं, ये सब ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देती हैं। आवश्यकता इस बात की है कि गांव के लोग इन योजनाओं की जानकारी लें, सही परियोजना बनाएं, प्रशिक्षण प्राप्त करें और सामूहिक रूप से आगे बढ़ें। साथियों, इसके साथ साथ तकनीक और डिजिटल माध्यम ने भी ग्रामीण उद्यम को नई गति दी है। आज मोबाइल फोन के माध्यम से किसान और उद्यमी बाजार भाव, मौसम, प्रशिक्षण वीडियो, सरकारी योजनाएं, ऑनलाइन भुगतान, सोशल मीडिया प्रचार और ग्राहक संपर्क जैसी अनेक सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। यदि गांव का उद्यमी अपने उत्पाद की साफ पैकिंग, अच्छा नाम, उचित गुणवत्ता और डिजिटल प्रचार पर ध्यान दे तो उसका उत्पाद केवल स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि शहरों और ऑनलाइन बाजार तक पहुंच सकता है। हालांकि ग्रामीण उद्यम के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं साथियों, जैसे पूंजी की कमी, प्रशिक्षण का अभाव, बाजार तक पहुंच की समस्या, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जानकारी का अभाव, गुणवत्ता नियंत्रण की कठिनाई, परिवहन और भंडारण की समस्या तथा कई बार जोखिम उठाने का डर। लेकिन इन चुनौतियों का समाधान भी संभव है। यदि पंचायत, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, कृषि विभाग, बैंक, कृषि विज्ञान केंद्र, सहकारी संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम करें तो इन बाधाओं को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि ग्रामीण उद्यम का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। इसका बड़ा उद्देश्य है गांव को आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त, सम्मानजनक और जीवंत बनाना। जब गांव में ही काम मिलेगा तो युवा मजबूरी में पलायन नहीं करेंगे। जब स्थानीय स्तर पर उत्पादन और प्रसंस्करण होगा तो आय गांव में ही घूमेगी। जब महिलाएं कमाएंगी तो परिवार मजबूत होगा। जब किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाएगा तो खेती के प्रति उसका विश्वास बढ़ेगा। और जब गांव आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी जब आत्मनिर्भर गांव बनेंगे। और आत्मनिर्भर गांव की आधारशिला है ग्रामीण उद्यम। हमें अपने गांव में यह सोच विकसित करनी होगी कि जो संसाधन हमारे पास हैं उन्हीं से अवसर भी पैदा किए जा सकते हैं। खेत, पशुधन, पेड़ पौधे, स्थानीय कौशल, परंपरागत खाद्य पदार्थ, हस्तकला, श्रम शक्ति, महिला समूह, युवा ऊर्जा, ये सब गांव की पूंजी हैं। जरूरत है इन्हें पहचानने की, जोड़ने की और उद्यम में बदलने की। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गांव का विकास केवल सरकारी प्रयासों से नहीं होगा बल्कि ग्रामीण समाज की भागीदारी, जागरूकता, नवाचार और उद्यमशीलता से ही होगा। यदि हर गांव अपने संसाधनों और अपनी जरूरतों के अनुसार छोटे छोटे उद्यम विकसित करें तो वह केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, सामाजिक रूप से भी

0: सशक्त होगा। यही सशक्त गांव आगे चलकर सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि गांव को केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि उत्पादक, उद्यमी और आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित करेंगे। ग्रामीण उद्यम के माध्यम से रोजगार, सम्मान, समृद्धि और स्वावलंबन का नया अध्याय लिखेंगे।
1: अपूर्व भैया,
2: हाँ कंचन,
1: डॉक्टर सुरेश सिंह भैया जो है ग्रामीण उद्यम से सशक्त होते गांव विषय पर जानकारी दें और ग्रामीण क्षेत्रन के खातिर बनाई गई योजना कौनी है और लघु और कुटीर उद्योग कैसे कीन जाए, खेती पाती का कैसे बढ़ावा दीन जाए, खाद्य प्रसंस्करण कैसे तैयार कीन जाए, ये कईयों क्षेत्रन पर जो है विस्तार तिहाँ जानकारी दें और पंचन के यहाँ जागरूक कहें, ये के खातिर डॉक्टर सुरेश सिंह भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इसमें बारिश हो रही है, अपने पंच भाई खेतन माँ धान लगाओ तो कोई देखो सवेरे पहुँच जात, कोई दोपहरिया माँ, कोई संझा कहावत हैं, और पूरा घर परिवार मिलकर देखो एक उत्सव मनावा जा रहा है। तो ये देखो अपने

0: नया अध्याय लिखेंगे।
1: अपूर्व भैया,
2: हाँ कंचन,
1: डॉक्टर सुरेश सिंह भैया जो है ग्रामीण उद्यम से सशक्त होते गांव विषय पर जानकारी दें और ग्रामीण क्षेत्रन के खातिर बनाई गई योजना कौनी है और लघु और कुटीर उद्योग कैसे की जाए, खेती पाती का कैसे बढ़ावा दी जाए, खाद्य प्रसंस्करण कैसे तैयार की जाए, ये कईयों क्षेत्रन पर जो है विस्तार यहाँ जानकारी दें और पंचन के यहाँ जागरूक कहें, ये के खातिर डॉक्टर सुरेश सिंह भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो इसमें बारिश हो रही है, अपने पंच भाई खेतन माँ धान लगाओ तो कोई देखो सवेरे पहुँच जात, कोई दोपहरिया माँ, कोई संझा कहावत है, और पूरा घर परिवार मिलकर देखो एक उत्सव मनावा जा रहा है। तो ये देखो अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी एक रोपनी गीत सुन लीन जात है, श्रद्धा शुक्ला व मुस्कान तिवारी के स्वर में।
1: हाँ भैया,

0: हाँ आकांक्षा,
1: काल बहुत नेक बारिश पई रहा है और पंच भाई जो को जो है धान लगावा चाहते वे के खाते यो जो है समय काफी उचित है। कईयो पंच भाई आधे खाते में यहाँ धान लगा चुके हैं और कईयो पंच भाई जो है धान की रुपाई की तैयारी कर रहे हैं। और आजकल तो पंच भाई जोनी मुख्य फसलें होती हैं जैसे गेहूं धान खाली इन्हें पर निर्भर नहीं रहा थे और भी कईयो जो है फसलें लगावे का प्रयास करते हैं।
0: बिल्कुल सही कहे हो, लेकिन जब देखो बात धान की चल रही है तो जो पंच भाई धान लगाए रहे हैं वो खास करके कुछ चीज़ों का देखो ध्यान रखें। जो रुपाई चल रही है, एक तो खेत की मेड़े अपनी ऊंची कर लें,
1: कहा
0: है कि जो बारिश का पानी है वो बाहर न जा पाए। और अगर जो एक फिट की मान लिया मेड़ बनाए लेते हैं ऊंचाई में यहाँ, थोड़ी मोटी रखें मेड़, तो यू भविष्य के लिए भी बहुत फायदे की चीज़ हो सकत है। दूसरी चीज़ तमाम पंच भाई देखो हैं यूँ थोड़ा देख लें कि जो बेरन है उनकी की रुपाई करनी है वह ज़्यादा पुरानी न हो पावे और न ज़्यादा नई हो पावे। जो इनका मानक है, जो अनुभवी किसान भाई बतावत हैं जो या विशेषज्ञ भैया बतावत हैं, वह है दिन के अंतराल की वह होए। इससे हमारे देखो जो पौध होते हैं उमा पूरी तरह से मजबूत हो के उनके प्रतिशत ज़्यादा रहते हैं। एक चीज़ और है कि जो रुपाई कीन जाते हैं, अगर जो बढ़िया खेत है समतल है और बढ़िया पलेवा उसका कीन गवा है, तो एक पेड़ के साथ एक बेरन के साथ दो ही बेरन लगा सकते हैं, ज़्यादा तीन या चार न लगावें। इसे कहूँ ना कहूँ नुकसान भी होते हैं और अनावश्यक रूप से न घना हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो एक निश्चित दूरी होते हैं वही दूरी पर और लाइन तय लगावें। और एक आकांक्षा एक चीज़ और आवत है, देखते अगर मान लिया हमारा खेत पूरा पूरा तरीके समतल लाए है, एक तरफ ढलान है, तो हुआ पर वही खेत के यहाँ हम दो भागन में यहाँ सुविधा अनुसार बांट सकित है। इसे जो वही का समतल समतलीकरण जी का हम कहते कहूँ ना कहूँ वो स्तर पर्याप्त रूप में यहाँ आ जाते हैं। और जब मेड़ बीच में नए पड़ी होते तो एक ढलान रूप में यहाँ रहते, जिसे भविष्य में भी देखो सिंचाई यदि करक पड़ते है तो उम्मा बराबर पानी ना लग पाओ।
1: बिल्कुल भैया, कहूँ के जो ब्याण रहते हैं धान के जो पौध रहते हैं वे ज़्यादा पानी मिल जाते हैं और कहूँ के यहाँ पानी नहीं मिल पावत है। तो जो आप समतलीकरण खेत के समतलीकरण के बाद कहें तो ये एक बहुत बढ़िया सुझाव दी हो आप कि जो खाली स्थान है जो खलिया है जमीन वे के जो अगर बीच में यहाँ विका विभाजित कह दी जाए मेड़ के माध्यम से यहाँ, तो वे का जो है विकास जो उनकी मिट्टी के हिसाब से यहाँ माटी के हिसाब से यहाँ हम लोग जो है वे का पानी उपलब्ध करा सकित हैं।
0: और एक चीज़ है जो तमाम जमीन ऐसी है देखो जो कि पहले उसर रहा है, अब कृषि लायक उसका बनावा गवा है, किसान भाई मेहनत करके उसका बनाई नहीं, हुआ पर अगर जो हमारे किसान भाई लगावक चह रहे हैं धान की रुपाई करक चाहते हैं, तो हुआ पर थोड़ा हुई जहाँ दो पेड़ लगाना है हुआ हुई तीन या चार पेड़ का प्रयोग कर दें। इसे यूँ होता है कि जो मान लिया हमारी फसल सूख रही है या खराब हो रही है कुछ एक बेरन, तो उसकी पूर्ति हो जाती है और हुआ पर ज़्यादा जगह या ज़्यादा दूरी पर न लगावें। अपेक्षाकृत जो अच्छे खेत हैं उनकी अपेक्षा हुआ पर सघनता उम्मा हुई खेत में यहाँ लावें, यह एक तरीका हो सकता है हमका अच्छी फसल उत्पादन का। और जो खास करके हम किसान भाई हमारे हमेशा करत रहते हैं कि यह वो समय होते तमाम पंच भाई जो हैं किसान भाई वे जो खरपतवार की नियंत्रण व्यवस्था होते हैं उसका साथ है मैं उसका सुचारू रूप से चालू कर देते हैं। कभी कभी देखो हम लोग देखे थे पलेवा के समय ही दवाई डाल देनी जाती हैं, या तो फिर खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर जब फसल लग चुकी होते हुए के 10-15-20 दिन बाद भी तमाम ऐसी देखो औषधियाँ होती हैं जिनका हम लोग उपयोग करके जो इम्मा खरपतवार होते हैं उन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं।
1: बिल्कुल भैया, जो अब जो है जो दिन धान वन रुपाई किन जाते हुए के 2-4 दिन के अंतराल में यहाँ जो खरपतवार नासी जो दवाएँ रहती हैं उनका जो विशेषज्ञ भैया लोगों के यहाँ जानकारी लेके उनका छिड़काव किए जा सकते हैं। और अपन पंच भाई भैया धान की रुपाई जो मुख्य फसलें रहती हैं उनकी रुपाई तो जो करते हैं और साथ ही साथ में यहाँ अपन जो पंच भाई हैं वे जो कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग तो जो है विविध जो है प्रकार के जो खेती अपनावते हैं, चाहे वो गैर व्यावसायिक हो चाहे व्यावसायिक हो। हमें कहा है क्या मतलब है कि कृषि वानिकी कहीं अपनावते हैं, अभी अपने ख्यातन के जो म्याड़े रहते हैं वहू कहीं ख्यात का तो प्रयोग करते हैं जो ख्यातन की म्याड़े रहते हैं उन्होंने क्या प्रयोग कई डालते हैं।
0: बिल्कुल देखो खेत की मेड़ का हमका प्रयोग करना चाहिए, इसे एक न तमाम लाभ हैं। एक तो ये तुम अपने खेत के मेड़ पर कोई भी पौधा लगाए रहे हो चाहे वो फलदार हो या कोई औषधीय पौधा हो या

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: अपूर्व

0: कोई इमारती लकड़ी वाला पौधा है, अगर जो ऐसे पेड़ लगा रहे हो तो कहूँ ना कहूँ ये एक, जैसे मान लिया तुम सागौन के पेड़ लगाए दिए हो या शीशम लगाए हो, तो आवे वाले 10 या 15 साल बाद वो एक मुस्त रकम तुमका मिल सकते है। एक चीज़, दूसरी चीज़ यू होते है, देखो आकांक्षा, हम लोग देखे थे कि अपने गाँव में अब तो बहुत कम रहेगा है, लेकिन इससे पहले 4-6 साल पहले हमारे यहाँ गाँव में जब झगड़ा हो रहा है तो मेड़े कलई के होत रहा है कि वो उंगेस पता लगा झार रहे हैं, वो उंगेस झार रहे हैं, इसके बाद मेड़ गायब हो गए और झगड़ा चालू होगा। लेकिन जब पेड़ लगा दिए जाते हैं तो एक सीमा रेखा भी बंध जाते हैं, यह एक बहुत बढ़िया और मजबूत तरीका है अपनी मेड़ सुरक्षित करेगा,
1: और लड़ाई ते बचेगा।
0: लड़ाई से बचेगा। और तीसर चीज आ जाता है कि जो अनावश्यक कबों को हम देखे थे कि जो आवारा पशु होते हैं यहूँ हमारे फसल का नुकसान पहुंचा देते हैं अगर जो उनका अवसर मिल जाए, लेकिन अगर जो हमारे कोई पेड़ लगे हैं 4-6-10 साल पुराने हो गए हैं तो वो घेरा ऐसा बन जाते हैं कि पेड़ उनके अंदर, खेत के अंदर फिर हमारे वे जो आवारा पशु हैं वह ना आवत हैं, और इसे भी अपन देखो सुरक्षा
1: हाँ,
0: फसल का होता
1: और
0: है।
1: कायद भी है, जो आवारा पशु होते हैं उनका जो ध्यान आकर्षण रहते हैं वो पौधे पर हो जाते हैं, तो भी खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पावते हैं, तो एक खातिर हमारे जो फसल रहती खेत के वो काफ़ी सुरक्षित रहते हैं। और भैया एक लाभ तो आप कहीं गिना डाल रहे हो, एक साथ ही साथ जो भैया होते अपन माटी जो कृषि वानगी तो यहाँ अपनी माटी में सुधार होता है, पर्यावरण का संरक्षण होता है, और साथ में जो अपन पंच भाई लोग हैं वे ख्यात म्याड़ पर कई प्रकार के जो है औषधि पौधा और जो है पेड़ जो और कई प्रकार के जो पौधा लगावते हैं, तो वही ते लकड़ी मिलत है और वी वेका बेच के यहाँ अपनी आय में यहाँ बढ़ोतरी कर सकते हैं, और इतने कई लाभ है भैया।
0: बिल्कुल सही कहा। तो निश्चित रूप से देखो ये मौसम भी बहुत बढ़िया चल रहा है और हमारे किसान भाई कृषि वानिकी की अपनाए भी रहे हैं, और निश्चित रूप से जो उनके पास जगह है उनका सदुपयोग करे हैं और पेड़ लगे हैं, और ऐसे पेड़ जो कि पर्यावरण का सपोर्ट करत हों, जो उनके साथ चले। कुछ कभो कभो देखो हम लोग यूँ होते हैं कि मान लिया हमका नाए जानकारी है और कहूँ ना कहूँ वो पेड़ हमारी फसल का या अगल बगल की फसल का या मान लिया हमारी माटे का नुकसान पहुँचा रहा है, तो ऐसे पेड़ से थोड़ा बचाव करें कि हाँ चाहिए ऐसे पेड़ जो कि फल देते हैं, हमका ऑक्सीजन देते हैं, हमारी मृदा का सुरक्षित करते हैं, ऐसे पेड़ का बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से पूरी मात्रा में लगावना चाहिए।
1: हाँ भैया, जैसे एक कृषि वानिकी का नुकसान तो नहीं कहा जा सकता, एक एक पौधा अधिकांश जो अपन पंच भाई लगावते हैं वे क्या नाम है यूकेलिप्टिस, तो अधिकांश जो है इका जो है लकड़ी के और जो है व्यापार की दृष्टि से यहाँ का लगा तो देती हैं, कि जो लेकिन जो खासकर इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वे अपनी जो माटी के उर्वरा शक्ति रहते हैं वे का काफ़ी नुकसान पहुँचाती हैं, और साथ ही साथ जो ज़मीन के जल स्तर रहते हैं वे का काफ़ी जो है वे का ये पौधा कहीं काफ़ी जल चाहिए, तो ये वो पानी के जो जल रहा जल के मात्रा रहती धरती के वह कहीं काफ़ी वो अपनी तरफ खींचे थे, तो यो अपने पर्यावरण के खातिर प्रकृति के खातिर ये नुकसानदायक है, तो हम लोगों के यहाँ ये पौधा तो यहाँ लगावे कहीं बचे चाहिए। और भैया जो अपनी ख्यातन के मैडन पर जो नहीं पौधा लगा दिए जाते हैं उनके कई बार जो हमारा खेत काफ़ी जो उपजाऊ नहीं रहा है तब हम वे की जो पत्ती गिरती हैं पौधन केरी तो वे ते खाद बन जाते हैं, होम्योस पैदा हो जाते हैं, तो वे की खातिर जो हमारा माटी रहते हैं खाद के वह काफ़ी उपजाऊ हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, देखो बातें तो बहुत हैं इसके लिए संदर्भ में तुम्हारे पास, लेकिन आओ एक भेंट वार्ता सुन ली जाए, क्योंकि धान की हम लोग बात कर रहे हैं ना, धान बहुत महत्वपूर्ण फसल है, तो और खरपतवार के प्रबंधन के बारे में जानकारी भी है, तो या भेंट वार्ता सुन ली जाए, धान की रोपाई एवं खरपतवार प्रबंधन इसके वार्ताकार हैं डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह, और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
1: हाँ, तो सुना जाए या भेंट वार्ता।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान में लगे हैं, खरीफ में जहाँ धान की रोपाई कर रहे हैं तो कौन सी तकनीक अपनाएं, और जो बिन बुलाए मेहमान आपके खेत में उगाते हैं यानी खरपतवारों का प्रबंधन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर केएम सिंह साहब, जो वरिष्ठ प्रसार अधिकारी हैं प्रसार निदेशालय आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम खेती किसानी में आपका।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों।
2: ये बताएं कि जहाँ धान की रोपाई चल रही है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
3: सबसे पहले किसान भाई बहनों को यह जानने की ज़रूरत है, जब हम अपने खेत के पानी भर करके उसमें कदेर कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारे जो किसान भाई लोग अपने जो रुपाई के समय प्रयोग होने वाली उर्वरक की मात्रा है या तो पानी भरने से पहले

0: डाल देते हैं या रुपाई करने के बाद डालते हैं। तो आपको ये जानने की जरूरत है, जब हम कदेर कर लेते हैं, जब हमारा गंदला पानी बैठने लगता है, उस समय हमको जो हमारी संतुलित की गई उर्वरक की मात्रा है उसको प्रयोग करना चाहिए। यदि संभव हो तो उसके साथ आप जो है या तो जैविक खाद अथवा हमारी जो कंपोस्ट खाद या हमारे गोबर से बनी हुई खादों का भी अगर सम्मिश्रण कर लेंगे तो हमारे धान का उत्पादन काफ़ी अच्छा और अधिक मिलता है।
1: जहाँ हरी खाद की पलटाई के बाद धान की रोपाई करनी है, तो हरी खाद की पलटाई और धान की रोपाई में क्या ध्यान रखें?
0: जहाँ किसान भाई हरी खाद की पलटाई करते हैं, पहले तो हमारी जो हरी खाद है लगभग 35 से 45 दिन की होनी चाहिए, यानी उसमें नोडुलेशन हो जाना चाहिए, और रुपाई से 3 से 4 दिन पहले अगर हम उसकी पलटाई करते हैं तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। यदि हम बहुत आगे कर देते हैं तो अब भी उतने नहीं रहते, तो इसलिए हमको जो हरी खाद की पलटाई है, चाहे रोटावेटर या हैरो के माध्यम से, हमको रुपाई से 2 से 3 दिन पहले ही करना चाहिए।
1: सड़ान जल्दी हो हरी खाद की, इसके लिए कोई और उपाय है डॉक्टर साहब?
0: इसके लिए हमारे किसान भाई थोड़ी सी यूरिया की मात्रा रुपाई के समय डाल देंगे तो उससे हमारे जो सड़ने की प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है और हमारा डंठल आसानी से सड़ जाता है। लेकिन किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ढैंचे के अंदर या सनई के अंदर रेशा मजबूत नहीं बनने पाए, उससे पहले हमें धान अपना जो हरी खाद है उसको पलट देंगे तो हमको जो है उसका अच्छा लाभ मिलेगा।
1: तो प्रति एकड़ हरी खाद की पलटाई से कितनी जैविक कार्बन की मात्रा मिल जाती है खेत को डॉक्टर साहब?
0: अगर हम यूरिया के रूप में अगर उसे कन्वर्ट करते हैं, लगभग 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है हमारी जो नत्रजन का बचत होती है, और अगर हम इसे यूरिया के रूप में बात करेंगे 78 से 100 किलोग्राम हमारी यूरिया की मात्रा की बचत होती है।
1: और खेत की ताकत यानी भूमि की जैविक दशा, रासायनिक दशा और भौतिक दशा तीनों सुधरती है?
0: जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे जो ये हरी खाद होती है, हरी खाद जो है हमारे ढैंचा की होती है, इसका पीएच मान कम होता है। जो हमारी सोडिक सॉयल होती है, लबड़ी भूमि होती है, अगर उसमें हम हरी खाद का प्रयोग करते हैं तो हमारा पीएच मान सुधार होता है, ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, साथ ही साथ जो जमीन में पड़े हुए पोषक तत्व तो उनकी उपलब्धता बढ़ जाती है, और जो हमारे 78% नत्रजन वायुमंडल में उपलब्ध है उसके लिए जो बैक्टीरिया हमारे जमीन के अंदर रह जाते हैं वो अवशोषित करके जो भी फसल हम लगाते हैं उसको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो जमीन है उसकी भौतिक दशा और जैविक दशा एवं रासायनिक दशा तीनों में सुधार काफ़ी अच्छा होता है।
1: डॉक्टर साहब, धान की रोपाई में कौन कौन सी बारीकी है? प्रति इकाई क्षेत्र में कितनी पौध हो, एक जगह कितनी पूंजे लगें?
0: यदि हम धान का अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें धान की जो नर्सरी है वो करीब 20 से 22 दिन की होनी चाहिए, और किसान भाइयों को ये ध्यान देना है एक जगह लगाने में एक या दो ही पौधा का प्रयोग करें। तीसरा ये है कि जो कम से कम इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 21x15 सेंटीमीटर रखते हैं तो हमको बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। जिसे अब एक और पद्धति डेवलप हुई है, वैज्ञानिकों ने देखा है, यदि हम 5 से 6 लाइन के बाद एक लाइन हम मिस कर देते हैं, फिर 5 से 6 लाइन लगाते, फिर एक लाइन मिस कर देते, तो उसमें क्या है हवा का आवागमन बहुत अच्छा होता है आगे जाके, उससे लगता है कि हमारा ये जो लाइन गायब हो रही है उससे हमारा उत्पादन काफ़ी बढ़ जाता है।
1: तो प्रति इकाई क्षेत्र में लगभग 50 से 55 पूंजे हों?
0: हाँ, लगभग 50 से 55 पूंजों की जरूरत होती है, और करने के लिए किसान भाइयों को मैंने बताया 20 से 15 सेंटीमीटर, 20 लाइन से लाइन की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ ऊसर जमीन है या सुधरी हुई बीमार जमीन है, तो वहाँ क्या एक जगह पौधों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी?
0: यदि हम जहाँ प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स यानी जो ऊसर वाली जमीन होती है या सेलाइन सॉइल्स होती है, वहाँ पे दो चीज़ों किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारी पौध की जो उम्र है 25 दिन से ऊपर की, यानी 25 से 28 दिन की होनी चाहिए, और जहाँ हम एक या दो पौध लगाते उसकी जगह पर 3 से 4 पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी टिलरिंग की समस्या होती है, एक तो टिलर्स और मरने की समस्या होती है, उसको वो रिकवर करके और आपको एक अच्छा उत्पादन देते हैं। साथ ही साथ पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी थोड़ा कम कर देना चाहिए, जिससे कि फुटाव उसमें कम आता है, लेकिन हमारा जो इफेक्टिव जो बालियाँ होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।
1: धान की फसल में दोनों तरह के खरपतवारों की समस्या होती है डॉक्टर साहब, चाहे धान की सीधी बुआई करें या धान की रोपाई करें, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले, तो वो कौन कौन से खरपतवार हैं और उनका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, किन अवस्थाओं पर?

0: जैसे कि आप जानते हैं धान में सामा आपकी जो है कई तरीके की चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार आते, लेकिन धान में कई तरीके की हमारे खरपतवार नाशी आती है। जैसे यद किसान भाई जब हम धान की रोपाई कर रहे हैं और तुरंत 24 घंटे के अंदर यद हमारे पास खरपतवार नाशी उपलब्ध है, तो हमारा ब्यूटाक्लोर बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशी है। इसकी मात्रा 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जब हम रोपाई कर दें उसके बाद इसको पूरे खेत में फैला देना चाहिए।
1: कितना देर के अंदर?
0: ये 24 घंटे के अंदर फैला देना चाहिए। कभी कभी किसान भाई ज़्यादा लेट कर देते तो अब इसका प्रभाव उतना नहीं रहता है, तो इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए जो धान के अंदर आखिरी ऑपरेशन हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर हमको कर देना चाहिए। दूसरा हमारा पेटिला क्लोर है, इसकी मात्रा 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं। ये भी पूरे खेत में फैलाते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर इसको कर सकते
1: यानी आधा
0: हैं
1: लीटर प्रति एकड़ के।
0: प्रति एकड़ के हिसाब से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा बिसपायरबिक सोडियम, ये भी जो है काफ़ी अच्छा हमारा जो खरपतवार नाशी है। इसमें क्या है, जब हमारा 15 से 16 दिन के आसपास या 18 दिन के आसपास होता है तो हमारे धान के साथ साथ खरपतवार जम चुके होते हैं, तो उसके लिए क्या है, जब खेत में नमी हो उस समय 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका हम स्प्रे करा देते हैं, फिर 24 घंटे बाद पूरे खेत में पानी भर दें, तो उसके बाद देखेंगे कि आपके जो भी खरपतवार है काफ़ी अच्छे से नियंत्रित हो जाते। लेकिन हमने देखा है कि आजकल जो हमारे धानों में कई तरीके की घास रह जाती हैं, तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया नया खरपतवार नाशी आया है, इसे साइलोभॉप ब्यूटाइल पेनोक्सोलम है। इसकी मात्रा जो है हमें 800 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है, और ये लगभग जब धान की रोपाई हो जाती है 15 से 20 दिन के आसपास इसका हम स्प्रे कर देते हैं और फिर इसमें भी खेत में पानी भर देते, हमारे जो भी खरपतवार होते हैं सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। विशेष करके जहाँ पे हमारे चौड़ी पत्ती वाले, आपने देखा होगा 1000 दाना के विशेष करके धान में आता है, तो 1000 दाने की अगर समस्या है तो उसके लिए 240 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम स्प्रे कर सकते हैं 35 दिन के आसपास, या फिर हमारा मेट सल्फ्राइड मिथाइल जो आपको बाजार में बड़े आसानी से मिल जाता है, ये 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 25 से 30 दिन के आसपास इसका स्प्रे करते हैं। तो इस प्रकार से हम चौड़ी पत्ती वाले और सकरी पत्ती वाले सभी प्रकार के खरपतवारों को हम नियंत्रित कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जो भी खरपतवार नाशी रसायन है, क्या इनका प्रयोग बालू में मिला करके करें या पानी में घोल बना करके छिड़काव करना प्रभावकारी होगा?
0: विशेष रूप से जो हमारे प्री इमर्जेंस खरपतवार नाशी यानी जमाव से पूर्व जो खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं, जैसे ब्यूटा क्लोर है, पिटिला क्लोर है, इनका प्रयोग तो बालू में मिला के कर सकते हैं। जब हमारे खरपतवार जम जाते हैं उसके बाद हम किसी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी दशा में हमको जो हमेशा स्प्रे के माध्यम से करना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए जो स्प्रे मशीन हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें फ्लैट फैन नोजल का हमको प्रयोग करना चाहिए। बूंद का साइज होता है और जो हमारे खरपतवार नियंत्रण करने के लिए जो बूंद का साइज चाहिए वो उसी तरीके से होता है, और इसके में कम और ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, एक समान रूप से पूरे खेत में
1: फुहारा पहुंचता है,
0: फुहारा पहुंच जाता है जिससे हमारे खरपतवार अच्छे से नियंत्रित हो जाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान की रोपाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विश्वविद्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9301543939, 9307015439।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का धान की रोपाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: सबसे महत्वपूर्ण बात है किसान भाइयों को समय का विशेष ध्यान देना चाहिए, जो भी हमारे खरपतवार नाशी है और जो समय उसके लिए निर्धारित किया गया उसी समय हमें इसको प्रयोग करके अच्छे से लाभ लेना चाहिए।
1: डॉक्टर KM सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और धान की रोपाई कैसे करें किसान भाई बहन और खरपतवारों का प्रबंधन इस समय कैसे करें धान की फसल में, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अपूर्व भैया,
3: हाँ कंचा,
2: डॉक्टर कृष्ण मोहन सिंह भैया, धान की रोपाई एवं खरपतवार प्रबंधन विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दें। डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया इनते बहुत अच्छे तरह जानकारी लहन, एक ही खाते दोनों लोगों के यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
3: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो एक बार समय हो चुका है फिर से पंच बहन का सुनाया जय लोकगीत, तो देखो आला सुन ले इंदल हरन, इके देखो स्वर दिन है राजकुमार यादव और उनके साथी भैया।

बुझा के धनियो मछरे दिन के लीखो प्याज भराय पता गुड़े का लागे ना आगे हालु कहा ना जाय माहिल बोलने लागे भैने मानव कहा हमार करो तैयारी तुम महुबा के हम दादा कदी है चलहार हरे रणबाहन के महुबा धुरा दबाई में जाए हड़ताल के रुआ की पाए न मा भौजे।

0: भैया
1: देखो बहुत बढ़िया लोकगीत रहा है सब।
0: हाँ, आला बड़ा अच्छा
1: बिल्कुल तुम्हारी नींद चली गई है। तो देखो का मौसम की जानकारी है कुछ?
0: हाँ भैया, मौसम संबंधी जानकारी है, भारत मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ केंद्र से यह जानकारी प्राप्त हुई है। और इसके अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई संभागन में गरज चमक के साथ भारी वर्षा जो हुई की संभावना है।

0: मौसम संबंधी यह चेतावनी जो है जारी की गई है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई संभागन में वज्रपात के साथ तेज बरखा होने की संभावना है। मुला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खातिर जो है कोनी चेतावनी जारी नहीं की गई है और पंच भाई लोगों तो यहाँ आग्रह है कि रोपनी के समय यदि जो है बिजली चमक रही है, बरखा हो रही है, तो आप अपने आप का सुरक्षित रखो, अपने जानवरों के यहाँ छाया में ले जाओ।
1: बिल्कुल, देखो मौसम का ध्यान में रख के हमारे जो किसान भाई हैं वो अपन कार्यक्रम आगे बढ़ाई हैं। और देखो जब बात आवत है अपने कार्यक्रम की, तो कल के कार्यक्रम की जानकारी हम लोग रोज दे थे। इसे देखो हमारे जो पंच भाई हैं नियमित रूप से वो देखो सुनत हैं कार्यक्रम का और रुचि लेते हैं। तो कल के कार्यक्रम में लोकायतन कार्यक्रम में पंच भाई सुनिए लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ सांवली सूरत और इनके कहानीकार हैं योगेंद्र कुमार मधु भैया। खेती किसानी कार्यक्रम में किसान भाई सुनिए सफलता की कहानी गन्ना उत्पादन, इनके वार्ताकार हैं अचल कुमार मिश्र भैया, इनसे भेंट किन्हीं हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो ये तो रहे देखो कल के कार्यक्रम।
0: हाँ भैया, अचल कुमार मिश्र भैया कल गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में यहाँ अपनी पाई सफलता गई हैं, डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया तो यहाँ साझा करिए, तो कल जाऊँ हम सब लोग उनके सफलता की कहानी का सुनबे।
1: बिल्कुल, अपने कार्यक्रम का पता भी बता दो पंचमहल से।
0: हाँ भैया, कार्यक्रम का पता है लोकायतन व खेती किसानी द्वारा केंद्र निर्देशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन कोड 226001 और ई मेल आई डी है farm@homeholkeo@gmail.com।
1: बिल्कुल, देखो ये तो रहा मेल, तो निश्चित रूप से पंच भाई पर अपन मेल कर सकते हैं। और यह के साथ साथ अपने कार्यक्रम का समय भी समाप्त हो रहा है, तो पंच भाई से लेन जय विदा।
0: जय हिंद।

0: लोकायतन एवं खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
1: अच्छी होती है प्रगति उतनी ही।
0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्री राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण अभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश में कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी वर्षा की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मोनिका चौहान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र में विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से प्रगति होगी और इससे देश में समृद्धि आएगी।
1: स्पीड जितनी अच्छी होती है कनेक्टिविटी के लिए, प्रगति उतनी ही तेज होगी। और प्रगति होगी तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति की भी, समाज की भी और देश की भी समृद्धि होगी। समृद्धि होगी तो खुशहाली होगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर जिले के रामकोला विकास खंड के

0: ये टिकुआटार में आयोजित एक कार्यक्रम में कुशीनगर, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्रों की 525 करोड़ रुपए की लागत वाली 464 विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कुशीनगर को इंसेफेलाइटिस से मुक्त कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, साथ ही मुसहर जाति के लोगों को आवास के साथ सरकारी योजनाओं का लाभ देकर जीवन को बेहतर बनाया है। श्री योगी ने कहा कि कुशीनगर भी बाकी जनपदों के साथ विकास की यात्रा में सहभागी बन रहा है। जल्द ही कुशीनगर को एयर कनेक्टिविटी के जरिए जेवर एयरपोर्ट समेत अन्य राज्यों से जोड़ा जाएगा।
1: कुशीनगर को बेहतरीन सेवा हम देने जा रहे हैं और हम तो जेवर के साथ भी कुशीनगर को जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, गया के साथ जोड़ने जा रहे हैं। अच्छे और नए एयरक्राफ्ट कुशीनगर की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। अब हमारे कुशीनगर के नौजवानों को अपनी खेती को आधुनिकता के साथ जोड़ने के लिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं, कुशीनगर में ही हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दे चुके हैं, कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में ही बन।
0: अयोध्या में आज श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में मंदिर निर्माण से जुड़े विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में बाउंड्री वॉल, ट्रस्ट भवन, गेट नंबर 3, अतिथि गृह, ऑडिटोरियम समेत अन्य निर्माण कार्यों की स्थिति पर चर्चा हुई। इन सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए उनकी टाइमलाइन भी तय की गई। वहीं कल होने वाली बैठक में 20 दीर्घाओं वाले राम कथा संग्रहालय के तकनीकी पहलुओं और वीडियो प्रस्तुतियों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पूर्व श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि 30 जुलाई तक राम मंदिर के सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे होने का लक्ष्य है। उन्होंने मंदिर चढ़ावा गबन मामले पर कहा कि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी, आने वाले दिनों में व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
2: यह अपने में एक तरीके का कलंक है, एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो यह व्यवस्था का एक प्रश्न है, व्यवस्था में सुधार होगा मुझे पूरा विश्वास है और इस प्रकार की घटनाएं दोहराई नहीं जाएंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर से प्रदेशव्यापी पौधरोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। श्री योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाएंगे। पौधरोपण महाअभियान के जरिए प्रदेश सरकार ने इस बार 35 करोड़ पौधरोपण करने का लक्ष्य तय किया है। इस अवसर पर जनसभा कर वो प्रदेशवासियों से पौधरोपण महायज्ञ में हिस्सेदारी करने का आह्वान करेंगे। अभियान में प्रदेश के सभी विभाग, स्कूल, कॉलेज और संस्थान हिस्सा लेंगे। पौधरोपण महायज्ञ के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर गोरखपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: पौधरोपण के इस लक्ष्य में गोरखपुर को 55,28,600 पौधरोपण की जिम्मेदारी मिली है। सभी पौधशालाओं में गुणवत्ता युक्त पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गई है। पौधों के बेहतर विकास एवं उत्तर जीवित के लिए चिन्हित रोपण स्थलों पर एडवांस सॉइल वर्क के अंतर्गत गड्ढा खुदाई, टॉप सॉइल की व्यवस्था, पौधरोपण के स्थलों का विकास, पौध संरक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं तथा अन्य तैयारियां पूरी है। कुल 27 विभागों के सामंजस्य से यह पौधरोपण किया जाएगा। इसमें गोरखपुर के वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पर्यावरण विभाग, पंचायती राज विभाग व राजस्व विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीएन चौबे, गोरखपुर।
0: वहीं उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि इस अभियान में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 20 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर लखनऊ आएंगे। भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने बताया कि श्री सिंह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय केजीएमयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक

0: 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर कहा कि जनसंख्या में संतुलन ही समृद्ध समाज का आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लोगों से जनसंख्या संतुलन और परिवार कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प लेने की अपील की। इसी क्रम में पीलीभीत जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. बीसी पंत ने एक जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगामी श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से विभिन्न जिलों में प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वाराणसी जनपद में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल और जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने आज संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मार्ग पर की जा रही तैयारियों को बारीकी से देखा और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा से जुड़े सभी बिंदुओं की समीक्षा की। अधिकारियों ने निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सिद्धार्थनगर जिले में आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 146 नवजोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार जनता के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित है। रामपुर जिले में आज एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा तब हुआ जब टांडा क्षेत्र में एक कार मक्के से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई। कार में 7 व्यक्ति सवार थे, जिनमें से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जौनपुर और सोनभद्र में 10 से 12 जुलाई 2026 तक आयोजित हो रही 43वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोनल बैडमिंटन और टेबल टेनिस क्लस्टर प्रतियोगिता में जौनपुर पुलिस ने शानदार प्रदर्शन किया है। जौनपुर के अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार ने टेबल टेनिस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई जनपदों में हुई भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लखीमपुर खीरी के पलियाकला में शारदा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 757 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 24 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कुशीनगर को दी 525 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। अयोध्या में आज हुई श्रीराम मंदिर निर्माण समिति की बैठक। 30 जुलाई तक सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे करने का लक्ष्य। समिति अध्यक्ष नृपेन्द्र मिश्रा ने चढ़ावा गबन मामले पर कहा, भविष्य में नहीं होगी ऐसी पुनरावृत्ति। राज्य में कल मनाया जाएगा पौधरोपण महाअभियान। एक दिन में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और प्रदेश के कई जनपदों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी की भारी बारिश की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विज्ञान जगत।
3: नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है कार्यक्रम विज्ञान जगत में। मैं हूं प्रवीण। आज के इस अंक में हम जानेंगे विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह हुए गतिविधियों के बारे में और सुनेंगे वर्ष 2047 का संकल्प, कैसे ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है भारत विषय पर भेंटवार्ता। लेकिन सबसे पहले विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण के क्षेत्र में इस सप्ताह क्या कुछ हुआ, जानते हैं शिवा राकेश से।
4: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल यानी अंतरिक्ष यात्रियों के कैप्सूल के मुख्य पैराशूट का एक महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इसरो ने बुधवार को बताया कि ये परीक्षण मंगलवार को मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के ड्रॉप जोन में किया गया। इस परीक्षण का उद्देश्य ये जांचना था कि गगनयान के पहले मानव रहित मिशन G1 के दौरान अधिकतम भार की

0: थी में मुख्य पैराशूट सुरक्षित और तय मानकों के अनुसार काम करता है या नहीं। गगनयान मिशन के लिए मुख्य पैराशूट की विश्वसनीयता जांचने के उद्देश्य से किए जा रहे एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षणों की श्रृंखला में ये पांचवा परीक्षण था। इस परीक्षण की सफलता से पहले मानव रहित गगनयान मिशन जीवन के लिए मुख्य पैराशूट प्रणाली की क्षमता और विश्वसनीयता पर भरोसा और मजबूत हुआ है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च से ये पता चला है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद शिव शक्ति पॉइंट की मिट्टी का सीधा संबंध धरती पर मिले सबसे पहले चंद्र उल्कापिंड से है। वैज्ञानिकों ने जब चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट यानी शिव शक्ति पॉइंट के आसपास की मिट्टी और चट्टानों के डेटा का मिलान धरती पर मिले पहले प्रमाणित चंद्र उल्कापिंड कैलका लॉन्ग क्रीक की लैब रिपोर्ट से किया तो दोनों की खनिज संरचना में हैरान देने वाली समानताएं पाई गईं। इस बड़ी खोज से अब वैज्ञानिकों के लिए अंतरिक्ष से सीधे धरती पर गिरने वाले उल्कापिंडों के सटीक मूल स्थान का पता लगाना बेहद आसान हो जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने एक 20 साल से ज्यादा पुराने टेलीस्कोप स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी को बचाने के अभियान में जुट गई है। इस टेलीस्कोप को धरती पर गिरने से बचाने के लिए रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 8 जुलाई 2026 को चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट पिनाका का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस रॉकेट का परीक्षण उपयोगकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की मारक क्षमता के लिए किया गया। योजना के तहत परीक्षण के दौरान LRGR ने पूर्व निर्धारित उड़ान पथ का सटीक रूप से पालन करते हुए अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा।
1: और अब बात ऊर्जा यानी ईंधन की। ऊर्जा यानी एनर्जी हमारे दैनिक जीवन और पूरे समाज को चलाने का मुख्य आधार है। कारखाने चलाने, भोजन पकाने, गाड़ियों को चलाने और यहाँ तक कि घर में रोशनी करने के लिए ऊर्जा या ईंधन की जरूरत होती है। ऊर्जा के बिना आधुनिक विश्व और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बिजली या ईंधन हमारे पास कहाँ से आ रहा है? क्या हम ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं? इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए शुक्रवार को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन यह दिवस मनाते क्यों है? ऊर्जा आत्मनिर्भरता के मामले में भारत की स्थिति क्या है? ऐसे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं लखनऊ स्थित बीरबल साहनीपुरा विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और ऊर्जा विशेषज्ञ डॉक्टर निमिष कपूर जी। स्वागत है आपका।
2: जी धन्यवाद प्रवीण जी और सभी को नमस्कार।
1: जी निमिष जी, तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस यानी ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे है क्या?
2: जी सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे यानी वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है। यह कोई उत्सव नहीं है बल्कि एक जागरूकता अभियान है। इसे हर वर्ष 10 जुलाई को मनाया जाता है। जैसे आपने बताया, इसका उद्देश्य पूरी दुनिया का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना है कि अब समय आ गया है कि हम ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को अपनाएं जो स्वच्छ हों, सुरक्षित हों और लंबे समय तक उपलब्ध रह सकें। आज भी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जो हमारे जीवाश्म ईंधन हैं, उन पर निर्भर रहता है। तो आज दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के लिए कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का तो इस्तेमाल करता है, लेकिन अब समय आ रहा है कि हम स्वच्छ ऊर्जा की ओर आएं और अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए भारत बहुत सारे कदम उठा रहा है। हम सोलर की बात कर रहे हैं, हम एटॉमिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थितियों में यह दिवस हमें याद दिलाता है कि अब हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जो जल विद्युत है, बायोगैस है और जो अन्य जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, उनकी तरफ हम आगे बढ़ें। और हम अपने देश की बात करें तो यह दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है भारत के लिए, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक अर्थव्यवस्था वाला देश है और हमारी ऊर्जा की मांग भी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर हम अपनी ऊर्जा का अधिक से अधिक उत्पादन अपने देश में ही उपलब्ध जो सोर्सेज हैं हमारे पास उसी के संग करेंगे तो हम ऊर्जा को अधिक मजबूत और सुरक्षित बना पाएंगे।
1: जी बिल्कुल, यानी पर्यावरण को भी सुरक्षित करेगा और हमें दूसरे देशों पर निर्भरता को भी कम करेगा।
2: जी
1: लेकिन यह ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 10 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है?
2: जी एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। दरअसल 10 जुलाई एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक निकोला टेस्ला का जन्मदिन है। टेस्ला का जन्म वर्ष 1856 में हुआ था। उन्होंने विद्युत विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण शोध किए। उनका सबसे बड़ा जो योगदान है वो है अल्टरनेटिंग करंट यानी AC जिसे हम बोलते हैं, यानी प्रत्यावर्ती धारा की जो प्रणाली है उसको विकसित करने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। आज हमारे घरों में, कार्यालय में,

0: हैं अस्पताल में, उद्योग में जो बिजली पहुंचती है उसका वितरण मुख्य रूप से एसी प्रणाली के माध्यम से ही होता है। इसका उद्देश्य केवल टेस्ला को श्रद्धांजलि देना नहीं था बल्कि उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना को भी आगे बढ़ाना था।
1: जी, यानी एक तरह से ऊर्जा के लोकतांत्रिकरण, ऊर्जा तक सबकी पहुंच हो, इसे सुनिश्चित करने में टेस्ला जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत कब और कहां हुई?
0: ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत वर्ष 2005-06 के आसपास संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुई। उस समय लॉस एंजलिस काउंटी के अधिकारी माइकल डी एंटोनोविच ने इस दिवस की सार्वजनिक घोषणा की। उनका उद्देश्य था कि दुनिया का ध्यान ऊर्जा के ऐसे विकल्पों की ओर आकर्षित किया जाए जो स्वच्छ हों, टिकाऊ हों और देशों को जीवाश्म ईंधनों के, जो बहुत ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, उनसे बचाएं। तो उस समय दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ रही थीं, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दों पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी। तो ऐसे माहौल में सामने आया कि केवल सरकारों के स्तर पर ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी ऊर्जा के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। इसी सोच के साथ इस दिवस की शुरुआत हुई।
1: यह तो बात हो गई कि शुरुआत कैसे हुई ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे की, लेकिन भारत में स्थिति क्या है? क्या कुछ खास किया जा रहा है ताकि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत एक आत्मनिर्भर और सशक्त देश बन सके?
0: जी बिल्कुल, ये हम सबको जानना चाहिए और ये हमें जानने का अधिकार भी है। तो पिछले एक दशक में ऊर्जा आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देखा गया है। राष्ट्रीय सौर मिशन की बात हो, पीएम सूर्य घर, मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सौर पंप, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, ऊर्जा भंडारण की हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, तमाम सारी ऐसी पहले हैं इसी दिशा में जिनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और इनका उद्देश्य केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाना ही नहीं है बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना भी है। उसके अलावा हमारे जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, IITs हैं और CSIR है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, बेहतर सोलर सेल की बात हो रही है उसमें भी लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों पर लगातार शोध हो रहा है देश में।
1: जी, यानी कहीं न कहीं आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस कर रहे हैं। तो इसी से एक रिलेटेड वर्ड आता है, ग्रीन जॉब, आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहता है, तो यह होता क्या है?
0: जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और ग्रीन जॉब्स यानी हरित रोजगार ऐसे काम हैं जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। आज जब पूरी दुनिया में एक नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो रही है तो इन क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप उदाहरण लें, सोलर पैनल लगाने वाले और उनके रख रखाव के लिए जो ट्रेनिंग दी जा रही है, जो स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, ऐसे टेक्नीशियन की आज हमको आवश्यकता होती है। इसी तरह से पवन ऊर्जा की हम बात करें, उसके संयंत्रों में विंड टर्बाइन के लिए हमें टेक्नीशियन चाहिए, ऊर्जा की बचत के लिए ऊर्जा ऑडिटर का जॉब होता है, बैटरी और ऊर्जा भंडारण के लिए भी हमको एक्सपर्ट्स चाहिए, माइक्रोग्रिड और उसके विकास के लिए भी हमको टेक्नीशियन और साइंटिस्ट चाहिए, और बायोगैस संयंत्र संचालक जैसे रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। और भारत एक युवा देश है, बड़ी हमारे पास युवा आबादी है और यहाँ ग्रीन जॉब्स बहुत महत्व रखते हैं क्योंकि हमारे युवाओं को नए कौशल सीखने और स्थानीय स्तर पर जो रोजगार समय पा रहा है उसके तमाम सारे अवसर आज खुल के सामने आ रहे हैं। विशेष रूप से आप देखेंगे कि हमारे ग्रामीण इलाकों में सौर पंप या रूफ टॉप सोलर और बायोगैस परियोजनाओं का जो सिलसिला आरंभ हुआ है उसमें स्थानीय युवाओं को बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं और उनको डायरेक्ट रोजगार से जोड़ा जा रहा है। तो भारत सरकार और बहुत सारे हमारे संस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कौशल विकास पर, कैपेसिटी बिल्डिंग पर ध्यान दे रहे हैं। IIT, पॉलिटेक्निक, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स में सोलर टेक्नोलॉजी, ऊर्जा दक्षता और बहुत सारे ग्रीन टेक्नोलॉजीज पर पाठ्यक्रम भी आरंभ किए गए हैं।
1: जी, यानी ग्रीन ऊर्जा के उत्पादन से लेकर के घरों तक पहुंचाने में जो रोजगार के अवसर पैदा होते हैं उन्हें ग्रीन जॉब कहा जाता है। तो ऐसे में भारत वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में क्या कुछ भूमिका निभा सकता है?
0: भारत आज वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में है। इसका कारण है कि हमारा देश एक ओर तेजी से बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार संभावनाएं यहां पर नजर आ रही हैं। तो भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है हमारे नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा और देश

0: बड़े सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं, रूफटॉप सोलर और सौर आधारित जो खेती या कृषि समाधान विकसित किए जा रहे हैं, इसके साथ ही बैटरी के भंडारण की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन ई व्हीकल्स की बात हो रही है, हरित हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा दक्ष तकनीकों पर भी शोध और विकास किया जा रहा है। तो खास बात यह है कि यहाँ देश में जो विकसित किए जा रहे हैं हमारे ऊर्जा के समाधान, वो कम लागत वाले हैं और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकते हैं। अगर आप सौर ऊर्जा की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे किसान भाइयों के लिए सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई आरंभ की गई है, ग्रामीण माइक्रोग्रिड और विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं, जो विकासशील देशों के लिए भी उपयोगी मॉडल बन सकता है।
1: जी बिल्कुल, यह तो हो गया भारत यानी देश के स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, सरकार के स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हम और हमारे श्रोता क्या कुछ कर सकते हैं ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए?
0: देखिए, हम सभी अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपना योगदान दे सकते हैं। ऊर्जा की बचत करना, बिजली का हम सही तरीके से उपयोग करें, जो स्वच्छ ऊर्जा के विकल्प हैं उसको हम अपनाएं, और अभी सब्सिडी भी दी जा रही है। अगर आपके घर में छत है, आंगन है, बालकनी है या ऐसा स्थान है जहां आप सोलर पैनल लगा सकते हैं तो इसका पूरा फायदा उठाएं। मार्च 2027 तक ये सब्सिडी जारी है, जो लगभग दो चरणों में आती है। 1,08,000 रुपए आपको सब्सिडी सरकार से मिलती है, तो इसका फायदा सबको उठाना चाहिए। हर घर में सोलर की पहुंच आज आवश्यक है, और इतना अच्छा जो कॉन्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है तो मुझे लगता है इसको सभी को अपनाने में कोई भी हिचक नहीं होनी चाहिए। और आज हमारा जो युवा है, यूथ है, वो नवीकरणीय ऊर्जा और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा रही हैं और रोजगार के अवसर लगातार निकलते जा रहे हैं। आप देखेंगे, सोलर की हम बात करें, हर शहर में बहुत सारे वितरक हैं, बहुत कंपनियां बन गई हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो किसान सौर ऊर्जा आधारित समाधान को अपनाकर अपनी लागत कम कर सकते हैं। जैसा सोलर रूफटॉप की बात की मैंने, तो ऊर्जा दक्ष उपकरणों के माध्यम से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने में आ रहा है इस समय भारत में, और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेजी से काम हो रहा है। और इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनके साथ नागरिकों की भागीदारी बहुत आवश्यक है, पब्लिक इंगेजमेंट बहुत आवश्यक है। तो उसी मॉडल पर आज हमारी नीतियां बनाई जा रही हैं, जिसमें सीधे जनता को ये बताया जा रहा है कि इससे क्या फायदा है। तो ये सब फायदे की बात सामने एकदम दिखाई दे रही है, और ऊर्जा संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को आज हमें अपनी जीवन शैली में ढालना होगा, और अपनी आदतों में बदलाव बहुत आवश्यक है। अगर घर में सदस्य कम है, अगर हमारा काम एक कूलर में, एक एसी या पंखे में हो सकता है, तो हम चार पंखे या एसी ना चलाएं। तो हम अपनी आवश्यकताओं को, ये मैं नहीं कहूंगा कि कम करें, हमें जो आवश्यकताएं हैं उसको बखूबी चीजों को करें, लेकिन उसको ऐसे समायोजित करें कि ऊर्जा बर्बाद ना हो।
1: उत्पादन के साथ साथ कहीं ना कहीं संरक्षण की भी जरूरत है, तो आइए वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम ऊर्जा की बर्बादी को रोकेंगे और एक स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि जागरूक नागरिक ही एक जागरूक और सुरक्षित राष्ट्र का आधार होते हैं। आज के विज्ञान जगत में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए निमिष कपूर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, आज के विज्ञान जगत के इस अंक में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रवीण को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, रंगमंच और सिनेमा जगत के वरिष्ठ अभिनेता श्री प्रकाश वाजपेयी पर एक श्रद्धांजलि।

रंगमंच और सिनेमा जगत के वरिष्ठ अभिनेता श्री प्रकाश वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं रहे। 45 से अधिक फिल्मों में अपनी सशक्त अभिनय छाप छोड़ने वाले श्री प्रकाश वाजपेयी का निधन पर हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री प्रकाश वाजपेयी रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में लंबे समय तक सक्रिय रहकर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। बचपन से

भी रंगमंच से गहरा लगाव रखने के कारण वरिष्ठ रंगकर्मी और अभिनेता श्री प्रकाश वाजपेयी ने छोटी बड़ी फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाकर अपनी अलग पहचान बनाई। इनकी चर्चित फिल्मों में गुलाबो सिताबो में अमिताभ बच्चन के साथ और फिल्म कागज में पंकज त्रिपाठी के साथ भूमिका निभाई। उनकी भूमिकाओं को दर्शकों ने काफी सराहा। इसके अलावा अजय देवगन, अभिनीत रेड और निम्मो लखनऊ वाली सहित कई फिल्मों में भी प्रभावशाली अभिनय किया। श्री प्रकाश वाजपेयी कक्षा 9 में ही रंगमंच की दुनिया में कदम रख चुके थे। पढ़ाई के दौरान कॉलेज में नाटकों में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने

वैभवशाली अभिनय किया। श्री प्रकाश वाजपेयी कक्षा 9 में ही रंगमंच की दुनिया में कदम रख चुके थे। पढ़ाई के दौरान कॉलेज में नाटकों में सक्रिय रहने के बाद उन्होंने नाट्य भारती नाम से एक थिएटर ग्रुप बनाया। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने अनेक नाटकों का सफल मंचन किया। समय के साथ साथ अभिनय के प्रति उनका समर्पण और गहरा होता गया। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार रहे। इसके साथ ही लखनऊ दूरदर्शन के भी वो अप्रूव्ड कलाकार थे। सीनियर फूड इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रहने के बावजूद उन्होंने अभिनय से अपना नाता कभी नहीं तोड़ा। लगभग 30 वर्ष तक दर्पण संस्था के साथ रंगमंच करते हुए लगातार समानांतर रूप में फिल्मों में काम करते रहे।

सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने स्वयं को पूरी तरह अभिनय के लिए समर्पित कर दिया। उनकी पहली फिल्म बाबर थी, जिन्होंने उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण किरदार निभाया। इसके बाद शोरगुल, लखनऊ टाइम्स, आई एम नॉट देवदास, लफाज, प्रणाम, bb.com, जॉली LLB 2, 1-2 का 4 और बारात कंपनी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी अभिनय का परिचय दिया। इनमें से अधिकांश फिल्मों की शूटिंग लखनऊ में हुई, जबकि कुछ फिल्में रिलीज नहीं हो सकीं।

0: इस तरह यह कलाकार हम सभी को अलविदा कह गया। आकाशवाणी परिवार की ओर से शत शत नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी आप सुन रहे थे रंगमंच और सिनेमा जगत के वरिष्ठ अभिनेता श्री प्रकाश वाजपेयी पर एक श्रद्धांजलि। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
4: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
5: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

0: आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजनी हो प्रगति की पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निकले आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो।
3: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से।

0: साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
2: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
4: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनवा रहे हैं भेंटवार्ता, जिसका विषय है जनसंख्या बनाम विकास। इस विषय में डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव से भेंट कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
5: समाज के विकास के साथ साथ व्यक्ति विशेष के विकास की भी बात की जाती है, और दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रित संबंध रखते हैं, यह कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनसंख्या एक महत्वपूर्ण अवयव हो जाता है। कारण, कोई भी सरकार हो, वह देखती है कि किस वर्ग को वह बिलोंग करती है, चाहे सामाजिक तौर पर हो चाहे आर्थिक तौर पर हो, उसे देख करके फिर योजनाएं बनाई जाती हैं और देश की समृद्धि का काफी कुछ खाका तैयार किया जाता है। क्या गूढ़ तथ्य हैं उसे जानने के लिए हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आपने सुन ही लिया, मुकुल श्रीवास्तव जी हैं। आप प्रोफेसर हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: जानना चाहेंगे पहली बात यही कि हम लोग जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रित रहे नई नीति भी आ रही है, ऑन द होल अगर देखना हो तो क्या, पहले एक सामान्य सा आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे।
6: देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिसे हम धरती बोलते हैं, उसका एक संतुलन है, और उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जैसे जल, जंगल, ज़मीन की बात होती है, उसी तरीके से इंसान और जानवरों की भी बात होती है। उन सब का कि अगर सिर्फ जानवरों की ही आबादी बढ़ जाए तो वो इंसानों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी। सिर्फ इंसान ही हर जगह दिखने लग जाएंगे तो प्रकृति और प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए समस्याएं पैदा हो जाएंगी। अब आप देखिए कि आप धरती के किसी भी कोने में चले जाएं और अगर आपको पॉलिथीन का एक टुकड़ा ना मिले तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इंसान कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है। ये जनसंख्या के बढ़ने का एक कारण है कि इंसान धरती के हर कोने में पहुंचा, और उसी से जुड़ा हुआ मामला है कूड़ा, जो मानव द्वारा अपशिष्ट पदार्थ हैं। ये विकसित होने की एक निशानी भी आप इसे कह सकते हैं कि पहले जो मानव जनित कूड़ा होता था उसे धरती अवशोषित कर लेती थी, पचा लेती थी, समा लेती थी, पर अब मानव इस तरह के कूड़े जो है वो पैदा कर रहा है और बगैर ये सोचे समझे कि इनका निस्तारण कहाँ क्या होगा। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारा एक जिसे बोलते हैं दुष्चक्र का निर्माण हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनसंख्या क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, महत्वपूर्ण ये है कि इस धरती की एक सीमा है और वो सीमा का पालन करते हुए हमें इसको समेकित रूप से, इस धरती पर जो मानव है वो हर जगह अपनी उपस्थिति

0: दर्ज कराए, ना कि ऐसा हो जैसा कि आजकल हमारे देश भारत में हो रहा है कि गांव खाली हो रहे हैं और शहर जरूरत से ज्यादा भरे जा रहे हैं। अगर गांव भरे रहते तो शायद शहरों पर जनसंख्या का जो दबाव हम महसूस कर रहे हैं, जिनके कारण नई जनसंख्या नीति की बात हो रही है या बच्चे कम पैदा करने की बात हो रही है, तो शायद ये बातें इस तरीके से ना की जा रही होती।
1: डॉक्टर साहब, ये इसको अगर हम कहें तो हमारी इंटरनल आंतरिक व्यवस्था में ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसा आपने शुरू में इशारा किया, इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है, पारिस्थितिकी जिसको हम कह लेते हैं, उसमें तमाम तरह के जीव हैं और उन्हीं जीवों को शायद हमारे शास्त्रों में या फिर हमारे समाज में यह कहा जाता है 84 लाख योनियां हैं और ये एक दूसरे में घूमती रहती हैं। तो क्या मनुष्य योनि में जो वृद्धि हो रही है यानी जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या इकोलॉजिकल सिस्टम पर इसका कोई असर पड़ रहा है? दूसरे जीव कम हो रहे हैं जो हमारे लिए लाभकारी हैं?
0: बड़ी काबिले गौर बात आपने कही है और बहुत मार्के की बात कही है। आजकल ये माना जाता है कि जब हम अपनी परंपराओं, संस्कारों या प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो माना जाता है कि हम थोड़े से पिछड़े हुए हैं या विज्ञान की आधारित सोच नहीं है। पर जब जो 84 लाख योनियों की बात की गई तो उसके पीछे पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र था कि मान लीजिए कि इस जीवन में अगर आप इंसान बने तो अगले जीवन में हो सकता है कि आप शेर बने। तो ये एक साइकिल थी जो चलती रहती थी। लेकिन इस विकास की आपाधापी में हमने इस चक्र पर ध्यान नहीं दिया। जंगल के जंगल साफ होते चले गए। अब जंगल के जानवर या तो मार दिए गए या फिर वो चिड़ियाघर में आ गए। तो उनका जो नैसर्गिक प्रजनन की प्रक्रिया थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। नतीजा ये हुआ कि आप ये देखें कि वैज्ञानिक तथ्य ये बताते हैं कि हर दिन इस संसार से कोई न कोई जीव जंतु की प्रजाति जो है वो लुप्त होती चली जा रही है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जो डोडो की बात होती है, मॉरिशस का एक पक्षी था जो उड़ नहीं पाता था लेकिन चिड़िया की तरीके से होता था, तो उसका इतना शिकार किया गया कि अब वो किताबों में ही देखने को मिलता है। बाकी के तो जो जानवर थे वो लुप्त हुए, वो प्राकृतिक तंत्र के कारण आपदाएं आईं उनके कारण लुप्त हुए और आज उनके जीवाश्म मिलते हैं। पर पिछले 200 सालों में जो हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, बहुत पुरानी बात, हमारे वो श्रोता बंधु जो 40-45 साल पार कर चुके हैं, अगर वो अपना जीवन देखें और अपने आसपास के परिवेश को याद करें तो पाएंगे कि उनमें गौरैया रहा करती थी, उसमें कौवे रहा करते थे, उसमें गिद्ध भी दिखा करते थे। पर अगर आजकल वो नहीं दिखते हैं तो उसका नतीजा है कि वो मानव योनि में आ गए हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो गड़बड़ा रहा है।
1: और यही लगता भी है, परिलक्षित होता है कि यही एक कारक है जो प्रभावित कर रहा है। अब जो प्रभावित कर ही रहा है, आधुनिक काल है, विकास की प्रक्रिया को भी थामना नहीं है, उसे भी बढ़ते रहना है। इस स्थिति में क्या आपको लगता है कि जनसंख्या का जो दबाव होता है उसका क्या विकास की प्रक्रिया और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ता है?
0: बिल्कुल, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो एक समावेशी विकास की बात होनी चाहिए, ना तो किसी एक जगह ना किसी एक शहर की विकास होनी चाहिए। और विकास अपने आप में कोई शब्द नहीं है, विकास बहुत सारे सामाजिक अवयवों का एक मिलाजुला मिश्रण है। जब आप विकास की बात करते हैं तो उसमें शिक्षा भी शामिल है, उसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, उसमें सफाई भी शामिल है और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन खास करके जो पश्चिमी देशों का जो मॉडल है, हमने उसे अपने परिवेश में एज इट इज़ या वैसे का वैसा ही पूरा का पूरा लागू कर दिया, बगैर अपनी जनसांख्यिकी, अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को देखे समझे बगैर। जैसे कि संयुक्त परिवार हमारी परंपरा का हिस्सा रहे, हमारे यहाँ पर एकल परिवार की कोई ऐसी परंपरा नहीं रही है। आप पुराने धर्म ग्रंथ उठा करके देखें, चाहे वो महाभारत हो, चाहे रामायण हो या जो और भी पौराणिक ग्रंथ हैं, उन सब में जब परिवार की संकल्पना की जाती है तो माता, पिता, पुत्र और उनका जो पूरा का पूरा कुनबा होता है वो शामिल होता है। और इस सब में क्या होता है कि हम एक जिसे बोलते हैं कि समावेशी विकास की तरफ चल रहे थे, कि जैसे कि पश्चिम के देशों में होता है कि परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोगों के पास 4 गाड़ियां। हमारे यहाँ पर अगर 6 लोगों का परिवार है, 1 गाड़ी है तो पर्याप्त है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसे ये कहते हैं कि संतोषम परम सुखम। हमेशा ये कहा जाता था कि तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, पर वहां पर क्या है कि रणम कृत्वा घृतम पिबित, कि भाई इस चक्कर में उन्होंने प्रकृति का अनावश्यक दोहन किया और खुद विकसित होकर के बैठ गए। अब वो भारत जैसे तीसरी दुनिया के देशों को ये दिखाते हैं कि देखो ये है विकास का मॉडल। उस विकास के मॉडल को ऐसे देश जिनकी जनसंख्या ज्यादा है अगर आप अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि प्रकृति पर बहुत बोझ पड़ेगा। वहां जनसंख्या कम है लेकिन उन्होंने प्रकृति का ज्यादा दोहन कर लिया। यहां जनसंख्या ज्यादा है, हम दोहन नहीं करना चाह रहे हैं पर उसका दबाव है।

0: दबाव बाजार का है, वो उसे विकसित होना मेरे हिसाब से नहीं कहेंगे कि अगर आपके घर में एक ही जगह पर जाने वाले चार लोग हैं तो चार लोग अपनी अलग अलग गाड़ियों से क्यों जाएं।
1: बिल्कुल,
0: जिसे वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग सामूहिकता की संस्कृति वाले देश वाले लोग हैं, हम सामूहिक रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। पर उनके मॉडल को अप्लाई करने के चक्कर में हमने ये एक सबसे बड़ी जो जिसे बोलें कि ये विडंबना पैदा कर ली कि हमने विकास को कुछ जगहों पर कुछ संकुलों में केंद्रित कर दिया, जिससे जो विकास का फायदा, ऐसा नहीं कि देश में विकास नहीं हुआ, वो हर स्तर तक नहीं पहुंच पाया, तो जो जगह विकसित हो गई वहां भीड़ ज्यादा हो गई और जो नहीं विकसित हो पाई वो खाली होती चली गई।
1: आप क्या देखते हैं कि सामाजिक स्वरूप जो हमारा है वर्तमान का, उसमें क्या विकास की गति या कहें कि अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता कहीं दिखाई देगी?
0: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिखाई देगी। पहली चीज तो ये कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, आप अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ज्यादातर लोग जो शिक्षित हो रहे हैं, जिनको पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है, वहां पर आप ये देखें कि वो बगैर किसी दबाव में एक या दो बच्चों के साथ अपना परिवार आगे बढ़ा रहे थे। अब जब दो बच्चों के साथ आप परिवार बढ़ा रहे हैं तो जो सुख सुविधाएं चार छः बच्चों में बटनी चाहिए वो दो में बट रही हैं, तो आप कम पैसे में भी उनका बेहतर भरण पोषण कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो हमारा मानव संसाधन है, जिसे ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, वो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि उनको पौष्टिक भोजन मिलेगा, उन्हें बेहतर शिक्षा मिलेगी, बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। उससे क्या होता है कि आप चार अगर आप दुर्बल लोगों को या कमजोर बीमार लोगों से सेवा लें और दो स्वस्थ लोगों से सेवा लें तो उसका अंतर आ जाएगा। तो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो बेहतर होगा, और चूंकि अब इसमें सरकार का भी प्रेशर रहेगा तो लोग पहले से ज़्यादा सचेत रहेंगे और इस बात को समझेंगे भी, और इस हिसाब से एक लोकमत का निर्माण होगा और फिर शायद इस कानून की कोई जरूरत पड़ेगी ही नहीं, लोग अपने आप ही इस तरह से आगे चलेंगे।
1: बिल्कुल सही है, आपने कहा कि मानव संसाधन जो है वह अन्य संसाधन जो हमारे कृत्रिम संसाधन है उससे समावेशी परिवेश बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो वह बेहतर होगा। बहुमूल्य जानकारी है, बहुत ही समझदारी से आगे चलने की आवश्यकता है जिससे कि हम अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को समृद्ध बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टोरी के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता जनसंख्या बनाम विकास, इस विषय में बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। इसी के साथ हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडिया वेब पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं भजन, कलाकार हैं अभिषेक कुमार। इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं चंद्रेश पांडे, ढोलक पर दीनदयाल तिवारी, बांसुरी पर अलका सिंह और ऑक्टोपैड पर प्रखर प्रताप श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं इनसे तुलसीदास की ये रचना।

अभी आप अभिषेक कुमार से भजन सुन रहे थे। इनके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे चंद्रेश पांडे, ढोलक पर दीनदयाल तिवारी, बांसुरी पर अलका सिंह और ऑक्टोपैड पर प्रखर प्रताप सिंह। इसी के साथ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म शर्मिली से, आवाज किशोर कुमार की, शब्द रचना नीरज के और संगीत एसडी बर्मन का।

आनंद बख्शी के शब्द रचना को सुहारा संगीत से एस डी बर्मन ने, आवाज़ लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम जुगनू।

समाधि फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र

0: समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक

0: संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789155237142314 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देशभर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की

0: मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत

0: महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter.

0: England were bowled out for 170 runs in their first innings today. Amy Jones was the top scorer with 53 runs. For India, Kranti Gourd took a 5-wicket haul, while Sayali Satkare and Sneh Rana scalped 2 wickets each. In men's cricket, England were 241 for 1 in 18.3 overs against India in the 5th and final T20 international of the series in Southampton when reports last came in. Earlier, India won the toss and elected to field. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister expressed condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of Uniform Civil Code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा तिजारती समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी। वियतनाम में कश्ती के एक हादसे में 15 भारतीय अफराद की मौत हो गई है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने ताजियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल सरकार ने यकसां सिविल कोड के बिल के मुसवदे का जायजा लेने के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में नौ अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। जुनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 4-5 दिन के दौरान मुल्क के शिमाली और मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा, जबकि मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। और मैड्रिड में तीरंदाजी वर्ल्ड कप के चौथे मरहले में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड का 2 दिन का तारीखी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस आने के लिए रवाना हो गए हैं। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा था। जना मोदी के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को बड़ी तकवीयत मिली है। इस दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में मुख्तलिफ शोबों में 5 मुफाहमतनामों का तबादला किया गया। इनमें दिफा, सियाहत, खेल, कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटना, डेयरी और मवेशी परवरी शामिल हैं। जना मोदी के इस दौरे की एक बड़ी खासियत ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में कम्युनिटी का प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। वहां मौजूद लोगों से खिताब करते हुए जना मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और दोतरफा तिजारत के समझौते से एक तरक्की याफ्ता मुल्क की समत भारत के सफर में तेजी आएगी।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने

नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण पब्लिक लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक अजीम मुजाहिद आजादी मुफक्किर और ऐसे कौमी रहनुमा थे जिन्होंने मुल्क के लिए काबिल कदर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क और उसके आवाम को समझने के लिए पढ़ना जरूरी है। जनाब अमित शाह ने दिल्ली सरकार पर जोर दिया कि वो शहर में सभी लाइब्रेरियों को बाहम मुंसलिक करे और स्कूलों के साथ उन्हें जोड़ने का एक जामिया मंसूबा मुरतब करे। एक मुल्क एक चुनाव से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन मेंबर पार्लियामेंट पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और रियासती असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ कराए जाने से हुक्मरानी मुस्तहकम होगी, अखराजात कम होंगे और मुल्क की मईशत को फायदा होगा। गोवा में नामानिगारों से खिताब करते हुए जनाब चौधरी ने कहा कि सभी बड़ी सियासी पार्टियों की नुमाइंदगी करने वाली 41 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी मुख्तलिफ रियासतों का दौरा कर रही है ताकि सरकारों, सियासी पार्टियों, आईनी माहिरीन, सिविल सोसाइटी और दीगर मुतालिका अफराद की राय मालूम की जा सके। इस सिलसिले के तहत गोवा ऐसी नवी रियासत है जहां कमेटी के अरकान दौरा कर रहे हैं। छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों को बाज़ाब्ता शक्ल देने की प्रधानमंत्री स्कीम ने पूरे मुल्क में 2 लाख से ज्यादा छोटे फूड प्रोसेसिंग इदारों के लिए कर्जे मंजूर करने का संगे मील हासिल कर लिया है। मजकूरा स्कीम के तहत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रोजेक्ट सरमायाकारी की गई है और रोजगार के तकरीबन 11 लाख बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा हुए। आज नई दिल्ली में एक खसूसी तकरीब से खिताब करते हुए खुराक को डिब्बाबंद करने की सनअतों के मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा कि ये कामयाबी महज जश्न मनाने का एक संगे मील नहीं बल्कि फूड प्रोसेसिंग के फरोग के भारत के सफर के अगले मरहले की एक मजबूत बुनियाद है। जनाब पासवान ने अपना कारोबार करने वाली खवातीन की शमूलियत को उजागर करते हुए कहा कि इससे खवातीन की जेरे कमान तरक्की के हकीकी जज्बे की अक्कासी होती है जो विकसित भारत की बुनियाद भी है। जनूबी भारत की सरकर्दा गुलकारा एस जानकी का कर्नाटक के मैसूरू में इंतकाल हो गया। वो 88 साल की थीं, वो ज़ईफ़ुल उम्री से वाबस्ता बीमारियों में मुबतला थीं। एस जानकी ने 60 साल से ज़्यादा के अपने करियर में मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 48,000 नगमे गाए, इनमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी ज़बान शामिल हैं। एस जानकी को पद्म भूषण अवार्ड से सरफराज किया गया था, उन्हें 4 नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सरफराज किया गया। इसके अलावा उन्हें 33 स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सोंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियां थोड़ी बदल रही हैं, यह कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है।

0: यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहाँ आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो यो
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देह, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देह पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नव दिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पुरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ट संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्रोत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी। फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है, फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञा मार आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुभ किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई का रथ में 12 पहिया

0: सकता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
1: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
2: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का बाड़ग्रही दैतापति हूँ। प्रभु स्नान का बाद में अंदर जाते हैं, हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं। रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है। ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो पथी पांचन होता है, आम, केला, पनस, सपुरी, सपटा, ये पांच प्रकार फल भोग होता है। पथी होता है मूंग और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
1: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा। ताल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
3: रथखला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी

0: प्रज्ञा पारमिता साहू की आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर। ये आम कुछ खास हैं।
1: मैं डॉक्टर एके सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में एक परिचित करा सकें। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती हैं। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कम्प्लीट कवर किया।
2: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई हैं आम की। पूसा सूर्या है, पूसा अरुणिमा, पूसा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में हैं। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीपशिखा भी रिलीज की है। मोस्टली ये अम्रपाली और संचेषण के संकरण से बना है पर कुछ किस्में उसमें दशहरी और लाल सुंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखे ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखे दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर लें वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्रा में चले जाए तो वहाँ बैगनापल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। वैसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
3: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियोड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे कठियोड़ा में होता है, हमारे गांव में। और भी बहुत सारी वैरायटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
4: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेष कर जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है। साथ ही इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियां है वो जीवित रहने, अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
5: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से ये काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी है, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती।
0: ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक

आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोककला को

सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

पाटा नटारी हमारे ध्रुव उहे के जन्म है। कुछ दिन हम अटारी में रहें, फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले आईस। वहाँ हमार लालन पालन हुईस। हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुक लाल रही से। छह भाई बहनी रहे हैं, दो भाई चार बहनी। गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से। अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग लैका ला छोड़ के चल देवे। भाई बहनी बन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ। हमन छयो भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है। हमार दाई है बांस गीत गावे और हमार बाबू बांस बजावे। माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए। लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रहे हूँ। माँ गावे है आर

0: माया जानकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सूर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ। तो रास्ता में मोर नाना के घर पड़त रही से, छोटे नाना के धनियारी गांव में, तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से, ते में भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से। बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम, और वो ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला, तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे, हाथ कतेक सुंदर एक आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे। अब ये लोग मन हा बिजलाल नाम रही से, पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी। 11-13 के लगभग में रही हूँ मैं, तो ये बच्चा कतेक सुंदर एक दिल में लगाव है। तो सुने पर आते कि के वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा, इमें बैठ। आ कतका कन सुने ऐसे कि कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं, तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोली कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु, और मैं नहीं परखे सके हूँ इसी की। आज भी गुंजा थे टेर के आधार पे ही मैं टेर लगा था जब पंडवानी गा था। तो
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

गदगद कर देती। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते, मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है, उन मन रोना शुरू कर देते, हम उतका सम्मान पा के अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देते, ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजी, घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे, ये में अब बड़ा आनंद आते, आज भी वही है, अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: तेकर कारण वही है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम की रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला ऐति तेती बहका सकत रहे हूँ, वो मैं अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखती, वो तो बर्बाद हो जाती ना, फिर नाम कहाँ होती। तो ये चीज बचाए के खाती हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है, सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मुला अच्छा नहीं लगे। कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते तो बोले भूरियारो बोल चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मुला बहुत है अच्छा लागते, लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा मा।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेनस्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेनस्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
2: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझने लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रेंगता हूँ

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वीणा रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी।
0: डॉक्टर रामवरपु शरत बाबू और श्रीमती विजयलक्ष्मी की बेटी डॉक्टर आर माधुरी देवी ने वीणा वादन की शिक्षा अपनी माताजी वीणा गुरु श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी के पास प्राप्त की। आपने संगीत की बारीकियां सुप्रसिद्ध वीणा विद्वान डॉक्टर ई मणि शंकर शास्त्री से सीखी। मनोधर्म का पालन करते हुए वीणा पर लयबद्ध तरीके से रस और भाव का प्रदर्शन डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की विशिष्टता रही है। वीणा वादन में आकाशवाणी द्वारा ए ग्रेड प्राप्त डॉक्टर आर माधुरी देवी ने कई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आपको विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है।
1: बॉर्न टू डॉक्टर रामवरपु शरद बाबू एंड लेट श्रीमती रामवरपु विजयलक्ष्मी, डॉक्टर माधुरी देवी इज एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। शी बिगैन हर ट्रेनिंग इन वीणा एट एन अर्ली एज अंडर द गाइडेंस ऑफ हर मदर, a well-known Veena guru, and even gave her first presentation at the age of 8. She later honed her skills under the tutelage of the renowned Veena artist, late Dr. Ee Mani Shankar Shastri. Dr. Madhuri Devi has earned her PhD degree for her thesis on the rasa elements in Telugu musical compositions of the prominent composers since Annamacharya up to 19th century. As an artist, she has performed extensively in respected platforms all over the globe and is the recipient of a number of awards, titles and felicitations. Her music has been appreciated for expounding the rasa and bhava aspects of melody, manodharma and her command over laya. She also has a number of compositions to her credit.
0: आज के कार्यक्रम में डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्यप्रसाद।
1: In tonight's concert, Dr. Ramavarapu Madhuri Devi is accompanied by Sri Mahadasu Yedukondalu on the mridangam and Sri Mavaduru Suryaprasad on the ghatam.
0: Dr. R. Madhuri Devi, आज के कार्यक्रम का आरंभ नाटराग में मुत्तैया भागवतार की रचना शक्ति गणपतिम से कर रही हैं, जो कि रूपक ताल में निबद्ध है।
1: Dr. Ramavarapu Madhuri Devi begins her concert with Shakti Ganapatim,

0: डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है रीति गौड़ राग में संत त्यागराज की रचना नन्नो विड़ची कदलकुरा जो कि त्रिपुट ताल में निबद्ध है.
1: She next presents a composition of Saint Tyagaraja in Rithigaula Ragam.

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे हैं। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। कार्यक्रम को जारी रखते हुए डॉक्टर आर माधुरी देवी की अगली प्रस्तुति है कापी राग में वनमाली या जी आर स्वामी की रचना जानकी रमणा, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: You have been listening to a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi in tonight's national program of music. She is accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the Mridangam and Sri Mavaduru Surya Prasad on the Ghatam. Continuing her presentation, Dr. Madhuri Devi will now present Janaki Ramana, a composition of Vanamaliya J.R. Swami in Kapi Ragam Aditalam.

यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया श्री महादासु येडुकोंडलु ने और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद ने। डॉक्टर रामवर्प माधुरी देवी आज के कार्यक्रम का समापन बेहाग राग में डॉक्टर मंगलम पल्ली बालमुरली कृष्णाकृत तिल्लाना।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी तक आप डॉक्टर रामवरपु माधुरी देवी का कर्नाटक शैली में वीणा वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री महादासु येडुकोंडलु और घटम पर श्री मावडूरु सूर्य प्रसाद। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही सम्पन्न होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's national program of music, wherein we brought you a Veena recital in Carnatic style by Dr. Ramavarapu Madhuri Devi. She was accompanied by Sri Mahadasu Erukondalu on the mridangam and Sri Mavuduru Surya Prasad on the ghatam. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए समिति गठन करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव के एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा लगाए गए उस आरोप की आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल में से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटक, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। साउथैम्पटन में खेले जा रहे 5 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के सामने 258 रन का लक्ष्य रखा है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19वें ओवर में 7 विकेट पर 193 रन बना लिए हैं। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30

0: Kie clinching her maiden World Cup bronze. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी इस सभा के कार्यक्रम संपन्न होते हैं। अपनी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 5:50 पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।